0: with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता है?
2: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 डोर्स डाउन विद

0: From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
1: And now at a bigger location, just three doors down, with limited reservation available.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
0: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
4: ब्रेकिंग न्यूज़, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल। Equal housing lender.
5: ये तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.

0: कितने आदमी थे?
1: सर्कल
2: भाई, डैडी मम्मी का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर आ गई हूँ स्टूडियो में। आपको पता है ना मैं कौन हूँ? यस, कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा? दैट इज राइट, इट इज द वन एंड ओनली योर फेवरेट, योर बेस्टी, एपी द हिपी। यस, दिस इज द अनहिंज्ड आवर ऑफ एन इवनिंग इन डैलस, ओनली एट फनीचर रेडियो 104.9 FM। बिकॉज व्हाई? We are bold and we are beautiful and we have unhinged opinions. And of course, we talk about some things, other things also. We talk about relationships. We talk about pyar, dosti, dhoka. Oh no! और उसके अलावा हम बहुत सारे मजेदार गाने भी सुनते हैं. ऑफ कोर्स आपको पता है ना व्हाट वी डू, एंड देन वी हैव गिव अवेज टू. सो गाइस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. लेकिन रोड से याद आया गाइस, जाने से पहले, एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकती है लेकिन रिकवर उससे करना बहुत ही मुश्किल है. अगर आप कभी भी कार एक्सीडेंट या ट्रक एक्सीडेंट या किसी भी गलती से गिर गए, कहीं आप गए मॉल शॉल गए या रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे यू नो वो जो गीला फ्लोर नहीं रहता, वहाँ पे स्लिप करके गिर गए, यू नो व्हाट यू कैन डू? यू कैन सू समवन. एग्जैक्टली. एंड यू नो हु इज गोना हेल्प यू सू दैट पर्सन सो यू कैन मेक सम मोनीज? इट इज गोइंग टू बी मिस्टर अटर्नी ओमर खुआजा. He will handle the legal battle while you can focus on healing and enjoying the money that you will get from that. Yes, he will fight for the compensation that you're entitled to, and you pay nothing unless your case is won. So call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com for free consultation. This segment is brought to you by Omer Khwaja, okay? With no traffic updates because I don't have that. And this is, I'm sure aap log ghar already pahunch gaye honge kyunki shaam ka waqt hai, 7 to kab ke baj chuke hai, dinner winner bhi kha liya hoga kaafi logon ne. So without further ado, let's get the show on the road.

guys, we are back. हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई मेरा माइक्रोफोन थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, लेकिन मैं उसको पास खींच लेती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं. तो बाय द वे गाइज, आपको पता है जिंदगी में हर चीज़ में ना मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी फाइट तो लगानी पड़ती है बॉस. ठीक है, अगर सभी हमारे हाथ में ऐसे ही बिना मेहनत करे मिल जाएगा तो आय हाय हाय जिंदगी कितनी खुशहाल होती. मतलब वाह, कोई मुश्किल ही नहीं होती. लेकिन वैसे ही मुश्किल वाली चीज़ों से रिलेटेड, बाय द वे, मुझे आज बड़ी इंपॉर्टेंट सी फैक्ट पता चली है. आपको मूवी का नाम पता है? पाकीज़ा. ऑफ कोर्स द एब्सोल्युटली लेजेंडरी मीना कुमारी एंड राजकुमार. और वो गाना नहीं था उसमें, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, है ना? वो मेरा बचपन का फेवरेट फेवरेट फेवरेट गाना था. तो मुझे बाय द वे आज पता चला, द रीज़न आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू इज कि उस मूवी को बनाते हुए पता है आपको कितने साल लगे? 14 साल. भाई एक बच्चा बच्चा पैदा होके वो टीनेजर भी बन गया, लेकिन वो मूवी को उतने ही साल लगे जितना उसको टीनेजर बनने में लगा. ही बिकेम लाइक ए फुल फंक्शनिंग अडल्ट ऑलमोस्ट. सो थिंक अबाउट इट. पता है क्यों इतना टाइम लगा? बिकॉज द फिल्म मेकर्स दे वर सो स्पेसिफिक अबाउट एवरी सिंगल डिटेल इन दैट मूवी, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो या डांस हो या जो भी हो. दे वर वेरी वेरी पिकी, और ऑफकोर्स बिकॉज दे वर सो पिकी दे वॉन्टेड लाइक द बेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर द मूवी. दे वॉन्टेड कि एवरीथिंग शुड बी लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो उन्हें बड़े पैसे खर्च किए, और पैसे खर्च करते करते ख़त्म ही हो गए. फिर उन्होंने दोबारा फंडिंग ऑर्गेनाइज करी, फिर दोबारा फंडिंग करी. मीना कुमारी जी यंग से थोड़ी सी, मतलब मिडल एज भी हो गई, उसके बाद वो बीमार भी हो गई. शी हैड लिवर सिरोसिस. ठीक है, ऐसे करते करते मीना कुमारी जी की भी एज हो गई. तो फाइनली जाके जब मूवी ख़त्म हुई, इनफैक्ट और भी पता क्या फन फैक्ट था, दे वर सो पिकी अबाउट द कॉस्ट्यूम्स, विच इज़ उनके जो मतलब जो आउटफिट था एकदम, इट हैड टू बी परफेक्ट. अवध स्टाइल के जो कोटजांस पहनते थे वो, और उनके जो गहने थे बिल्कुल दे वर लाइक एब्सोल्यूट अमेजिंग रेप्लिकाज. तो वो जो गहने थे इनफैक्ट इतने डिटेल में गए कि वो रॉयल फैमिली से, जयपुर और लखनऊ और नवाब्स जो हैं रॉयल फैमिली से, जो राजकुमारी हैं या नवाब जो हैं, उनको बुलाया कि आप आके ज़रा कॉस्ट्यूम चेक करके जाओ. वी नीड टू मेक श्योर दैट दे आर एक्यूरेट एज पर द एज दैट वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट. मतलब ऑब्वियसली पुराने ज़माने की पिक्चर है, आई मीन यू नो द पिक्चराइजेशन इज़ फ्रॉम लाइक वे बिफोर देन वॉट इट वॉज एक्चुअली रिलीज, राइट? सो दे वर सो पिकी. तो उसी से मुझे ये ख्याल आया कि भाई जब वीज़ा वगैरह का भी चक्कर होता है ना, तो इट्स नॉट दैट ईजी. तो आप कोशिश करिएगा कि दैट यू हायर द राइट काइंड ऑफ अटॉर्नी फॉर दिस. इसीलिए जल्दबाजी में किसी भी सस्ते और टिकाऊ लॉयर को, अरे ये तो सिर्फ 2,000 रुपये ले रहा है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, फिर पता चले आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर आपको RFA आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डोंट डू दैट. गो टू सीमा मेहता लॉ ऑफिसेस, चाहे आप H1B पे हैं, F1 है, L1 है, या और भी किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, या प्लानिंग if you, or whether you're planning to come to the US for permanent residency, then you need to go to law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her experienced team specialize in exclusive immigration laws, including EB-5, investor visas, family and employment visas, perm, labor certification and US citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, please email info@seemamehtalawfirm.com. That's right, it is info@seemamehtalawfirm.com. Okay, so don't worry, she will take care of you. And until then, enjoy this song. When you come back from the break, we have a few requests lined up. Agar aapko bhi kisi ko dedicate karne hain gaane, request hai, please zarur mujhe call karke bataiye. And tab tak ke liye aap ye gaana enjoy kariye.

0: Bye, we are back. It is, what time is it on the clock? It is 7:29 on the clock. हम 30 seconds में break में जाने वाले हैं, लेकिन बने रहिए क्योंकि break के बाद और भी मज़ेदार गाने बजेंगे. By the way, thank you. एक fun fact और था about पाकीज़ा, वो ये था कि जो 14 साल उनको और भी इसीलिए लगे बिकॉज कमल अमरोही जी एंड मीना कुमार जी हैड अ लिटिल अनबन बिकॉज दे वर हस्बैंड वाइफ एंड अपेरेंटली दैट रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान. तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? और वो 10 साल तक दे डिडंट टॉक टू ईच अदर. उसके बाद फाइनली मीना कुमारी जी अग्रीड एंड शी सेड ओके फाइन नो प्रॉब्लम. लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
2: तो कैरेट लेन चलो. दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: It's Hoko.
1: अरे बस भी करो यार.
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
1: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: भूख लगी
11: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
17: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
16: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
17: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
16: इंडिया तक.
17: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
15: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

हाय हाय हाय, क्या चाल है तेरी, या क्या गोरे गोरे बाल हैं तेरी गोरे गोरे गाल नहीं, गोरे गोरे बाल, क्योंकि भाई हम बुढ़े भी हो रहे हैं, तो गोरे गोरे गाल नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, बाल तो है ना। तो पॉइंट इज, कुछ तो है, दैट इज जो है उसी में खुश रहा करो, ठीक है। तो गाइस, ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकीज़ा वाली सिनेमा के बारे में, याद है? तो जैसे मैंने बोला, मेरे जो हम इतने अच्छे अच्छे लिसनर्स हैं, वो मुझे आके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देते हैं जो मुझे नहीं पता होती है, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो उन्होंने बोला कि भाई, जो क्या नाम था उनका, कमल अमरोही जी और मीना कुमारी जी का कुछ पर्सनल रिलेशनशिप हो गया था, पर्सनल से सवाल हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने 10 साल तक शूटिंग भी नहीं करी। लेकिन फाइनली मीना कुमारी ने बोला फाइन, आई विल शूट दिस फिल्म, और फिर फाइनली जाके पिक्चर ख़त्म हुई। 14 साल लगे पूरी पिक्चर को बनने में, तब तक मीना कुमारी जी की भी थोड़ी सी उम्र हो चुकी थी, गोरे गोरे बाल उनके भी आ चुके होंगे, जिनको उन्होंने काली से ढक दिया होगा। कोई बात नहीं, होता है, लाइफ हैपन्स, यू नो, वी ऑल एज। तो द पॉइंट इज, यू नो, पॉइंट पता है क्या है इस सब का, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई, पर्सनल और पब्लिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एक्चुअली लेट्स नॉट कॉल इट पब्लिक लाइफ, लेट्स कॉल इट प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा दोनों अलग अलग रहना चाहिए। भाई जिन, आई नो देर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल आउट देयर हु वर्क विद देयर पार्टनर्स, लेकिन भाई लोग, मैंने किया हुआ है, यू नो, मैंने थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड आई हैव ट्राइड माई हैंड एट इट, एंड इट डिडंट वर्क आउट दैट वेल फॉर मी। मैंने बाकी है उससे सब पूछा है। कई बार क्या होता है ना कि आप पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है, तो लोग अपने घर के झगड़े पूरी दुनिया के सामने बाहर बाहर भी आ जाती है कि तुमने, मैंने तुम्हें बोला था घर में, तुमने जूते नहीं उतारे, अपने अंडरवेयर नहीं डाले वॉशिंग मशीन में, तो भाई मीटिंग चल रही है उसमें ये सारी बातें अगर आ गई तो कैसे लगेगा आपको, आप सोच रहे हो ना। तो इसीलिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग अलग होनी चाहिए, इन माई ओपिनियन। ऑफ कोर्स इफ यू कैन मेक इट वर्क देन अमेजिंग, देन यू शुड मे बी गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ टू मेक इट वर्क। हाउ एवर, विदाउट फर्दर अडू, दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू जिमरान। जिमरान, आई होप आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए। जिमरान इज अ लिटिल ब्लू टूडे, तो उसके लिए हम एक बड़े प्यारा सा गाना बजाते हैं, डोंट हैव द ब्लूज, जस्ट लिसन टू इट, ओके? और डोंट,

वाह, कल ना मैंने कॉकटेल 2 देखी. इट्स फाइनली आउट ऑन नेटफ्लिक्स. तो अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन एक्चुअली गो एंड वॉच इट. इट्स आउट ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. दैट इज करेक्ट. अभी 2 महीने पहले रिलीज हुई थी एंड नाउ इट्स ऑलरेडी आउट. सो यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट. हाउ एवर, मूविंग ऑन, द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास इज सेलिब्रेटिंग द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे. दे आर प्रेजेंटिंग Quaid Mela 2026, a celebration of heritage, culture, and community. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural festivities, and family fun for all ages. Join them, join us on Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. Matlab dupair se raat tak agle Saturday ko at South Fork Ranch in Parker, Texas. Okay, doors will open at 2 p.m. So don't miss out on all this amazing fun. Agar my Pakistani bhaiyo behno, agar aapko jana hai to zarur jaiyega, because it's going to be amazing. And sabse best part pata kya hai, entry and parking are absolutely free, aur ye indoors bhi ho raha hai, I'm sure. To aapko matlab tapti dhoop ka samna nahi karna padega. Bring your family, friends and come and celebrate Quaid Mela 2026. ठीक है. वी आर फन एशिया रेडियो इज द मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट. तो इसी खुशी के अवसर पर मैं आपको मेरे वन ऑफ माई फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग्स प्ले करूंगी. दिस इज बाय दिस आर्टिस्ट कॉल्ड शहजाद रॉय. फन फैक्ट, मेरा भी लास्ट नेम रॉय है, लेकिन हम तो दूर दूर से कोई रिश्तेदार ही नहीं है. वो शहजाद रॉय है, मैं हूँ इपी रॉय. तो आप कोई बात नहीं, उसकी बात छोड़िए, आप गाना एंजॉय करिए.

Guys, it is 7:56 on the clock. Thank you for joining me here today. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. ब्रेक में जाने वाले हैं हम थोड़ी सी देर में, तो इसीलिए बने रहिए. ठीक है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरे गाने वाने सुनते हैं. इट्स काइंड ऑफ नाइस, यू नो, मेरी बातें बातें सुनते हैं. तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ जी, तो आपने वो जो गाना सुना अभी इसके थोड़ी देर पहले, दैट वॉज श्रेया घोषाल एंड सुनिधि चौहान, एंड दैट सॉन्ग वॉज एक्चुअली कंपोज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय सलीम सुलेमान, ऑफकोर्स. बट आपको वो वाला गाना किसी भी मूवी में सुनाई नहीं देगा. इन केस यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट सॉन्ग मोर, दैट सॉन्ग इज कॉल्ड छेला, एंड इट वॉज एक्चुअली एन इंडी रिलीज. जिनको नहीं पता, सलीम सुलेमान हैज़ एन इंडी लेबल, दे हैव एन इंडी लेबल ऑल्सो, जिसमें दे एक्चुअली फीचर अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट, लॉट्स ऑफ स्मॉलर आर्टिस्ट जो उतने पॉपुलर नहीं है बाहर की दुनिया में. ऑफकोर्स ये तो सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल थे, एंड दे डिड अ कम्प्लीटली न्यू सॉन्ग. इट्स गॉट अ प्रॉपर वीडियो एंड एवरीथिंग, लाइक अ लाइव परफॉर्मेंस वीडियो, एंड इट वॉज रियली नाइस. तो यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट. विदाउट फर्दर अडू, हम एक छोटे से ब्रेक गाना सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक में जाएंगे. ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, देन यू नो वट इज द टाइम, इट इज टाइम फॉर द गिव अवे. तो हम खेलेंगे इसके गाने के बाद. So stick around.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
7: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: जिंदगी।

0: 10% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
1: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Hey, tumne kabhi insurance liya?
4: Liya.
3: Kabhi policy samajh bhi aaya?
4: Nahi aaya.
3: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: विजिट www.sanadainc.com today.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route. Rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
5: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
4: क्यों?
5: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
4: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.

वाला टाइम आ गया, पता है कौन सा वाला टाइम आ गया है? गिव अवे टाइम यू गाइस, यस दिस इज द गिव अवे टाइम। देखो एट फनेशिया हमको पता है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी है, ग्रोसरीज कितनी महंगी हो चुकी है, एंड वी नो हाउ हार्ड एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक एंड्स मीट। दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग टू यू द एब्सोल्यूट अमेजिंग फूडिस्तान का गिव अवे। वूहू, इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गाना गन्ने का जूस, नॉट गाने का जूस, फ्रेश गन्ने का जूस, केटरिंग सर्विसेज एंड इवन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, देन यू नीड टू विजिट फूडिस्तान इन ऑबरी। तो आपको क्या मिलेगा फूडिस्तान से? एग्जैक्टली, दे ब्रिंग एवरीथिंग दे सी ऑल इन वन प्लेस, बट दे प्लस दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी ऑन ऑल ऑर्डर्स विद इन $30, ओवर $30। सो विद इन 5 miles, तो अगर आप 5 mile रेडियस में हैं और आपका बजट बिल जो है $30 के ऊपर है, देन यू कैन गेट डिलीवरी ऑल्सो, ठीक है? एंड अगर आप ये गिव अवे जीत जाते हैं, वन लकी विनर विल विन अ फ्री आइटम फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट विच इज इन साइड फूडिस्तान। इट इज एन इंडियन रेस्टोरेंट विच इज इन साइड फूडिस्तान। सो एग्जैक्टली, वी अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज वाई। और ऑल्सो फॉर माई फाइनेंशियल लिसनर्स, यू कैन ऑल्सो गेट ए 10% डिस्काउंट ऑन योर बिल बाय मैंशनिंग द कोड फन एशिया। तो जब आप ऑर्डर करेंगे तो ज़रूर बोलिएगा कि हे वी आर फन एशिया लिसनर्स एंड दे विल गिव यू अ 10% डिस्काउंट टू। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गो अहेड एंड प्ले द गिव अवे गेम। रिमेंबर, आप गिव अवे में क्या जीत सकते हैं? यू कैन विन वन फ्री डिश फ्रॉम द रेस्टोरेंट द वाइब विच इज इन साइड फूडिस्तान, एन अमेजिंग ग्रोसरी स्टोर यू नीड टू गो चेकआउट इन ऑबरी, ठीक है? तो आज का हमारा गेम है साउंड्स लाइक, और जिसको हम पहले भी बोलते थे, द कॉपी कैट गेम। तो मैं गाना बजाऊंगी, ठीक है? ये बहुत ही आसान है, आई एम श्योर यू गोना गेट इट लाइक इंस्टेंटली विदाउट इवन ट्राइंग, लाइक मतलब इट्स श्योर शॉट। लेकिन कैच ये है कि आपको ये गाना फिगर आउट करके इसका हिंदी वाला वर्जन बताना पड़ेगा, और मेरे लिए 2 लाइन गाने भी पड़ेगी और उसमें मैं आपके साथ थोड़ा सा गाऊंगी। ओके डनजोस, सो दैट इज व्हाट आवर गेम इज। आपको गाना बताना है और मेरे लिए पहली 2 लाइन आपको गा के भी सुनानी है। क्यों, ऐसे ही थोड़ी ना हम दे देंगे किसी को भी फ्री खाना। तो गाइज, कॉल्स मेरे पास ऑलरेडी आ रही हैं, गाना मैंने बजाया है नहीं अभी तक, तो पहले गाना सुन लो, उसके बाद आप ज़रूर आंसर देना। ओके हियर वी गो।

ऑलराइट गाइस, भाई जब आपका भी दिल टूटे ना, डोंट डू दिस सात समंदर वाला चक्कर. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस, ऑल्दो आई लव दैट सॉन्ग, लेकिन इट्स सो रॉन्ग लिरिकली स्पीकिंग. मतलब तो वो बंदा ऐसे छोड़ के चला गया, ही इज मूव्ड ऑन विद हिज लाइफ, लेकिन ये पीछे पीछे उसके पीछे पीछे घूम रही है. शी इज वॉन्ट गॉन टू अनदर डिफरेंट कंट्री. चलो ठीक है, माना प्यार व्यार है, लेकिन भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है. तुम एक लड़के के पीछे ऐसे भाग रहे हो घर बार छोड़ के, मतलब डोंट डू दिस. अगर आपका दिल तन्हा हो गया है तो देन देर आर अदर वेज टू काइंड ऑफ हैंडल इट. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. तो मतलब उसमें उसको अपने अपनी अस्तित्व में उसको कुछ नहीं मिल रहा है. वो शी हैज़ आइडेंटिफाइड विद हर सेल्फ एज दिस पर्सन हु इज हैज़ ओनली वन अस्तित्व, विच इज़ विद हर पार्टनर. यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट एंक्शियसली अटैच्ड पीपल एंड अवॉइडेंट अटैच्ड पीपल, राइट? फ्यू वीक्स अगो तो नहीं, लास्ट वीक ही. दैट हैज़ प्रीटी मच बिन माई थीम, बिकॉज आई हैव जस्ट कम अक्रॉस दिस थिंग एंड आई फील लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट डिस्कस. सात समुंदर पार का पूरा कॉन्टेंट एंड द वे द सॉन्ग इज रिटन एंड द वे दे हैव यू नो काइंड ऑफ विजुअलाइज दिव्या भारती इज कैरेक्टर, शी इज द पक्का एंक्शियसली अटैच. 100% पूरे गाने में ही कूट कूट के भरी हुई है एंक्शियसली अटैच, बिकॉज हर दिल वेंट तन्हा. सो शी डिड दैट. अगर मैं होती उसकी जगह तो मैं तो भाई शॉपिंग करती, बिकॉज यू नो वॉट, अगर तन्हा दिल है, तन्हा दिल को आप शॉपिंग से भर सकते हो. दैट इज़ वॉट आई लाइक टू डू. ओके, लेकिन कई बार वो करते करते कुछ ज़्यादा हो जाता है. तन्हा दिल तो ठीक है, लेकिन तन्हा वॉलेट नहीं होना चाहिए यार. पता चले आपके पैसे किसी और के वॉलेट को अनतन्हा कर रहे हैं. तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स डू दिस वन सॉन्ग. वी कम बैक, वील टॉक मोर. कल ना मैंने कॉकटेल टू देखी एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट कॉकटेल टू. ठीक है, लेकिन उसके पहले ये छोटा सा

That is right, guys. वो गाना हम सुनेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन गाना सुनने से पहले ब्रोज, माय ब्रोज, आपको पता है रक्षाबंधन आ रहा है और चौक चौक कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरांट दे वांट टू हियर योर मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और योर सिस्टर. तो अगर आपकी कोई प्यारी सी बहन या है या प्यारा सा भाई है और उसके साथ आपकी कोई बड़ी अच्छी सी स्टोरी है तो ज़रूर शेयर करिए. सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप. आई टेल यू द फ़ोन नंबर 214-837-7147. I don't select anyone, by the way. I don't even know what your voice memos are going to look like. But if you have something really exciting to share, like a memory with your brother or your sister, then you can send it to us and you could win exciting prizes, including dining experiences, entertainment, resort stays, and the grand prize, unforgettable sibling reunion weekend. So, agar aap bachpan mein kumbh ke mele mein bichhad gaye the, to maybe that sibling reunion weekend at Chalk Talk Casino and Resort Durand aapko dobara mila dega. ये तो नहीं पता, वो आपको इंडिया जाना पड़ेगा. शायद कुंभ के मेले में आप दोबारा मिल जाओगे, लेकिन आप गेम तो खेल ही सकते हो यार. फॉर द कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स चेक आउट फन एशियाज रेडियो सोशल मीडिया पेजेस चौक टॉक कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरांट. ओके, वे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. यू हैव टू बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. तो बच्चा लोग, अगर आप 8-10 साल की उम्र के हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने भाइयों के साथ जो भी आपकी मेमोरीज हैं यू कैनॉट शेयर दम येट अनलेस योर ब्रदर इज 21. दैट वुड चेंज इट कम्प्लीटली. ओके, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. और पता है फन फैक्ट क्या है, 28 को है रक्षाबंधन. 28 को पता है और क्या है, मेरा जन्मदिन. वाह, तो कोई मुझे अपनी बहन बना के मुझे कोई गिफ्ट देना चाहता है, आई विल टोटली टेक इट. ओके.

गाइस क्या मजेदार गाना नहीं है वो पता क्या है, वो मेरी मम्मी का ना फेवरेट सॉन्ग है। एब्सोल्युटली मम्मी को कभी भी पार्टी करने का मूड होता पार्टी तो नहीं, आई मीन इट्स शी इज माई मॉम, आई मीन आई डोंट थिंक आई एवर सॉ हर पार्टिंग कोट अन कोट। हाउ एवर एवरी टाइम शी वॉज इन अ गुड मूड एंड शी वॉज स्माइलिंग एंड वो घर पे ऐसे ही खाना पकाते पकाते यू नो शी वुड ब्रेक इन टू अ डांस समटाइम्स एंड और लाइक जस्ट सॉन्ग, और मेरी मम्मी सुन रही होती है। मम्मी आप सुन रहे हो ना, इंडिया से दिल्ली से बैठ गए, मुझे पता है आप ऐप पे सुन रहे हो। तो शी वुड स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग रंबा हो। तो मम्मी तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे तो नहीं है, कोई बात नहीं, आज मुझे याद आ गया। तो गाइज एक गाना सुनते हैं, देन आई विल टेल यू अबाउट समथिंग रियली अमेजिंग दैट इज हैपनिंग इन सेप्टेम्बर। सो स्टिक अराउंड, वी हैव गॉट सम रियली कूल न्यूज़।

तो गाइस विदाउट फर्दर अडू इट इज 8:50 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ ओनली टिल 10 o'clock टुडे. तो बिफोर वी गो इनटू अ ब्रेक व्हिच इज गोना बी एट 9 o'clock, एक छोटी सी अनाउंसमेंट. पता है आपको कौन आने वाला है भाई? दिस ईयर इज समथिंग. ओके, इतने सारे अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट आए हैं एंड डैलस की जनता इज लाइक सुपर लकी. मैं बोल नहीं रही थी कि आई थिंक द वर्ल्ड हैज फाइनली ओपन्ड इट्स आईज टू डैलस. पहले मुझे एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों में तो इतने आर्टिस्ट नहीं दिखे जितने अभी आ रहे हैं. एंड लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बिग आर्टिस्ट. दे हैव ऑलवेज गॉन टू प्लेसेस इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑल दीज अदर प्लेसेस. लेकिन डैलस में कमी मतलब आए, इट्स नॉट बिन दैट फ्रीक्वेंट. हाउएवर इट्स चेंजिंग यू गाइस. एवरीवन इज रियलाइज हे डैलस हैज मोस्ट देसी जनता. तो इसीलिए अगर आपको आर्टिस्ट प्रमोशन करना है तो डैलस जाना जरूरी बनता है. ओके, बिकॉज दिस इज वेयर जनता का काम वहीं बनता है. एनीवेज, दैट वाज अ रियली बैड राइम एंड टोटली डिड नॉट मेक सेंस ग्रामेटिकली. लेकिन वो आगे बढ़ते हैं. पहले अनाउंसमेंट तो बोले, आपको पता है ना सोनू निगम इज कमिंग. ही इज सो अमेजिंग. वो दर्द भरी आवाज, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, बेस्ट बॉलीवुड सिंगर्स इन माय ओपिनियन इन टुडेज टाइम्स. एंड आई एम एब्सोल्युटली अ ह्यूज फैन. व्हाट ए फिनोमिनल करियर ही इज हैड एंड ही इज स्टिल गोइंग एट इट. सोनू निगम इज कमिंग टू डैलस फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. मुझे उनके बारे में आगे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. यू ऑल नो हु सोनू निगम इज. वेन सेप्टेम्बर 26th, विच इज लाइक मोर देन अ मंथ अवे. लेकिन टिकट सभी से ले लेना. ओके, इट्स गोना बी ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 26th एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. सो विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर. ओके, अगर आप मिकिनी वगैरह साइड में है सो देन यू मस्ट मेक श्योर दैट यू गो फॉर इट. Your favorite songs, that iconic voice, everything is live. Tickets are available at Ticketmaster. Okay, for more information, call 855-360-SHOWS. Okay, Revolution Sonu Nigam Live, exclusive media partner, that is Fun Asia, the one and only. So stay tuned, maybe there might be some games or songs or giveaways, I don't know. अभी तक तो मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बट आप फन एशिया सुनते रहिए ऑल द वे टिल सितंबर 26th एंड यू नेवर नो, यू कुड गेट लकी टू. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्सर्ट. आई थिंक इट्स गोना बी सो गुड.

Guys, we are back. This is Ippy the Hippie, only on Fun Asia Radio 104.9 FM. Aur aap sun rahe hain mera show, An Evening in Dallas. Theek hai guys, to aage badhte hue, jaise maine aap sabko promise kiya tha, okay, we are going to talk about like some characters and analysis, jo ki hum kuch dinon se kar hi rahe hain. Lekin we shall continue that discussion. Pata hai maine kal kya kiya? मैंने कल कॉकटेल 2 देखी. इट इज़ ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. तो येस्टरडे आई थॉट, और उसके पहले वाले दिन मैं वापस आऊँगा. मैंने वो दोनों मूवीज़ देखी, ठीक है, दिस वीकेंड पे बैठ के. आई कॉट अप ऑन माय बॉलीवुड. तो कॉकटेल 2 देखते हुए मुझे ये ध्यान आया कि भाई कॉकटेल 2 आई थॉट विल बी लाइक कॉकटेल 1, ठीक है. तो फिर मैंने सोचा कि चलो कॉकटेल 2 देख ही लेते हैं. बट इट टर्न्स आउट इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड इमेजिन्ड. आई मीन आपको, आपने सुना ही होगा, फनेजिया में हम लोग वी वर डूइंग द प्रमोशंस, और प्रमोशंस में वी वर टॉकिंग अबाउट अ लव ट्रायंगल, लिटिल बिट ऑफ ड्रामा, लिटिल बिट ऑफ दिस. तो आई मीन जो मैंने प्रमोशन किया था उससे बिल्कुल अलग ही निकली मूवी. मैंने कहा अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. सो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी. लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट इट. तो आप लोग, आई होप आपने देखी है कॉकटेल 2. नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, इट इज़ आउट ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये बोल रहे हैं कि देखो, देर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन दैट मूवी, ओके. वन इज़ कुनाल, वन इज़ दिया, एंड वन इज़ एली. तो कुनाल एंड दिया आर इन अ वेरी सिक्योर्ड, वेरी सेटल्ड रिलेशनशिप. बहुत सालों की उनकी रिलेशनशिप है, 8 साल, मतलब पूरी फैमिली में सब जानते हैं इनके बारे में. दे आर लिविंग टुगेदर, यू नो. सो इट इज़ अ वेरी मॉडर्न मूवी. इट इज़ टॉकिंग अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो. इट इज़ नॉट योर ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जैसे बॉलीवुड में दिखा रहे वो भी नहीं है. दे आर एक्चुअली लुकिंग एट द मॉडर्न टाइम्स. द फैमिलीज ऑल्सो नो दैट दीज टू गाइज दे आर वर्किंग इन गुड़गांव. दिल्ली दिखा रहे हैं, दिल्ली लाइक इट्स माई होम, राइट. तो दिल्ली गुड़गांव का दिखा रहे हैं, वहाँ पे दे आर अ कपल लिविंग टुगेदर. द फ्रेंड्स नो अबाउट दैम. बहुत सालों से कॉलेज का प्यार है. नाउ दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. कुनाल ओन्स अ रेस्टोरेंट एंड दिया इज लाइक डज सम काइंड ऑफ अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. दे लिव अ वेरी गुड कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, वेरी कंटेंट एंड वेरी सिक्योर. लेकिन शादी नहीं करी बिकॉज दे फेल्ट कि शादी की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज एवरीथिंग वॉज फाइन. दे वर लिविंग द वे दे वॉन्टेड टू. दे स्टिल लव्ड ईच अदर, दे स्टिल रिस्पेक्टेड ईच अदर. सो दे डिडंट फील द नीड टू टाई द बॉन्ड. लेकिन उसके बाद, यू नो, वंस यू आर अ कपल एंड यू हैव डेटेड फॉर सो लॉन्ग,

बाहर आसपास सब लोग क्या कहते हैं, शादी क्यों नहीं कर लेते बेटा, शादी करो. सो द प्रेशर ऑफ शादी वॉज यू नो कमिंग. तो जैसे आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल बिन थ्रू दैट सिचुएशन कि बेटा आपकी उम्र हो रही है, शादी क्यों नहीं कर लेते, शादी क्यों नहीं कर लेते. यू कैन टाई दिस पर्सन डाउन, आई डोंट नो व्हाट इफ दिस पर्सन लीव्स यू फॉर अनदर वुमन, इस तरह से चीटिंग कर लिया तो ऐसे ऐसे करके. तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में आती रहती है. तो दिया के दिमाग में आई कि हम शादी क्यों नहीं कर लेते इस तरह से. लेकिन दिया के दिमाग में एक ख्याल और आता है. वंस दे वर लाइक सिटिंग इन अ ग्रुप, और उसके ग्रुप में उनको पता चलता है कि एक उसकी दोस्त है, उसका एक रिलेशनशिप चल रहा है. एंड देन द रिलेशनशिप में रिलेशनशिप उनका टूट गया. मेरी फ्रेंड वहां से बोल रही, कहती है कि यार तुम ये स्टोरी मत बताना, मैंने कॉकटेल टू नहीं देखी अभी तक. नहीं नहीं डोंट वरी, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, तो हम एनालिसिस कर रहे हैं रुचि, डोंट वरी. ओके, तो हम एनालिसिस कर रहे हैं. तो बेसिकली उसके दिमाग में ना फिर ये इनसिक्योरिटीज आ जाती है कि क्यों, व्हाट इफ माय पार्टनर आल्सो हैज आईज फॉर अनदर वुमन, वो दूसरी लड़की को तो नहीं देख रहा, व्हाट इफ ही चीट्स ऑन मी टू, ऐसे ऐसे करके उसके दिमाग में आ जाता है. सो शी डिवाइसेस दिस गेम दैट शी वॉन्ट्स टू प्ले विथ हर फ्रेंड. सो वील टेल यू मोर अबाउट वॉट हैपन्स, लेकिन पहले ये गाना.

तो गाइज बेसिकली द मॉरल ऑफ द इंटायर स्टोरी इन दिस केस, इन केस ऑफ कॉकटेल टू, इज दैट आई मीन आई एम नॉट जंपिंग टू द कंक्लूजन, डोंट वरी, लेकिन वो बोलना ज़रूरी भी है कि सम रिलेशनशिप्स डोंट फॉल अ पार्ट बिकॉज देर इज नो लव. द ट्रूथ इज सम रिलेशनशिप्स, एक्चुअली अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स फॉल अ पार्ट बिकॉज देर इज टू मच फियर और देर इज टू मच डाउट और लैक ऑफ ट्रस्ट अराउंड लव. ओके, ये मेन चीज़ जो है, जो दिया के दिमाग में जो ख्याल आया, हु वॉज कुनाल्स पार्टनर, कि डज ही स्टिल लव मी, डज ही विल ही चूज मी इफ समबडी बेटर केम अलॉन्ग, आर यू विथ मी बिकॉज यू लव मी और आर यू विथ मी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन और आर यू जस्ट कंफर्टेबल. ठीक है, कई बार हम क्या होता है, सम पीपल जस्ट स्टे इन रिलेशनशिप्स बिकॉज यू नो दे आर कंफर्टेबल एंड वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो थोड़ी देर बाद. ओके, एंड समटाइम्स इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग योर पार्टनर कि भाई यू नो मेरे दिमाग में ये इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, कैन यू प्लीज हेल्प सॉर्ट दीज इनसिक्योरिटीज आउट, कई बार क्या होता है वी लैश आउट, या तो एक लड़ाई हो जाती है उसके चक्कर में, तुमने उसका फोन कैसे, उसको रात को मैसेज कैसे किया, हाउ डू यू लाइक समवन एल्सेस इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह वगैरह, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन ऑल द टाइम, या फिर तुमने उस लड़की को कैसे देखा, यू नो ऑफकोर्स अगर गलत नज़र से देख रहे हैं तो देखने दो, लेकिन कई बार पूछ लेना भी ज़रूरी है. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग द पार्टनर कि भाई वॉट इज़ द प्रॉब्लम, आई मीन और लाइक यू नो आई एम हैविंग दीज इनसिक्योरिटीज़, कैन यू प्लीज़ सॉर्ट आउट माई इनसिक्योरिटीज़, वो सोचती है कि भाई लेट्स क्रिएट अ लिटल टेस्ट, लेट्स टेस्ट माई पार्टनर एंड लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ कि वो एक्चुअली मेरे से प्यार करता है कि नहीं. एंड इन माई ओपिनियन, ओके, इन माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक दैट इज एब्सोल्यूटली टॉक्सिक बिहेवियर. क्योंकि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अपने पार्टनर के तरफ यू नो पार्टनर से कोई डाउट आ रहा है, कोई ट्रस्ट इश्यूज आ रही है, यू शुड स्ट्रेट अवे आस्क योर पार्टनर इंस्टेड ऑफ यू नो मेकिंग अप दीज रिडिक्यूलस टेस्ट, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर रहे हो, आस्किंग योर फ्रेंड टू काइंड ऑफ लाइन मारो ऑन योर पार्टनर. आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक ब्रो, इसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग तीनों कैरेक्टर्स में से पता है कौन है? दिया इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग. क्योंकि इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग यू नो हर पार्टनर कुनाल, वो कह रही अपनी दोस्त को एली, भाई तू उस पर डोरे डाल एंड हम ट्राई करके देखेंगे कि वो तेरे डोरों पे गिरता है कि नहीं, एंड ही एक्चुअली फॉल्स फॉर यू और नॉट, एंड देन वी विल सी, एंड देन इफ ही डजंट दैट मींस ही ट्रूली लव्स मी. आई मीन डोंट यू थिंक दैट्स सो रॉन्ग? डोंट यू थिंक दैट्स लाइक काइंड ऑफ रिडिक्युलस?

भाई साथ गया तो कुणाल था दिया का, तो मतलब आप याद है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट एंग्शियस अटैचमेंट एंड अवॉइडेड अटैचमेंट. तो भाई आपको क्या लगता है, दिया क्या थी? वॉज शी एंग्शियस और वॉज शी एन अवॉइडेंट? आई थिंक शी वॉज डेफिनेटली एन एंग्शियस पर्सन, बिकॉज शी वेंट टू द लेंथ्स ऑफ आस्किंग हर फ्रेंड टू मारो लाइन ऑन हर पार्टनर, हर बॉयफ्रेंड, हर पार्टनर ऑफ सो मेनी ईयर्स, इंस्टेड ऑफ सिंपली आस्किंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी, व्हाट इज आवर रिलेशनशिप काइंड ऑफ बिकमिंग. बेसिकली शी वांटेड टू गेट मैरिड, यू नो, क्लियरली शी वॉज फॉलिंग अंडर द प्रेशर, क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे कब शादी करो कब शादी करो. कुणाल अपनी जिंदगी जी रहा है, कुणाल को कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन दिया उससे शी इज गेटिंग इनसिक्योर, क्योंकि भाई इतने साल हो गए, दे आर टुगेदर, दे आर लिविंग इन, लेकिन कुणाल ने अभी तक प्रपोज नहीं किया, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. तो शी प्रिटेंड्स दैट अच्छा ठीक है, नो आई एम गोना प्ले अलॉन्ग, आई एम टोटली सिक्योर, वी गो टू लाइक, दे गो टू सिसिली, इटली जाके वेकेशन कर रहे हैं वगैरह, एंड वहाँ पे इटली जाके दे आर इंजॉइंग देयर ड्रिंक्स, दे आर पार्टिंग, दे आर डांसिंग. लेकिन वहाँ पे शी मीट्स अ फ्रेंड एली, एंड देन शी टेल्स अ फ्रेंड एली कि भाई लेट्स चेक कुनाल स्ट्रेंथ, डज ही फॉल फॉर यू आर नॉट. उसमें पता है क्या होता है, दो रेड फ्लैग्स दोनों ही है, दोनों लड़कियां इसमें रेड फ्लैग्स हैं, माई गॉश. तो उसके बाद जो भी होता है, फिर दिया जाती है, एली उस पर डोरे डालती है वगैरह, मतलब ठीक है. और उसके बाद कुनाल एक्चुअली डज नॉट फॉल फॉर एली, बट क्लियरली कुनाल डज डिवेलप फीलिंग्स फॉर हर फ्रेंड. तो उसके बाद क्या होता है मैं बताऊंगी आप सबको, लेकिन एक छोटे से गाने के बाद. लेकिन उसके पहले गाइज, अपने दिल के साथ, अपने मेंटल हेल्थ के साथ, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए यू नीड टू हेड डाउन टू टेक्सस प्राइमरी केयर. फॉर 13 ईयर्स टेक्सस प्राइमरी केयर हैज़ केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद ए ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन इंक्लूडिंग लनॉक्सी मेडिकल. दे आर फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, X-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan med spa services all under one roof. They are open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. and they take walk-ins, so no appointments are needed. So let's listen to this one short song and then we will come back with Ali, Dia, and Kunal ki love story.

तो आगे क्या होता है स्टोरी में? आगे ये होता है कि भाई इंस्टेड ऑफ आस्किंग द ट्रूथ, वो उसको बोलती है कि तुम यू हिट ऑन माई पार्टनर एंड देन वील सी. तो भाई जब दो लोग, स्पेशली अ गाय एंड अ गर्ल, व्हेन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड यू नो इन अ वेरी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, वो मस्ती कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और दे आर इन्जॉइंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ, ऐसे करके फिर यू नो दे आर हैविंग सो मच फन, आपको नहीं लगता उनकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी? ऑफकोर्स उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है, लेकिन द मेन टेस्ट ऑफ कैरेक्टर कम्स देन कि वेदर द गाय एक्चुअली एक्ट्स अपॉन इट और नॉट. तो हमें पता नहीं चलता है, एक ऐसा सीन आता है जिसमें पता चलता है कि ओ समथिंग इज अबाउट टू हैपन बिटवीन द टू ऑफ देम, लेकिन समथिंग डज नॉट रियली हैपन बिटवीन द टू ऑफ देम, वी डोंट नो. ओके, दे द ओनली थिंग दैट दे से इज हे गाइज वी आर अडल्ट्स, तो जब व्हेन यू आर इन अ लाइक अ सिचुएशन लाइक दैट, गलतियाँ सबसे होती है, वट एवर. वी डोंट नो इफ दे हुक्ड अप ऑर नॉट, वी जस्ट नो समथिंग हैपन्ड. एंड उसके बाद यू नो शी कम्स बैक और वो कहती है कि देखो भाई एली, एली दिया को कहती है, एली देखो भाई दिया, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है कुणाल, ही इज़ वेरी वेरी वेरी लॉयल, उसने तो मैंने इतनी घास डाली उसको, इतनी घास डाली, उसने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, ही इज़ लाइक डिवोटेड टू यू, ही लव्स यू, सो यू नो ही इज़ ऑल योर्स, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर हिम. एंड देन यू नो एली प्रपोजेज एंड दे आर अबाउट टू गेट मैरिड. लेकिन जब उनकी शादी हो रही होती है, तब एली जो दोस्त होती है उसको रियलाइज होता है कि ब्रो मैं तो कुणाल से प्यार करती हूँ, सो आई विल लैंड अप एट माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग एंड ट्राई टू ब्रेक द वेडिंग. इट काइंड ऑफ साउंड्स लाइक यू नो दैट स्टोरी विथ जूलिया रॉबर्ट्स, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. इट्स अ वेरी ओल्ड क्लासिक मूवी कि मैं इसकी शादी तोड़ के रखूंगी. तो आपको लगता है कि प्यार में ऐसे कभी करना चाहिए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड का घर उजाड़ो? आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ मेजर मेजर मेजर रेड फ्लैग. सो बोथ ऑफ दीज गर्ल्स हैव लाइक सीरियस सीरियस इशूज, बट वी विल टॉक अबाउट इट मोर आफ्टर दिस सॉन्ग.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Aji, sunte ho?
2: Aji, nahi. Aji, sunte.
3: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
6: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?
7: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, Funasia पर ही आते हैं.

तो गाइज अब आते हैं एली की बात करने, यू नो द फ्रेंड, कोट अनकोट द फ्रेंड. एंड व्हाई आई पुट हर इन कोट्स, बिकॉज आई मीन कम ऑन, विच फ्रेंड इज गोना वांट टू डू दिस? लाइक आई डोंट, इफ यू आर अ फ्रेंड हु इज ट्राइंग टू डू दिस, आई एम सॉरी बट यू नीड टू एनालाइज योर पार्ट एज ए सो कॉल्ड फ्रेंड. तो उसमें दिखाते हैं एली, एली एंटर्स द स्टोरी लुकिंग लाइक द पर्सन हु हैज एवरीथिंग सॉर्टेड एंड एवरीथिंग फिगर्ड आउट. आई नो अ पर्सन लाइक एली बाय द वे, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे. शी इज फ्लर्टेशियस, शी इज सुपर इंडिपेंडेंट, शी इज कॉन्फिडेंट, शी इज सेक्शुअली कॉन्फिडेंट, शी इज स्पॉन्टेनियस. वो अपनी लाइफ में सिर्फ इंजॉय करती है, मज़े में रहती है. शी डज सालसा डांसिंग, शी इज टीचिंग डांसिंग. एंड देन शी इज द ऑपोजिट ऑफ द पर्सन सिटिंग एट होम वंडरिंग कि डज ही स्टिल लव मी. शी सीम्स लाइक शी इज वेरी सिक्योर इन हर प्लेस इन हर लाइफ. लाइक she is one of those people who is like ki nahi bhai mujhe to sab pasand karte hai, everybody loves me, I'm not going to be that person. Lekin actually irony pata kya hai, the irony is she is not that person. She actually looks like the person who is afraid of love, which is why she is not in a relationship. She might be afraid of it so much that she runs away from it. So she's like a combination of anxious and avoidant, I would say. She's like a combination of both of them. Ali begins by treating Kunal like a game. Wo pehle apne uski jab dost aati hai Diya, use bolti hai ki bro you hit on my boyfriend and then we'll see. Pehle to Ali kehti hai ki are you sure, I mean come on, you know this is me, I'm so like hot and everything, I don't think he's going to be able to resist himself. Wo kehti hai nahi, let's try it out and let's see, you seduce him and then we'll talk about it. To Ali treats Kunal like a game. तो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है. देर इज डिस्टेंस सम वेयर प्लेसेज, देर इज हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यू नो द टिपिकल मैनिपुलेशन गेम्स दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स यूज. ठीक है, एंड इफ इट्स लाइक फन एंड गेम्स देन नोबडी कैन रियली हर्ट यू. सो शी कैन टीज, शी कैन वॉक अवे, शी इज इन कंट्रोल, शी थिंक्स शी इज गॉट इट एवरीथिंग डाउन टू द टी. बट सडनली अ गेम इजंट अ गेम एनी मोर. वेन स्पेंडिंग सो मच टाइम टुगेदर विद कुनाल शी रियलाइजेज ओह I have actually fallen for this guy. And then the moment you think like, okay, I'm not looking for a relationship, that's the moment you realize, ki nahi yaar, I'm also looking for a relationship. I'm getting close to this guy. Then what do you do? I don't know. We will find out right after this song. However, jaane se pehle mujhe do announcements karni padegi. Aapko, by the way, agar aapko aisi insecurity ho rahi hai, guys, don't let your partner contact some kind of ally. Just give her some security, sense of security that she needs. Talk to your girl. Or if you don't want to talk to her, you can take her to Tanishq, kyunki Tanishq Festival of Diamonds chal raha hai. 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the exchange of old gold above 18 carat. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply.

गाइस, दिस इज एपी द हिप्पी. इट इज 9:46 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ 15 मिनट ही और रहने वाली हूँ, लेकिन मैं बात भी एक्चुअली सिर्फ 5 मिनट ही करूँगी, क्योंकि गाने भी बजाने होते हैं यार. आप गाने सुनने के लिए आए हो यहाँ पे, तो गाने ज़्यादा ज़रूरी है. स्टोरीज भी चलती रहेंगी, लेकिन उसके पहले आपको पता है ना, फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग एन ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे. दैट्स राइट, फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेज, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल and fresh flavors that you'll keep going back for. And all of this is only for $24.99 per person, which is actually really affordable. किसी भी रेस्टोरेंट में आप खाने जाओ तो नॉर्मल बिल $25 से $30 आता ही है. तो उसकी जगह पे बफे में चले आओ, इतनी सारी डिशेस खाने को मिलती हैं यार. Enjoy the buffet on Saturday to Sunday from 12 PM to 3 PM. Take your family, friends and make your weekend delicious at the Flavor Lounge, 5855 Preston Road in Frisco. Flavor Lounge, good food and good memories. That is right. तो guys, आगे बढ़ते हुए हम बोल रहे थे Cocktail 2 के characters के बारे में. तो when I was watching it, I was like, यार दिया और ये Ali, एक दिखाया तो अलग अलग characters है. One is this free spirited, अपने आप को समझती है Ali, तो she thinks like, oh, I'm more free spirited, मैं इतने पैसे नहीं खर्च करूंगी अपनी शादी में, शादी should be in a court, और उसके बाद कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में हम अपना हनीमून स्पेंड करेंगे. What a free bird I am, hippie type की, बिल्कुल वैसी सी. ठीक है भाई, एपी द हिप्पी तो वन ही है, देयर इज ओनली वन एपी द हिप्पी, लेकिन शी इज ट्राइंग टू बी लाइक दिस हिप्पी पर्सन. वेयर इज दिया इज द कम्प्लीट ऑपोजिट. शी इज लाइक मोर, शी इज लाइक मोर टुगेदर, मच्योर. शी इज लाइक शादी में ये इवेंट होगा, वो इवेंट होगा, हम ब्राइड्समेड, बैचलरेट पार्टी भी नहीं करेंगे. बैचलरेट पार्टी की जगह लेट्स हैव अ ग्रोन अप्स पार्टी, यू नो, बिकॉज बैचलर्स एंड बैचलरेट इज सो चाइल्डिश, दे लुक लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट. ओके, however, अगर आप deep down देखो, they are both like mirrors, they are both equally insecure. ठीक है, एक भाग रही है अपनी insecurity से और एक insecurities में इतना खोई हुई है कि that she doesn't want to confront it. ठीक है, वो दूसरे रास्ते ढूंढ रही है in order to confront it. Ali wants Kunal after unexpectedly discovering that how much she wants him. Dia wants Kunal because she is afraid of losing him. So they are kind of the same thing. The final goal is Kunal. मतलब Kunal ही somehow will fix all their problems. But guys, problems जब अंदर होती है ना, तो कुणाल, प्रणव, जो भी है, I mean, I don't know who Pranav is, but it doesn't matter who the guy is. The problem is inside you. Nobody else can fix it, okay? One wants certainty, the other wants this possibility. One has history, the other has novelty of being something new and shiny. One represents familiarity and the other represents excitement. और कुणाल इन दोनों के बीच में पिस रहा होता है. ठीक है, ही इज लाइक, मैं इसके पास जाऊँ कि उसके पास जाऊँ. दिया के साथ उसके पास हिस्ट्री है, फेमिलियरिटी है, घर है, इतना सारा प्यार, सालों का प्यार है. Ali के साथ, ooh, it's so spontaneous, so exciting, so new and fresh. That shiny object you see at the Costco shelf, you know, like, oh, wow, आज देखते Costco में क्या आया है. You, then you go grab it. Think about it like that, okay? Did we confuse novelty with compatibility? नहीं ना, हमेशा जो नई shiny चीज़ object होती है shelf में, you don't necessarily need that. Yes, it might give you immediate satisfaction, but there is a term called delayed gratification. Okay, so research it. अगर आपको नहीं पता what I'm talking about, research it. It is a very very interesting word. हर चीज कई बार हम देख के कहते नहीं, I need this, I need this, I need this right now. But once you make yourself understand that, कि do I really need it? Or am I just attracted to this because this is shiny and new, and now I don't really have anything going on in my life, so I'm just going to go towards this new little shiny object, okay? Someone can make you feel alive without being capable of building a life with you. Someone can make you feel safe without giving you the adrenaline of a new romance. Adult love asks us to learn the difference. That is the difference between ye Bollywood wala bachpan ka pyar, excitement, all this, पटाखे फूटने वाला प्यार, या फिर जस्ट सिंपल प्यार जो विच फील्स सेफ, विच फील्स फेमिलियर, एंड विच इवन सम पीपल माइट इवन कॉल इट बोरिंग, बट मे बी दैट इज वॉट ट्रू कंपेनियनशिप माइट बी.

तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर मी आज के लिए, लेकिन मैं कल से फिर आऊंगी, मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM. यस यू नो व्हाट इज द टाइम, इट इज एन इवनिंग इन डैलस एंड आई विल बी बैक हियर टुमारो एट 7 PM. एली दिया और कुणाल की स्टोरी हम कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज तो टाइम ही खत्म हो गया यार, इतनी सारी चीजें थी आज तो टाइम खत्म हो गया. लेकिन डोंट वरी, वी विल बी बैक टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी. ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल एंड अ ब्यूटिफुल नाइट. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Hello guys this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Panacea Radio

0: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: एक बार जो मैंने commitment कर दी, तो फिर सिर्फ fun Asia ही सुनूंगा।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Funasia.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज़।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funnacious Radio.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Dad, property papers कहाँ हैं?
2: Laptop में.
1: Investment?
2: Google Drive.
1: Insurance? Passwords?
2: बेटा, don't worry, मुझे सब पता है.
1: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले

0: Tandoori Flame, located in Garland, is the new flavor destination for all spice lovers. Serving up sizzling tandoori platters, rich curries and all your North Indian favorites with that home-style punch. From smoky tandoori kebabs to velvety curries and fresh hot naans. Every plate feels like a celebration. So step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. Tandoori Flame Restaurant, ladies and gentlemen, is located in Garland and a must try. Once you try it, I don't have to say anything, you will be going back because the food is so yummy. Let's round off this hour of the program and then I have another very busy hour coming up for you. Stay with me right here at 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: Ajji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
10: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
13: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
13: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
13: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
11: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
22: अजी सुनते हो?
23: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
14: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
24: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
25: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
24: कहाँ?
26: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vive, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
15: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
27: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेजिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
15: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
0: Thank you very much for joining us on this lovely Tuesday morning, ladies and gentlemen. It's the 18th of August, and if you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show, and we'll get you caught up. I do have to remind you all about the weather. You all know it is extremely hot. I do want each one to know that it's an extreme heat warning that we are under. Our regular temperature is supposed to be 106 today. I'm not talking about the heat index. I'm talking about the regular temperature, very dangerous heat, and grass fire danger also. So please make sure that you are careful, and if you see any very dried plants around your homes, please make sure that you remove them, because they are the ones that cause these fires. You know, in Arlington yesterday, there was a restaurant and some neighboring businesses that were completely damaged. The Beirut Grill, the Mediterranean restaurant, along with the Smash Toast. It was a 4-alarm fire in Western Arlington, and that happened yesterday. And the footage there on this chopper showing several buildings around that area on Abram Street there in Arlington that caught fire. The building itself, of course, was, when we looked at it, it was missing its roof with fire rising up from the walls. And the Beirut Grill confirmed that the restaurant, including Smash Toaster, which is next door, sustained significant damage. Both restaurants, of course, were closed at that time. So they were unaware yet how that fire started. Beirut Grill had been in business for more than 10 years and now completely gutted with this fire, all because of the high temperatures. So please, ladies and gentlemen, be careful.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: अरे यार, घर मिल गया।
1: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
1: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
2: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम। Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
6: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
7: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
8: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to FunAsia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you FunAsia Radio for spreading the word.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apne kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par. TheJagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panasia.
2: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
3: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
2: सच में सब संभालेंगे
3: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
4: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
4: कैसे
5: पेज 3 ईटरी
4: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
5: ड्यूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट
4: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स And great company, yani ki main.
6: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.

0: And that, ladies and gentlemen, is my show for today. I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you from 7 to 10 every morning. For those of you who would like to reach me after I leave the studios here, anything to do with the Fun Asia Network, I'll be happy to help you. The number is 214-675-1754. And you can call me or leave a message or a text anytime. 214-675-1754. And it is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
2: Hocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: It's Hoko.
4: Arey, bus bhi karo yaar.
3: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh hi nahi aa raha hai.
4: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
0: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route. Rerouting.
6: Are ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: Kyun?
7: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya pooja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
6: Achha. तो सीधा वही ले चलो
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
9: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

And ladies and gentlemen, this is Gupshup Gali with me too. Hello, namaskar, and thank you very much for tuning into Phanisha Radio 104.9 FM. Ganpati, ye jo gana suna, bas yehi celebrations agle mahine jo aa rahi hai. September 14th is the date, and the vibrant 10-day festival begins. Aur hum jo ghar pe Ganpati ko bithate hain, wo ek alag hi maza hai. Lekin maza hai saath mein khane peene ka, kyunki jo shuru hota hai Ganesh Chaturthi se, wo चलता है पूरे साल के एंड तक. तो यस, ऑल द लाइफ स्टाइल एंड द फूड चेंजेस दैट हैपन्स ड्यूरिंग दीज टाइम्स दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट, क्योंकि इनवेरिएबली कुछ वजन जो बढ़ जाता है ये फेस्टिव सीजन के बाद वो क्लियरली दिखता है. यू नो वी हैव टू बी

We have to be really mindful about all the sweets that we are eating. Yeah, that doesn't mean that you don't eat, but eat with that एक जो एक कहावत है ना कि मॉडरेशन में खाओ. मॉडरेशन, ये मॉडरेशन क्या होता है यार, मुझे तो नहीं समझ में आता. दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड लेट्स कंटिन्यू विथ मोर म्यूजिक राइट हियर.

0: Cruz. Porque arrega Santa Cruz.
1: Tu hi

बारिश कहाँ है यार, कितने है, मुझे भी चाहिए यार थोड़ी सी बारिश. यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है, बहुत सीरियसली. एंड एक्सट्रीम हीट वार्निंग टुडे एज वेल. हमारे हीट इंडेक्स वैल्यूज कुछ 108 डिग्रीज तक क्लाइम करेंगे, और हीट एडवाइजरी हमारी आज भी है, इट इज़ इन इफेक्ट, क्योंकि हमारा टेम्परेचर्स इतना हाई रहने वाला है आने वाले दिनों में. सो इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू द हीट एडवाइजरी, एंड इट्स नो ब्रेनर कि भाई जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो ज़रूर लीजिए, खूब से पानी पीजिए. यू नो माई फैमिली हैज़ दैट ऐप, वाटर ऐप, एंड इट इज़ सो इरीटेटिंग एट टाइम्स, वो जो पानी की आवाज़ आती है. इट्स अ रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी बैड एट इट. मैं एक अच्छा खासा पूरा भरा हुआ बॉटल लाती हूँ अपने साथ पानी का, लेकिन मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ यार. दिस इज़ वेरी बैड दैट आई डू विथ माई सेल्फ. सो बी नाइस टू योर सेल्फ, और गर्मी में तो खासकर खूब से पानी पीजिए. इसी बात पे एक सिप नहीं, एक गिलास पानी अभी पीजिए. मैं भी पी कर आती हूँ. दर्शन रावल का ये गाना सुने. This is the song that started his musical journey.

कई लोगों ने अपनी पहली मोहब्बत का इजहार कुमार शानू के 90s के गानों के साथ किया है. अग्री टू दैट और नॉट, अगर आप अग्री करते हैं तो ये भी अग्री करेंगे कि 90s के कुछ अनफॉरगेटेबल गाने हैं कुमार शानू साहब के. बस वही सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हिज मेलोडीज, द रोमांस वी हैड विथ हिज सॉन्ग्स एंड द टाइमलेस मेलोडीज दैट वी आर गोइंग टू लिसन फ्रॉम द प्योर 90s नॉस्टैल्जिया दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ अस. और ये कुमार शानू की आवाज़ आपके लिए ऑन सेप्टेम्बर 11 at the brand new Robinson Fine Arts in Tolino. Kumar Shanu will be performing for all of us. Wo sare gaane jinke saath hum roye hain, hum hase hain, humne party ki hai, humne romance kiya hai. Wo awaaz aapke liye on the stage of Robinson Fine Arts in Plano. Do come and enjoy. Free parking hai, exclusive meet and greet option bhi hai aapke paas. To tickets eventbrite.com pe jaake zarur khareed le. 2148692668 is the number for more information. And it is brought to you by Focus Entertainment and Fortune Group. Ek naya gaana sunwaun aapko, which released just a couple of days back. Let's listen to this one in the voice of Abhijit Srivastava.

होपफुली दिस इज वॉट एग्जैक्टली यू फील फॉर फनीशा रेडियो कि दिल ऐसा लगा है हमसे कि कहीं और दिल लगता नहीं. यू आर ट्यून्ड इन टू गपशप गली विथ मी टू. लाइक वाइज लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों से बातचीत करके ना एक चुस्ती मिलती है, तंदुरुस्ती ऑटोमेटिकली अगर आप में वो यू नो दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इफ यू हैव विद इन, तो ऑटोमेटिकली दैट ट्रांसलेट्स इन टू गुड हेल्थ. तो मैं तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ एंड थैंक्स टू यू ऑल. और यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, फॉर ऑल माई पाकिस्तानी लिसनर्स हियर, आप लोग भी तंदुरुस्त और चुस्त हो जाएँ क्योंकि पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस लेकर आ रही है कैद मेला 2026 एंड दिस इज डेफिनेटली ए डे एंड अ टाइम दैट यू ऑल हैव टू गेट टुगेदर to enjoy the celebrations. August 22nd, Saturday, August 22nd, yani ki easy Saturday ki baat hai, 3 PM to 11:45 PM at South Fork Ranch in Parker, Texas. Aur aap enjoy kar sakte hain all the festivities, all the celebration that is going to be so amazing for all of you. And here's the best part, entry aur parking bilkul free hai aap logon ke liye. To laiye apne families ko saath, apne friends ko saath, और सेलिब्रेट कीजिए कैद मेला 2026. मीडिया पार्टनर फनेशा रेडियो 104.9 FM.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
10: कौन सा?
9: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
10: अरे सारे तो सेम है।
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
10: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
12: Tracks that put you on the right track.

इट इज लेडीज एंड जेंटलमैन बरेली की बर्फी जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2017. ऑलमोस्ट 10 साल होने को है, लेकिन इस फिल्म और इस फिल्म की मेमोरीज, फिल्म के गाने और फिल्म की मेमोरीज बहुत ताज़ा हैं अभी भी हमारे दिमाग में. अश्वनी अय्यर तिवारी वॉज द डायरेक्टर एंड शी डिड अमेजिंग एट मेकिंग दिस वन. और राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, कृति सैनन, दे वर जस्ट फैंटास्टिक. एक फिल्म जो कि एक स्मॉल टाउन उत्तर प्रदेश में सेट की गई थी, और वो जो उनका उनका जो लिंगो था और उनका जो सेटअप था वो बहुत बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी ये. एंड यस, वी ऑल हैव वॉच्ड इट. आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, इसीलिए हमारे सेगमेंट का हिस्सा बना है इन द द शो विच इज़ कॉल्ड गपशप गली. और मेरा नाम है मीठू, आप लोगों के साथ आज एक्सटेंडेड आवर्स तक मैं रहने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू बी हियर अंटिल 1:30. तो जी हाँ, बहुत सारे गाने तो हैं, बहुत सारे गप्पे लगाने का भी मेरा इरादा है. और इन गप्पों में जो एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप तक पहुँचानी, इट इज़ अबाउट लेडीज़ एंड जेंटलमैन टू डू विथ दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड होको, जिसके बारे में आप सबने सुना है. अब क्या है ना कि 11 बजते ही हमारे ना लंच टाइम का कांटा थोड़ा सा तेज़ भागने लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एग्जैक्टली इसी वक्त सही होगा ये बताना कि होको एक ऐसी जगह है, ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है और अब इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे लोकेशंस इनके खुल चुके हैं. एंड आंट वी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि ये फ्रिस्को में है हमारे लिए, 2693 प्रेस्टन रोड सुइट 1000 इन फ्रिस्को दैट इट इज़ लोकेटेड. लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़रूर याद रखिए वो ऑथेंटिक फ्लेवर्स जो हैं, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ब्रांड्स होको इज़ हियर फॉर ऑल ऑफ अस टू एंजॉय. मतलब वही आइकॉनिक उनके सैंडविचेस, वही चना पूरी. यार ये सुन के ही मुझे ना कंजक की याद आ गई. कंजक जो होता कन्याओं के लिए होता है, ये फेस्टिवल जहाँ पे लड़कियों को इनवाइट किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके पैर धो के उनको खाना खिलाया जाता है. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेरेमनी दैट इज़ डन. एंड ये इसमें ना चना पूड़ी और हलवा, ओ हो, वो जो कॉम्बिनेशन होता था ना, आई स्वेयर. चना पूड़ी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा ना कि आइकॉनिक सैंडविचेस भी हैं इनके, फ्लेवरफुल करीज और उनका होको कोल्ड कोको दैट यू कैन हैव एट होको. दैट इज़ द प्लेस दैट यू नीड टू गो अगर आप लंच प्लेस अपने लिए ढूंढ रहे हैं. मे दैट बी होको. और मुझे भी अपने साथ रखिएगा अपने यादों में व्हेन यू ईट डिलिशियस फूड देयर, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप हम तक वो बातें भी पहुंचाओ. ठीक है, यू नीड टू टेल अस कि आपको वहाँ पे क्या पसंद आया, ताकि हम भी जाके ट्राई करें यार, क्योंकि इनके मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स हैं, पता तो चले कि आपके फेवरेट्स क्या है, पहले वही ट्राई कर लेंगे, है ना. यू आर लिस्टिंग टू गपशप गली विथ मी टू. एक और फिल्म पे जाना चाहती हूँ राइट अवे, एक ऐसी फिल्म जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2006, यानी कि पूरे 20 साल हो चुके हैं इस फिल्म को आज ही के दिन. इट वॉज डायरेक्टेड बाय शिवम नायर और ये सोहा अली खान की डेब्यू फिल्म थी और साथ में अभय देओल. एंड द स्टोरी इज एन अडेप्टेशन ऑफ द ब्रिलियंट रशियन शॉर्ट स्टोरी बाय फ्योडोर दोस्तोविस्की. या आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी हियर. ये जो कहानी का नाम है ये आपने जरूर सुना होगा, द वाइट नाइट्स, दैट्स द नेम ऑफ द स्टोरी विच हैज सीन फ्यू अडेप्टेशंस इन बॉलीवुड इटसेल्फ. एक तो मैंने बता दिया आपको, जिसका नाम बताया क्या मैंने, शायद नहीं. तो आहिस्ता आहिस्ता इज द नेम ऑफ द फिल्म जो आज के दिन 2006 में रिलीज हुई थी. लेकिन इसके अलावा दो और फिल्म्स हैं जो इसी कहानी पर बेस्ड थी, वो मैं बताती हूँ आफ्टर अ बिट. पहले ये जो है गाना पहले सुनवा तो दें आहिस्ता आहिस्ता से. एंड दिस इज द सॉन्ग दैट आई प्लान टू प्ले फॉर यू फ्रॉम द फिल्म आहिस्ता आहिस्ता.

0: सोहा अली खान की डेब्यू फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता, जो 20 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी. इन आ सेगमेंट दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री डेफिनेटली आई हैड टू प्ले दिस सॉन्ग, क्योंकि फिल्म फ्लॉप थी, एक्चुअली डिजास्टर थी, लेकिन ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था. तो लेट्स रिमेंबर के फॉर गिविंग अस दिस अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग, एंड इट वॉज कम्पोज बाय हिमेश रेशमिया. तो जो कि मैं कह रही थी आपको कि ये एक लोनली ड्रीमर की कहानी और उसके अनरिक्वाइटेड लव की कहानी, और इस कहानी को जो कि लिखा था फ्योडोर दोस्तोयेवस्की, लेट मी से दैट अगेन, इट्स दोस्तोयेवस्की, यस आई होप आई एम सेइंग इट राइट. थैंक यू सुदेश फॉर हेल्पिंग मी विद दैट प्रोनाउंसिएशन. सो यस, फ्योडोर ने ये कहानी लिखी थी 1848 में, ये शॉर्ट स्टोरी व्हाइट नाइट्स, जो कि एक जानी मानी कहानी है. तो कहानी का नाम कई लोग जानते होंगे और फ्योडोर का नाम ऑब्वियसली उसके साथ ही आता है. तो ये जान लें कि बॉलीवुड में इसकी 3 फिल्म्स बनी हैं इस कहानी पर. एक तो जिसका आपने गाना सुन लिया आहिस्ता आहिस्ता, लेट मी टेक यू बैक टू 1960, जब मनमोहन देसाई, जाने माने जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना डेब्यू किया था एज डायरेक्टर विथ दिस फिल्म कॉल्ड छलिया, विच वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाइट नाइट. व्हाइट नाइट्स का एक और वर्जन हमें मिला, या एक और एडाप्टेशन बॉलीवुड में मिला, इन द फॉर्म ऑफ संजय लीला भंसाली's विजन, और वो था सांवरिया. नाउ सांवरिया ऑल्सो डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. तो इस कहानी पर जितनी भी फिल्में बनी ना, दे हैव नेवर बीन एबल टू जस्टिफाई अपेरेंटली द स्टोरी रिटन बाय फ्योडोर, बट नन द लेस इट इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू इन्जॉय. एक फिल्म जो कि एक यू नो मेरे ख्याल से अभिषेक बच्चन की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये, एंड इट इज़ कॉल्ड घूमर. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड इट, एंड आई एम लुकिंग एट द टाइम एंड आई एम सीइंग आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू प्ले द एंटायर सॉन्ग. सो हाउ अबाउट आई प्ले इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि आपका और मेरा साथ आज 1:30 बजे तक रहेगा. तो आराम से तसल्ली से गपशप मारते हैं ना यहाँ पे, फनीशर रेडियो 104.9 FM, एंड आई विल सी यू ऑन द फ्लिप साइड. How about that, ladies and gentlemen? Once again, thank you very much for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM. While I am at it, let me quickly tell you about AG Fintechs and their supremely amazing service that they provide, from bookkeeping to payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services that you can avail with them. agfintechs.com inki website hai, and this part of my show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Aur aapke jitne bhi businesses, jo bhi business hai, you know, startup ho ya established business ho aapka, ya aap akele kuch apna kar rahe hain एंड आपको चाहिए वो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और कुछ इनोवेटिव कुछ सॉल्यूशंस जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो AG Fintechs इज द प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू. गो अहेड एंड गिव देम अ कॉल एंड फाइंड आउट योर वे अहेड. 4699429888 इज दैट नंबर. agfintechs.com इज द वेबसाइट. सी यू.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG Fintechs.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: तारा वो तारा हर तारा.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
8: लैपटॉप में.
7: इन्वेस्टमेंट?
8: गूगल ड्राइव.
7: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
8: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
7: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
6: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
6: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. NRI वेल्थ. Don't leave a mess. Leave a plan.
10: भूख लगी, जोरों की भूख लगी.
11: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
13: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
14: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
15: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
16: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
15: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. What would happen to your business if a key owner, partner or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
17: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
18: Tracks that put you on the right track.

एंड इट इज द मूवी घूमर लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, और इसीलिए ये गाना मैं प्यार से पूरा प्ले करना चाह रही थी आप लोगों के लिए. ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट इट इज, एंड अमित त्रिवेदी एट द हेल्म ऑफ इट. कैसे मैं आधा अधूरा गाना प्ले कर ली यार. बिग फैन ऑफ अमित त्रिवेदी एज यू ऑल नो आई एम, एंड मेनी ऑफ यू आउट देयर आर. तो बनता था कि ये गाना पूरा सुने. इस फिल्म के बारे में क्या ही बता सकती हूँ, सबसे पहले तो ये बता सकती हूँ कि दिस इज गपशप गली विथ मी टू. इन केस यू Didn't know me well, अब हमारा परिचय हो चुका है, जिसका मतलब क्लियर है कि आप फोन उठा सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं. और जी हाँ, आवाज के दुनिया के दोस्त जो हैं, हम ये दोस्ती को और गहरा कर सकते हैं विद द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स और योर इनपुट्स, फीडबैक्स, एवरी थिंग इज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. वंस अगेन 972-235-5555. इतना इंस्पायरिंग सा गाना था ये, और ये फिल्म बहुत ही इंस्पायरिंग थी. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट, इट इज़ डायरेक्टेड बाय आर बल्की. और बाल्की की फिल्म्स में ना ऐसे वो जो एक बात होती है ना, कि एक क्लियर वो एक हाई इम्पैक्ट कॉन्सेप्ट वो जो एस्टैब्लिश करते हैं, एंड हिज स्टोरीज आर वेरी टाइट, एंड यू विल नॉट हैव अ डल मोमेंट व्हेन यू आर वॉचिंग ए आर बाल्की फिल्म. तो ये फिल्म भी कुछ ऐसी ही थी. संयमी खेर वॉज द यू नो द लीड एक्ट्रेस इन दिस वन, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर का वो किरदार निभा रही थी, एंड शी हरसेल्फ इज बाय द वे अ बिग क्रिकेट एंथुजियास्ट, एंड बहुत फिट हैं क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहती हैं ये. और ये एक वो रिगरस ट्रेनिंग जो उन्होंने इस फिल्म के लिए दी थी, इट वाज विथ फॉर्मर इंडियन स्पिनर मुरली कार्तिक, और इसके लिए उन्होंने तैयारी की थी, गजब तैयारी थी, और फिल्म भी काफ़ी गजब थी. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट, यू माइट वांट टू वॉच इवन फॉर योर चिल्ड्रन, इट्स सच अ वंडरफुल वॉच. और ये सच्ची कहानी पे बेस्ड तो नहीं थी, बट लूजली यू कैन से इंस्पायर्ड बाय दिस इनक्रेडिबल रियल लाइफ यू नो हंगेरियन ओलंपिक पिस्टल शूटर, जिन्होंने दो गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते थे, और उनको राइट हैंड में उनके मेजर इंजरी थी उसके बावजूद भी. एंड ये फिल्म भी कुछ ऐसी है जहाँ पर यू नो संयमी खेर इज़ प्लेइंग दिस क्रिकेट प्लेयर, और उनका हाथ कट जाता है इन एन एक्सीडेंट, एंड दैट्स वेयर अभिषेक बच्चन कम्स इन टू प्ले यू नो लिटरली द पिक्चर, एंड ही री इन्वेंट्स हर एज अ बोलर विथ एन इनोवेटिव टेक्निक कॉल्ड घूमर, और यही है फिल्म का नाम. मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों कहा मुझे भी नहीं पता, शायद फिल्म कहीं तो इम्पैक्ट कर गई है इसीलिए दिल से आई ये बात. और बाकी आर बल्की की बात, एक और फिल्म का गाना सुन लेते हैं.

टेक्निक कॉल्ड घूमर, और यही है फिल्म का नाम। मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों कहा मुझे भी नहीं पता, शायद फिल्म कहीं तो इम्पैक्ट कर गई है इसीलिए दिल से आई ये बात। और बाकी आर बल्कि की बात, एक और फिल्म का गाना सुन लेते हैं यार उनकी।

Of your health being checked, well, that is a place you must go. यानी कि जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका एनुअल फिजिकल आपको करवाना हो, विच इज अ एनुअल थिंग एंड यू वांट एवरीथिंग टू बी चेक्ड वेल, उसके अलावा एंजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मोर दैट यू कैन गेट एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. स्केड्यूल कीजिए आज ही उनके साथ अपना अपॉइंटमेंट, बात कीजिए उनके साथ एंड फाइंड आउट इफ यू फील दैट दे आर राइट फॉर यू. 214-666-6259 इज दैट नंबर. एंड डू रिमेंबर, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू गपशप गली विथ मी टू. यहाँ पे मेरी बातें जाने वाली हैं उस गली में जहाँ पर हमारे सिबलिंग्स के साथ जो जुड़ता है एक ऐसा नाता कि जहाँ पे वो हमारे हर प्रॉब्लम के सल्यूशन निकाल के लाते हैं, और अगर सल्यूशन ना भी हो तो अपने वक्त देते हैं अपना कि हमें तसल्ली से सुने. एंड दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव. और हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने कितने आराम से घंटों तक हमारे जो जितना भी कुछ वेंट आउट कई बार करना होता है वो सुनते हैं बिना कभी कभी सलाह दिए, ताकि जस्ट वेंट आउट कर सकें. और कभी कभी जब सलाह की ज़रूरत पड़ी है वो भी उन्होंने इत्मीनान से दिया. कुल मिला के उनसे बात करने के बाद हमेशा एक तसल्ली फील हुई है, हमेशा यू हैव फेल्ट अ लिटल बेटर, राइट? तो बस ऐसे भाई बहनों के कुछ किस्से सुनना चाहूंगी. चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट एंड फनेशिया आर ब्रिंगिंग दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेशन. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट. तो अपनी कहानियां तैयार रखें यार, एंड वील टेक वन ऑफ यू ऑन एयर टू गेट यू स्ट्रेट इनटू द कॉन्टेस्ट एंड यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस.

जी हाँ, सारी प्रॉब्लम्स कम होती हैं जब आपके साथ सही लोग जुड़ते हैं या हम जाके कहीं सही लोगों से जुड़ते हैं। तो जी हाँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ दैट वन प्लेस जहाँ पर आपको पूरी की पूरी तसल्ली से आपको जो सर्विस चाहिए इन

और आपके देश जो ये यानी कि आपके लिए जो ये सेलिब्रेशन है रक्षाबंधन का, ये बहुत स्पेशल है, हम भी जानते हैं, और हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है टू लिसन टू योर स्टोरीज. और इसीलिए फन एशिया रेडियो और साथ में चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट, वी हैव प्लान समथिंग अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर फ्यू डेज नाउ. और आज इस वक्त वही करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप 1 मिनट की कोई कहानी अपने भाई या बहन की अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो यू कैन व्हाट्सएप एट 214-837-7147 और यू कैन गिव मी अ कॉल राइट नाउ. और वो 1 मिनट में जो आप कहना चाहते हैं अपने सिबलिंग के बारे में ज़रूर कहें. Anything that you would like to share with us, and you could win exciting daily prizes, including dining experiences, entertainment, resort stays, और इसके अलावा ग्रैंड प्राइज तो है ही, जो आप शायद जानते हो. अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं भाई कि अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट दैट यू कैन विन फॉर योरसेल्फ. ये कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए ओपन है, सो कॉल इन राइट नाउ एट 972-235-5555. और आपका आपकी आपकी कहानी के साथ आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है इस कॉन्टेस्ट में, तो ज़रूर हिस्सा लें. कॉन्टेस्ट डिटेल्स के बारे में कुछ जानना हो तो फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेज पे ज़रूर जाएं एंड फाइंड आउट. आई कैन टेल यू दिस, यू हैव टू बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. सबसे पहली बात, कुछ ये भी ध्यान रहे कि भाई चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट जा रहे हैं और अपने भाई या बहन के साथ अगर जाते हैं तो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली. दैट इज़ वन थिंग वी आर गोइंग टू आस्क यू टू डू. बट येस, मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एंड stay blessed forever, ladies and gentlemen. That's what I can tell you. क्योंकि ज़िंदगी में ना हमें हमारी जो siblings हैं वो एक हमारे ना सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. एक ही छत के नीचे एक साथ बड़े हुए हैं हम. We have shared everything from the TV remote to the dispute that last slice of cake brings for us, right? तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो चाहे वो एम्बेरसिंग हमारे कुछ कुछ कहानी हो या हमारा वर्स्ट हेयर कट हो, वो सब विटनेस किया है उन्होंने. हमारे इन्स एंड आउट्स अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो आपका फेवरेट कंफर्ट फूड हो या आपका बहुत बड़ा कोई सीक्रेट. इनके पास से कुछ भी नहीं छुपा है. तो इनकी कहानी बनती है कि आप शेयर करें. आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव मी अ कॉल and share your story right now, ladies and gentlemen. Anything nice, anything you know, fun that you would like to share with all of us right here. 1 minute ka waqt milega aapko to use it to share your story. मेरी भी बहुत सारी कहानियां हैं और उन कहानियों में ये कहानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से है कि माई सिस्टर, शी हैज़ बीन द बिगेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट दैट आई कैन एवर ever ask for. जब भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होती हूँ ना, I definitely give her a call और कुछ बात करके वो इस तरह से तसल्ली देती है, इस तरह से वो हिम्मत बढ़ाती है, या कभी कभी जब सुन लेती है कि उसके बाद मुझे ना सब all is well with the world लगता है, seriously. So yes, that's what she is for me, my sister, my elder sister, and that bond that we have shared over the years, ये बस गहरा ही होता जाता है. बचपन में एक वो होता ना कि वो बड़ी बहन और छोटी बहन वाला एक रिश्ता, और एक उम्र के बाद ना they are more like your friends, and that is what I'm enjoying right now. तो ज़रूर शेयर कीजिए यार. 972-235-5555 number in the story studio. We would like to know your story.

And it is time for our gupshup, ladies and gentlemen. 972-235-5555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. मेरा और आपका साथ आज 1:30 बजे तक रहेगा. तो ऐसे हमारे बहुत सारे गपशप के जो टॉपिक्स हैं वो उठेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप यार कॉल करके पार्टिसिपेट ज़रूर करो. अपने व्यू पॉइंट्स, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस शो पे अगर नहीं देते ना, तो वो काहे का गपशप हुआ, राइट? अगर एक तरफा ही कॉन्वर्सेशन रहना है तो वो काहे का कॉन्वर्सेशन हुआ, है ना? You are listening to Furniture Radio 104.9 FM और गपशप गली में ना DIY जो हमने शायद यहीं आके सुना, उसके बारे में कुछ पूछने वाली हूँ आपको. तो अपना फोन रेडी रखें, क्योंकि मैं आपके लिए गिव अवे भी साथ में लेकर आने वाली हूँ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू, लेडीज एंड जेंटलमैन. एक गाना जो कि पलाश सेन ने गाया, 7 साल पहले ये आया था, और जल्द ही यानी कि आज 18 है ना, तो फिर रिलीज हो चुका होगा यार ये गाना. आई थिंक 18 अगस्त को ही उनका एक नया गाना आने वाला था. सो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट फॉर यू.

0: और मैं जो ये कहने वाली हूँ ये है रिलेटेड DIY, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मोर लेस हमने US आके जाना कि अपने हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपने हाथ से सारा काम करो, राइट फ्रॉम घर में साफ सफाई से लेकर, मतलब वो प्लम्बर का काम हो या इलेक्ट्रिशियन का काम हो या कुछ असेंबल करने का काम हो, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ आके अच्छी तरह से सीखी, विच वॉज मोर ऑफ अ शॉक एंड देन अ बिट ऑफ एन एक्साइटमेंट एंड देन दैट ग्रू इन टू पैशन फॉर सो मैनी पीपल. मेरे एक फ्रेंड हैं जिनके लिए उनका फेवरेट डेस्टिनेशन टू स्पेंड टाइम इज होम डिपो, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि उनको ऐसे काम करने में बहुत मजा आता है. DIY प्रोजेक्ट्स वो उनके घर के जो होते हैं वो सारा खुद लेके बैठते हैं. वेयर एज आई, मी एंड माई हस्बैंड, वी आर डेफिनेटली नॉट दैट कैटेगोरी एट ऑल. तो फिर भी उसमें भी जो हमने DIY खुद किया है उसके बारे में मैं बताऊंगी. मैं जानना चाहूंगी आपका डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट आपका क्या था इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर और एनीथिंग दैट यू हैव असेंबल्ड, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई'ड लाइक टू नो. पता तो करें कि क्या असेंबल किया था, याद भी है आपको पहली चीज आपने यहां आके US में आके क्या असेंबल की थी, जाने जरा आप लोगों से. 972-235-5555, दैट्स द नंबर इन द स्टूडियो लेडीज एंड जेंटलमैन. फन पिज्जा किचन की तरफ से आपके लिए है एक $10 का गिफ्ट कार्ड, वो आपका बन सकता है अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर आप हमें बताएं व्हाट वाज योर फर्स्ट एवर डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट हियर इन द US. अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आजमाया है अपना स्किल, तो भाई बताएं क्या प्रॉब्लम्स रही हैं. और ऐसे हमेशा रहा है ना, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट जब हम पहली बार लेके बैठे हैं उसको, वो इतना ओवरवेलमिंग था. ऑल्दो द प्रोसीजर हियर इज सो नाइसली रिटन ऑन द पेपर, वो नंबर वन से लेकर नंबर गजिलियन नंबर पे जो जाता है, वो एक एक स्टेप इतने अच्छे तरीके से बताया गया होता है कि कन्फ्यूजन की कोई चांस नहीं है. लेकिन कन्फ्यूजन तब होती है, प्रॉब्लम तब होता है जब वो ढेरों स्क्रूज में से आप वो दो स्क्रू घुमा देते हो एंड देन यू आर स्टक फॉर एवर. सो यस, टेल मी योर डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट दैट यू हैव एवर डन एंड दैट हैज टू बी शॉर्ट स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ अस. जरा जाने हम, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Yes, so my first experience was assembling a furniture, piece okay. of furniture.
0: And what was that?
1: It was a couch.
0: Oh, okay. And how easy or difficult was it for you to assemble it yourself?
1: Well, actually, the instructions are pretty easy
0: yes.
1: to read and understand, and with all the pictures. So, but the tools, you have to have right tools sometimes.
0: Yes.
1: Sometimes they give you the tools, but they're not. And if you're assembling with more than one person, then you need more than one tool, right?
0: So yes.
1: That's kind of a little bit of a challenge, but a very learning experience, and it was fun initially, especially.
0: It was fun. Yeah. And tell me, what did you feel when you sat on that couch that you made yourself? Isn't it just amazing, out of the world experience?
1: Yes, yes, a wonderful learning experience, and a lot of things you learn in this country when you come new, and you don't expect to do these things, handy jobs that you actually learn to do
0: here. So true. And I feel so proud of myself of doing few things that we have done. They are just few, but yes, we are very proud of assembling those. Well, thank you so much for your call. And what's your name?
1: It is Monica.
0: Monica, you definitely have one for yourself from Fun Pizza Kitchen. Please hold the line for me and I'll take all your information off air, all right?
1: Sure.
0: Thank you. And I am going to take one more call, if I may. And if you could quickly tell me, what did you assemble? Do it yourself project, aapka pehla kya tha US mein aane ke baad?
2: Hello.
0: Hi, what's your name?
2: Hi, my name is Milind.
0: Milind, tell me, what was your first DIY project?
2: Yeah, my first project was way back in 2002. Main naya aaya tha yahan pe, Bharat se.
0: हाँ जी.
2: और भारत में ऐसा होता है कि वो आपके अपने रुई के गद्दे होते हैं, कॉटन.
0: हाँ,
2: के
0: वेरी
2: सख्त.
0: हाँ.
2: तो यहाँ पे तो जो भी मैंने बहुत शॉपिंग की कोशिश की, हमने अच्छा हार्ड गद्दा मिले, कोई मिल नहीं रहा था.
0: हाँ.
2: सब सॉफ्ट थे, आदत नहीं थी बैक. देन आई डिसाइडेड टू मेक अ बेड माई सेल्फ. तो मैंने फिर आई मेड अ ड्रॉइंग, आई वेंट टू होम डिपो, वो पार्टिकल बोर्ड कट करके लिटरली यूजिंग स्क्रूज एंड नेल्स मैंने फ्रेम क्रिएट किया उसका, पूरा हार्ड बेड.
0: एंड
2: इट वॉज देन टू हार्ड, यहाँ पे गद्दा नहीं था. देन आई यूज जो अपने कारपेट के नीचे जो पैडिंग होता है आई यूज द लेयर्स ऑफ दोज टू मेक इट अ बिट सॉफ्टर टू सॉफ्ट
0: नाइस
2: हार्ड बेड ऑफ backs, you know, and it was a little bit heavy, but it was a successful project, you know. I used it for almost like 7-8 years, and it was a successful DIY project, first project in the US.
0: Kya baat hai, you should feel so proud. Do you have pictures of it now that you don't have the bed anymore? I'm thinking.
2: No, I don't have the pictures, but it was, you know, quite an excitement, you know, making it yourself.
0: And I have to say that you probably have the skill of doing it. Because you bilkul straight and deep gaye ho, bilkul deep end pe aapne chhalang mari hai DIY project ke liye. So awesome, yeah. I think you still continue doing it. Aapka mujhe skill lag raha hai ki alag level pe hai.
2: Yes. Of course, I play with my cars. You know, oil change jaise choti choti cheeze to karta hi hu, but I fix my cars. Air conditioning fix it. Khud hi dekhta hu ghar mein sab kuch hota hai. So and it comes in handy. These skills comes in.
0: It comes in handy.
2: You can develop these basically by looking at YouTube videos, or you know, there's so much information out there.
0: I know, and I'll tell you about one information that I got on YouTube, and I felt blessed about that because we were stuck with this DIY project. So thank you, Milind, for sharing your story. Really, really keep working on your DIY projects and come back and tell us more about anything that you have done new or out of the box, anything that you have done. All right. Thank you so much.
2: Absolutely. Thank you.
0: And ladies and gentlemen, DIY projects. ये एक आर्ट है जो हमने यहाँ आके सीखा और फिर देखे लोग कैसे एक्सेल कर रहे हैं उसमें. Listen, my last caller, I've lost you and you had one for yourself from Fun Pizza Kitchen, that $10 gift card. So if I don't get your call in next 5 minutes, I'm going to give that away to Milind. So please give me a call very, very quickly, Monica. And I'd like to give that Fun Pizza Kitchen that gift card that you have won for yourself. Or else, Milind, you are in the queue.

अच्छा, आई वॉज टेलिंग यू ऑल अबाउट पलाश सेन्स सॉन्ग दैट वॉज टू रिलीज टूडे. मेरी गलती है, कल रिलीज होने वाला है और गाने का टाइटल है कोई ना. एंड विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स अ बिट ऑफ अ रिबेल सॉन्ग दैट इट सीम्स टू बी, और मजा आएगा पलाश सेन को फिर सुनने में, है ना. यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. एंड मोस्ट लिटरली वी ट्राई टू डू दैट. द रीजन बींग, कुछ ऐसे हम टॉपिक्स लाने की कोशिश करते हैं जिसमें आप और हम गपशप मार सकें. After all, this is Gapshap Gali with me too. और हम गपशप जो मार रहे थे आज, यानी कि हम जो बातें कर रहे थे आज, it was to do with the first DIY project that you have ever done here in the US. क्योंकि इसकी तो हमें आदत ही नहीं थी, और जब आए यहाँ पे तो जब देखा तो जब करना पड़ा तो मतलब कई लोगों की तो मतलब अच्छी अच्छी बैंड बजी है उस चीज को लेकर, और कई लोगों ने उसको अपने पैशन के तरह इस्तेमाल किया. एंड वन ऑफ देम इज मिलिंद. एंड मिलिंद, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, यू हैव टू गिव मी अ कॉल. फन पिज्जा किचन की तरफ से आपके लिए $10 का गिफ्ट कार्ड. आई वॉज वेटिंग फॉर मोनिकाज कॉल, क्योंकि हम मुझे उनका कॉल फिर वापस मिला नहीं. तो मिलिंद, यू डेफिनेटली डिजर्व इट, क्योंकि आप उनमें से हो जिन्होंने इसको एक अपने पैशन के तरह आगे बढ़ाया है. एंड इट्स फन टू लिसन टू द पीपल हु रियली आर पैशनेट अबाउट डूइंग इट देमसेल्व्स. एंड ऐसे में मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूँ कि मैंने बताया ना कि हम ज़्यादा करते नहीं हैं, मतलब डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स में हम बिल्कुल बिल्कुल डब्बा गोल हैं. उसमें से जो किया है उसके लिए बहुत हम अपने आप को क्रेडिट देते हैं और बहुत खुश होते हैं. इट फील्स गुड, बट वी आर नॉट वन ऑफ दोज कि यार टाइम निकाल के कुछ ऐसा करना चाहेंगे हम, है ना. लेकिन एक हम लेकर आए थे अपने बैकयार्ड के लिए, लेकर आए थे एक पैटियो हीटर लेकर आए थे हम, और वो ऐसा देख के लगा था कि क्या ही इसमें असेंबली की ज़रूरत होगी, मतलब ये एक पोल, उस पर ये और ये नीचे बेस इसका, एंड इट शुड बी फाइन. बट when we started assembling it, the steps weren't that clear. तो हम थोड़े से ना फंस से गए थे. एंड वी वर थिंकिंग कि यार आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है, और उसमें हम फंस गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये स्क्रू फलाना, ये चीज़ कहाँ जाएगी, कैसे लगेगा, क्या होगा, तो हम समझ नहीं पा रहे थे. एंड गेस व्हाट, यूट्यूब केम इन वेरी हैंडी. हमने जस्ट बाय द वे ऐसे ही मैंने टाइप किया कि भाई ये जो फलाना मॉडल है इस कंपनी का, इसका कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि नहीं. एंड वाला देयर वॉज दिस वन वीडियो जो किसी ने बनाए, एंड थैंक्स टू दोज पीपल हु मेक इट. सो मिलिंद, आई विल टेल यू, यू शुड डू दैट, यू नो, क्योंकि यू आर गुड एट इट, यू शुड डू दैट. तो वो एक वीडियो हमें मिल गई और हमारा फिर असेंबल करना वॉज सुपर ईजी पीजी आफ्टर दैट. एंड दैट्स वॉट आई लाइक टू से वंस अगैन मिलिंद, क्योंकि इतना याद कर रही हूँ, ज़रूर कॉल करो आप ताकि मैं आपको फन पिज्जा किचन का ये गिव अवे दे सकूं. वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर कमिंग ऑन बोर्ड टू टॉक अबाउट योर स्टोरीज.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hire moti main na chahu.
7: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
17: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
18: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
19: Tracks that put you on the right track.

ladies and gentlemen, this is Gupshup Gali with me too. और इस segment में मैं आपके साथ ताज़ा and new that is around us happening वो सारी चीज़ें share करती हूँ जो मेरे रास्ते आया है, मुझे पता चला है, मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ share करती हूँ in this segment which I also call the fresh drop. तो क्या है नया ताज़ा आज के segment के लिए, let's listen to it in a bit together. क्योंकि मैं अभी ना एक अपने कॉलर को यू नो होल्ड पे रख के आई हूँ. वो अपने DIY प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि US आने के बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं अपने आप जिसके लिए हमें बड़ा प्राउड फील होता है. कोई लोग बस वहीं तक रुक गए और कुछ लोग उन्होंने अपना ये अपना एक पैशन डेवलप किया है DIY प्रोजेक्ट्स के साथ. तो बस एक ऐसे ही DIY प्रोजेक्ट के बारे में मुझे मेरी एक लिसनर बता रही है, तो मैं वो सुन के वापस आती हूँ आप लोगों के पास. बाकी द एनर्जी दैट प्रीतम ब्रिंग्स इन हिज सॉन्ग्स यार कमेंडेबल. वन ऑफ माई वेरी फेवरेट एल्बम्स इज लाइफ इन अ मेट्रो बाय प्रीतम, और उसी का जो सीक्वल आया फिल्म का एंड दैट्स मेट्रो इन दिनों, उसका ये गाना भी यार बड़ा एनर्जेटिक एक पावर लेकर आता है. एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाई नॉट टॉक अबाउट दिस एनर्जी, तारा कमर्शियल एनर्जी. और ये आप लोगों के लिए जितने भी बिजनेस ओनर्स अभी मुझे सुन रहे हैं वो और थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपके लिए जवाब है तारा कमर्शियल एनर्जी. यू कैन ट्रस्ट दम 100% ऑन यू सेविंग योर एनर्जी एंड यू नो सेविंग मनी ऑन योर एनर्जी बिल्स. ये टेक्सस बिजनेस जो है ये 2002 से है. दे हैव बीन ऑफरिंग कम्पेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स टू एवरीबॉडी. इफ यू आर इंटरेस्टेड जरूर जाए taraenergy.com. मैं तो कहती हूँ सीधे कॉल ही कर लें, 8444282808 इज द नंबर टू कॉल. स्टूडियो का नंबर 9722355555.

मन ये हमारा जो है इस वक्त खाने पीने की बातें ऑटोमेटिकली चली जाती हैं, क्योंकि ये यार लंच टाइम है एंड दिस लंच टाइम स्पेशल शो इज गपशप गली विथ मी टू। अभी थोड़ी देर पहले जिन लिसनर के साथ बात कर रही थी, उन्होंने कहा DIY प्रोजेक्ट में एक चीज जो हम आंख बंद करके कर सकते हैं वो है खाना खाना। जी हाँ, उसके लिए हमें कोई स्टेप वाइज गाइडेंस नहीं चाहिए होती, दैट वी कैन डू इट आर सेल्व ब्यूटिफुली एंड आई टोटली अग्री विथ यू शिरोमा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर DIY प्रोजेक्ट विथ योर फ्रंट डोर लॉक। बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी थी आपकी, मजा आया मुझे सुन के। एंड यस, अभी जो मैं बात करने वाली हूँ खाने के बारे में बात करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज अ सेगमेंट ताज़ा एंड न्यू द फ्रेश ड्रॉप। इसमें चिक फिले लवर्स जो हैं वो अपने कान बिल्कुल तेज करके सुने या वॉल्यूम तेज कर दें रेडियो का, और ये सुने कि ये ला रहे हैं आपके लिए एन एब्सोल्यूट क्लासिक टू देयर मेन्यू। नाउ मार्क योर कैलेंडर्स फॉर August 24th, क्योंकि उनका ब्रांड न्यू चिकन एंड वॉफल सैंडविच ऑफिशियली नेशन वाइड लॉन्च होने वाला है। यू कैन एंजॉय इट ऑल डे ब्रेकफास्ट आवर्स में आप ये

एंजॉय कर सकते हो मॉर्निंग साइज जो है उस पर 10:30 तक सुबह एंजॉय कर सकते हो, और उसके बाद दैट लार्जर आंट्री वर्जन दैट यू कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे. सो इमेजिन दिस यू नो जूसी चिकन फिले. जितने भी वेजिटेरियंस सुन रहे हैं कान बंद कर लें प्लीज़ अपना, ये सारे चिकन लवर्स के लिए एंड चिक फिले लवर्स के लिए कि जी हाँ, वो जो जूसी चिकन फिले होगा, चाहे ओरिजिनल लीजिए स्पाइसी या ग्रिल लीजिए, टॉप्ड विथ यू नो एप्पल वुड स्मोक बेकन और स्वीट हनी बटर स्प्रेड, सब कुछ पैक्ड इनसाइड टू डिलिशियस मेपल फ्लेवर्ड वॉफल्स विथ अ साइड ऑफ सिरप. कैसा लगा आपको सुन के ये मुझे बताएं. बेकन ना नहीं चाहिए, ना कर दें यार, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. लेकिन येस, दिस इज समथिंग विच वॉज ड्रॉप बिटवीन December 1st लास्ट ईयर टू January 24, 2026. देयर वर फ्यू सिलेक्टेड प्लेसेस जहां पर ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड आई थिंक इट वॉज बाल्टीमोर एंड सैन एंटोनियो जिन्हें एक टेस्ट मिला इस चीज़ का. एंड नॉट ओनली दैट, देर इज गोइंग टू बी स्मॉल्स मिल्क शेक एंड मोर्स फ्रॉस्टेड कॉफी, जस्ट FYI. यू नो ये जो मैंने बताया ना कि December 1st से लेकर January 24 दिस ईयर जो इन्होंने ये टेस्ट किया था, तो फैंस जो थे वो डिमांड करने लगे कि यार नेशन वाइड बनाओ इस चीज़ को. ये क्या कि थोड़े दिन के लिए आपने ये टेस्ट पे डाला और इट्स गॉन फॉर एवर. तो बस सोशल मीडिया की बात सुन ली गई है और बस अब 24, 2026 में आप ये आपके लिए अवेलेबल होने वाला है नेशन वाइड. आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विथ ऑल ऑफ यू यार. दिस इज गपशप गली विथ

एक और एआर रहमान का गाना तो बनता है, बिकॉज ताज़ा एंड न्यू सेगमेंट द फ्रेश न्यू ड्रॉप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इट इज अबाउट एआर रहमान. इंडियन सिनेमा इज मेकिंग मैसिव वेव्स ग्लोबली, और इस बार हम ट्रेडिशनल स्क्रीन से निकलकर सीधे वर्चुअल रियलिटी में जा रहे हैं. द माइस्ट्रो हिमसेल्फ, यू नो, एआर रहमान, ही इज पुशिंग बाउंड्रीज येट अगेन. उनकी प्रोड्यूस की हुई ये वीआर मूवी जिसका नाम है अनोखिय द ओरिजिन इज ऑफिशियली मेकिंग इट्स वर्ल्ड प्रीमियर एट द प्रेस्टिजियस वेनिस फिल्म फेस्टिवल. नाउ चेन्नई बेस्ड फिल्म मेकर जिनका नाम है आनंद किशोर, इन्होंने ये 27 मिनट इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है ये डायरेक्ट किया है. ये एक विजुअली काफी एक स्टनिंग मिथिकल वर्ल्ड में सेट है, इंस्पायर्ड बाय आर रिच इंडियन एपिक्स, और कहानी फोकस करती है एक कोटसान और एक रिक्लूसिव सेज पर. एंड द प्राउडेस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज वेनिस इमर्सिव कॉम्पिटिशन के टॉप प्राइज के लिए कम्पीट करने वाली ये पहली फुल्ली इंडियन मेड वीआर फिल्म है. Once again, the name is Anokhya, The Origin, produced by the one and only A.R. Rahman.

0: गया, कहाँ रखा था। सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
6: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
7: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
13: Tracks that put you on the right track.

मैंने भी सुना है कि भाई आपको अगर स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज चाहिए ना, तो माई टाइम एक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, इनके साथ और इनकी टीम के साथ आप जरूर कनेक्ट करें. दे हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन दिस रिगार्ड थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. तो देरी किस बात की, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ की कुछ प्लानिंग करनी हो या रिटायरमेंट की या फिर ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम एक्विटी आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकता है. एक पर्सनलाइज सोल्यूशन आपके लिए लेकर आ सकता है डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. mytimeequity.com इज द वेबसाइट एंड द नंबर टू कॉल इज 4697021272. कुछ ताजा खबरों के बारे में बात कर रहे हैं इन द सेगमेंट ताजा एंड न्यू, द फ्रेश ड्रॉप. Right after this song, ek medical drama, one of the biggest medical dramas that we have ever watched. Usi ke baare mein kuch information share karungi aap logon ke saath in Gapshup Gali with me too, covering for Snigdha here.

लिसन, जिंदगी जो है आराम से चलती रहे, इसी का नाम होता है कि सुकून. जो कि ये जो शब्द है, उस सुकून में ही कितना सुकून है कि अगर जिंदगी आराम से चलती रहे तो सुकून आपके साथ है. लेकिन इस सुकून में तब प्रॉब्लम आती है जब किसी एक्सीडेंट में आप पड़ते हो और आपको एक कॉम्पनसेशन चाहिए कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ हो या स्लिप एंड फॉल केस कुछ वर्क प्लेस पर रहा हो, एनी थिंग जहाँ पर कि आपको अब अगली पार्टी से ना कॉम्पनसेशन चाहिए, वहां पे अटर्नी ओमर ख्वाजा कैन रियली कम इन हैंडी विथ योर लीगल बैटल. क्योंकि किससे बड़ी है यार कि अपने आप को संभालें या ये लीगल बैटल संभालें, बिकॉज ये आसान नहीं होता है संभालना. ऐसे में दे कैन रियली रियली हेल्प यू. सो गेट इन टच विद देम. 4693005046 इज दैट नंबर टू रीच अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम. एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट, क्योंकि ये आपका बैटल पूरी तरह से आपके लिए खेलने वाले हैं. और इनका एक सिंपल मंत्र है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र दैट एनी सर्विस प्रोवाइडर कैन गिव यू, और वो ये है कि आपको तब तक पे नहीं करना जब तक आप केस जीत नहीं जाते हो. सो यस, दिस इज अटर्नी ओमर डॉट कॉम दैट वी वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड फाइंड आउट मोर. फ्री कंसल्टेशन के लिए फिर एक बार नंबर है 4693005046. और उन्हीं की तरफ से हम आपके लिए कुछ ट्रैफिक अपडेट्स लेकर आते हैं. और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि I-635 पर एट प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश टर्न पाइक एंड 161 वेस्ट बाउंड कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है. कुछ मेजर नहीं है, जस्ट माइनर something that you need to take care of. Right shoulder और right lane जो है वो बंद है, तो थोड़ा बहुत traffic slow हो सकता है वहाँ पर, but everything seems to be okay. If you have enough time in your hand, तो इस slow traffic के लिए थोड़ा सा तैयार रहें, बाकी all is well with the world. Thank you once again for tuning into Funasia Radio 104.9 FM or Grey's Anatomy, that medical drama that I'm going to talk about next.

कोई गाना जब हम पसंद करते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट मेक्स इट लवेबल और लाइकेबल और मोस्ट रीजनेबल वे टू असेस कि पॉपुलर क्यों हुआ होगा वो गाना? मेरे ख्याल से कोई एक एलिमेंट ऐसे हम अलग से नहीं ढूंढ सकते. इट हैज टू बी दैट पैकेज डील ऑफ द राइट लिरिक्स, म्यूजिक, द सिंगर एंड द वाइब ऑफ द सॉन्ग. वो आपके अगर मूड में फिट हो रहा हो ना तो ही बात बनती है. क्योंकि कभी आप देखोगे कि कोई फिल्म जो आपने एक किसी भी एक पर्टिकुलर मूड में देखा हो वो नहीं जमा, लेकिन वही फिल्म आप काफ़ी दिनों के बाद एक अलग मूड में देखते हो, वो बहुत जम गया आपको. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल द स्टोरीज. लेकिन गानों के लिए मैं कह सकती हूँ कि गाना आपको एक बार सुनते ही ना या तो बहुत पसंद आ जाएगा या इट्स स्लोली इट्स सॉर्ट ऑफ ग्रोज ऑन यू और यू कम्प्लीटली रिजेक्ट इट. देर आर सो मेनी सॉन्ग्स फॉर मी विच आई नो आई विल नेवर लाइक. भले मैं पार्टी मूड में हूँ, थोड़े रिलैक्सिंग मूड में हूँ या थोड़े ऐसे सॉफ्ट मेलोडी सुनने के मूड में हूँ, वो गाना मैंने अगर रिजेक्ट कर दिया पहली बार तो इसका मतलब मैं कभी नहीं दोबारा उसको सुनने वाली. एंड देर आर सॉन्ग्स कि कितने भी साल बीत जाए वो कभी भी पुराने नहीं होते हमारे दिमाग में. एंड ऐसे ही कुछ सोनू निगम के गाने हैं, वो मैं सारे तो प्ले करना, यू नो हाउ मेनी सॉन्ग्स ही हैज संग. आई मीन आई डोंट नो द नंबर बट आई नो दैट देर इज़ अ ह्यूज ह्यूज यू नो डेटा बेस ऑफ सॉन्ग्स इफ़ यू हैव टू लुक इन टू सोनू निगम्स. एक गाना जो उनके करियर के लगभग शुरुआत में था वो गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि भाई सोनू निगम इज़ गोइंग टू कम बैक टू डैलस. ये है सोनू निगम रेवोल्यूशन, सैटरडे सेप्टेम्बर 26th at 8:30 PM एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. और आपके वो सारे फेवरेट गाने गाने वाले हैं विथ दैट आइकॉनिक वॉइस दैट ही हैज़. सीरियसली आपने हाल ही में देखा था कि उनकी सर्जरी हुई थी एंड उसमें भी वो सर्जरी टेबल पर भी वो गाना गा रहे थे और वो वायरल हुआ है रील. तो ये वो इंसान है जिनके बिल्कुल कण कण में म्यूजिक है. सो यस, लेट्स गेट टू हिज म्यूजिक. एंड देखिए ना, ग्रेस एनाटॉमी की बात करना रह जा रहा है, लेकिन वी विल गेट टू दैट एज वेल, आई प्रोमिस यू. मीडिया पार्टनर फॉर दिस सोनू निगम रेवोल्यूशन कॉन्सर्ट विच इज हैपनिंग ऑन सेप्टेम्बर 26, गेस वॉट, फनीशा नेटवर्क ऑफकोर्स. This is Gapshup Gali with me too.

रिशिता, योर चॉइस ऑफ सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट. लेकिन उसके पहले ना चॉइस जो रही है मेडिकल ड्रामा की अगर बात की जाए तो ग्रेस एनाटॉमी हैज बीन अ बिग हिट. एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ दिस सीरीज तो आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. ग्रेस एनाटॉमी इज ऑफिशियली हेडिंग टू काउबॉय कंट्री, यानी कि यहाँ टेक्सस में ABC ने ग्रीन लाइट कर दिया है कि एक ब्रांड न्यू स्पिन ऑफ, और इस बार सियाटल या LA नहीं बल्कि रगेड टेरेन्स ऑफ वेस्ट टेक्सस इज द न्यू सेटिंग. और स्ट्रेट टू सीरीज ऑर्डर के साथ, यानी कि कोई पायलट या कोई ऐसा नहीं, सीधे सीधे सारी वो सीरीज बनने वाली कहानी इतनी पसंद आई है मेकर्स को और प्रोड्यूसर्स को कि ये जो है आने वाला है शो 2026-2027 समवेयर इन बिटवीन. एंड दिस सीजन इज गोइंग टू प्रीमियर ड्यूरिंग दैट टाइम. द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड ए रूरल मेडिकल सेंटर दैट इज ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट चांस फॉर केयर बिफोर माइल्स ऑफ नोवेयर. ये फ्रेंचाइज की जो हिस्ट्री है ये उससे बिल्कुल परे होकर कुछ कर रही है. द शो इज लीविंग द मेजर कोस्टल सिटीज बिहाइंड टू ब्रिंग यू सम एजी स्मॉल टाउन हॉस्पिटल केओस दैट यू आर गोइंग टू सी. एंड दिस इज द न्यूज फॉर ऑल ग्रेस एनाटॉमी फैन. द 23rd सीजन इन मेकिंग. कैन यू इमेजिन 2005 में इसका पहला सीजन आया था एंड इट इज 2026.

0: अच्छा, अगर आपकी आंखें बिल्कुल चमकी ये गाने का म्यूजिक सुन के, तो यकीनन यू आर अ बिग फैन ऑफ दिस सॉन्ग. बिफोर इवन प्लेइंग इट, आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू ऑल नो कि ये गाना आप पूरा सुनने वाले हो. ये नहीं कि मैं बीच में आके बकबक करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है. एक्चुअली छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने वाले हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद ना ये पूरा गाना सुनने वाले हैं. आई एब्सोल्युटली इन्जॉय लिसनिंग टू दिस एंड प्लेइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू. तो ऐसी ना इंसाफी तो हम कर ही नहीं सकते कि आधा अधूरा सा गाना, और वो भी एक लाइन अगर सुनवा पाऊँ तो क्या ही बात होती. ये मतलब तौहीन होती सुनिधि चौहान की और द मेकर्स संदेश शांडिल्य की. तो ये गाना आपके लिए पूरा आने वाला है राइट आफ्टर ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. दिस इज कपशप गली विथ मी टू कवरिंग फॉर स्निग्धा. Little under the weather that she is, we're going to make sure कि वो पूरा rest लेके तरोताजा होके कल जब वापस आए, या जब भी वो वापस आए, तो she is ready to cheer you up with her lovely show. Once again, this is Gupshup Gali with me too. Let's get into a short commercial break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: तारा वो तारा हर तारा.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया.
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया.
12: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
13: वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: वेट, इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगा एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं।
15: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
19: Tracks that put you on the right track.
0: That perfect track coming your way. This is Gapshup Gali with me too, ladies and gentlemen. Wanted to talk with you. कि भाई हाल ही में ना मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, एक रेफरल मिला था और मैं उन डॉक्टर के पास गई थी with very good, you know, every information that I wanted for a doctor, I got for that doctor. And मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल जो है जो जा रही हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं गई और 5 मिनट के अंदर मेरा जो था उन डॉक्टर के साथ टाइम वॉज डन विथ एंड आई वॉज आउट ऑफ द ऑफिस एंड आई डिड नॉट लाइक इट एज मच एज वी वॉन्ट आर थिंग्स टू बी डन वेरी वेरी फास्ट बट नॉट एट द डॉक्टर्स राइट और मैंने क्या किया मैंने अपने डॉक्टर को चेंज कर लिया दैट इज़ वॉट आई डिड यही आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ जुड़ते हो क्योंकि ये आपको तसल्ली से पूरी टाइम देंगे जितना टाइम आपको चाहिए वो पूरा टाइम आपको वो देंगे टू गेट टू नो योर प्रॉब्लम जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड वो सारा कुछ आराम से पूरी तसल्ली के साथ आप पूछ सकते हैं दैट इज़ वॉट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू फॉर यू for your family and for the health of our community please spread the word passion health primary care aur yaad rakhein ki annual physical hi nahi balki anxiety care fibro scan for alcohol related liver concerns vitamin b12 deficiency testing and much more that they all do under one roof at passion health primary care to apna appointment jo hai jald se jald schedule kare inke sath 214-666-6259 is that number passion health primary care your health is their passion this is Gapshup Gali with me too

किसी गाने के चलने या ना चलने की बात कर रहे थे ना, तो एक मेजर एलिमेंट होता है कि अगर कुछ हटके अगर कुछ प्रेजेंट करते हैं कंपोजर्स, तो फिर बात बनती है। और ये मुझे गाना लगता है उसी ब्रैकेट में फिट होता है। कुछ हटके था जब संदेश शांडिल्य ही मेड द सॉन्ग फॉर चमेली। एंड वंस अगेन, अगर कुछ हटके की ही बात हो रही है तो वाई नॉट टॉक अबाउट Page 3 ईटरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे हर डिश में आपको कुछ हटके मिलने वाला है। दैट मंडेन टेस्ट दैट वी हैव गॉटन सो यूज टू हियर, कि किसी भी देसी रेस्टोरेंट में आप अगर जाते हो तो वो खाने का स्वाद वही सिमिलर कुछ इर्द गिर्द का मिलता है आपको। वहाँ से कुछ अलग चलते हैं और इस गली घुसते हैं जहाँ पे Page 3 ईटरी में देर सिजलिंग कबाब्स, देर फ्लेवरफुल चाट, और वो हर बाइट में एक जो आपको फ्यूजन टेस्ट मिलेगा।

सिज़लिंग कबाब्स, देयर फ्लेवरफुल चाट, और वो हर बाइट में एक जो आपको फ्यूजन टेस्ट मिलेगा, बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड का जो एक मॉडर्न एक टेक उन्होंने दिया है अपनी डिशेस में, दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय. अगर आप नहीं गए हैं तो बनता है जाने का, और आप गए हैं तो आप जानते हैं कि वो जगह आप बार बार जाते हो. Page 3 Eatery, ladies and gentlemen, at Hub 121, that it is. You must definitely take your friends along to enjoy. Aur ye aapke liye brunch, lunch, dinner, date night, foodies ke liye, very specially Page 3 Eatery. अब गर्मा गर्म खाने की बात कर दी तो गर्मा गर्म वेदर की भी तो बात करनी चाहिए ना. तो ये जो हमारा जो मौसम जो चल रहा है, ये बस ऐसे ही चलने वाला है टिल द एंड ऑफ द मंथ. दैट इज़ द वेदर फोरकास्ट फॉर ऑल ऑफ यू. हीट एडवाइजरी 12 बजे से जो शुरू हुआ है वो रात के 8 बजे तक आप लोगों के लिए कुछ 108 के करीब जो टेम्परेचर जा सकता है, एंड हीट इंडेक्स के कारण 109 एट प्लेसेस दैट दे माइट फील एज वेल. सो yes, this is here to stay. As I told you, this pattern refuses to break as temperatures for the rest, for the rest of the week. ये जो triple digits हमें देखने को मिल रहे हैं, बस यही continue करने वाला है till the end of the month and the beginning of September as well. यार सुन के मतलब क्या ही कहूँ, ऐसे ही गर्मी लगने लग गई है. स्टूडियो में बैठी हूँ AC के नीचे, लेकिन फिर भी मुझे वो बाहर जाके जो वो फर्नेस में जो बैठना पड़ेगा, अपनी गाड़ी में जो बैठना पड़ेगा, उसके बारे में ही सोच रही हूँ. और वो जो ओवन में घुसने वाली हूँ, उस ओवन में घुसूँ उसके पहले हॉट फ्रॉम द ओवन, लेट्स ब्रिंग यू दिस नेक्स्ट ट्रैक लेडीज एंड जेंटलमैन. एक जो फिल्म आने वाली है September 4th को, इट इज़ कॉल्ड मिर्ज़ापुर द मूवी. जी हाँ, उस सीरीज की ही जो फिल्म बनी है उसी का एक नया गाना है जो मुझे सुनने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि आज ही ये गाना रिलीज हुआ है. सुनिए एक साथ गपचक गली विथ मीठू पे.

How did you find that song? Yeah, मुझे तो बहुत पसंद आया ये गाना, and this is a brand new song for all of you. Hopefully, I was the first one to play it for you, and hopefully, Fanisha contributed in your playlist here. और ये गाना जो कि मैं आपको बता दूं कि रोमी और श्रेया घोषाल की आवाजों में है, और इस गाने को कंपोज किसने किया है देखिए मैं वो देखकर कल आपको बता दूंगी. बस ये बता सकती हूँ मिर्ज़ापुर द मूवी इट इज़ गोइंग टू रिलीज ऑन 4th of September एंड येस इट हैज़ ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू हैव सो एन्जॉयड वॉचिंग इन द सीरीज. वंस अगेन दिस इज गपशप गली विथ मी टू. कुछ ऐसे ही चमचमाते हुए गाने जो हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं जो हमें बेहद पसंद हैं, और उसमें से एक और गाना जो मैं अपनी पसंद का लगाने वाली हूँ यहाँ पर, आई होप यू विल एन्जॉय दैट. लेकिन प्रायर टू दैट, चमचमाते हुए गाने से चमचमाते हुए ज्वेलरी तक का सफ़र बहुत आसान है, क्योंकि गाने भी होते हैं जो आप किसी के साथ सुनते हैं ना, दैट बिकम्स मेमोरेबल फॉर यू. ऐसे ही सेलिब्रेशंस भी जब आप लोगों के साथ करते हैं, अपनों के साथ करते हैं, वो हमेशा यादगार रहते हैं, और इस यादगार मोमेंट को थोड़ा सा और यादगार बनाते हैं ऐसे स्पेशल तोहफे. और ये तोहफे में अगर आप तनिष्क की जो वो डायमंड फेस्टिवल इनका जो चल रहा है, अगर इसका हिस्सा बनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, तो आपके लिए ये एक और रीज़न रहेगा फॉर इट टू बी एब्सोल्यूटली मेमोरेबल. एन्जॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. नाउ ये सॉलिड जो फेस्टिवल चल रहा है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं एंड सेलिब्रेट द सीजन विथ टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो आप जब उन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. दिस इज तनिष्क इन फ्रिस्को.

दिस इज गपशप गली विथ मीठू. ये सारे गाने ना दिल को ऐसे सुकून पहुंचाते हैं कि क्या ही कहा जाए. ये आवाज़ में वो कशिश है कि वो सच में एक दिल को सुकून पहुंचा के जाते हैं. पता है, ये मैं सोचा कि बात करूँ आप लोगों से कि एक ना कुछ हमारा एक नोशन या कुछ कह लें सोसाइटल प्रेशर है कि हर दिन के काम में ना हमें लगता है कि अगर आप कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो फिर आप कर क्या रहे हैं. यू नो दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड और द सोसाइटीज माइंड. सबके ज़रूरी काम होते हैं जो सब करते हैं अपने वक्त रहते और वो पूरा करते ही हैं हम, राइट. उसके बाहर ना डोंट फील द प्रेशर ऑफ ऑलवेज मेकिंग गोल्स, ऑलवेज रनिंग अराउंड, ऑलवेज मेकिंग एजेंडाज टू डू समथिंग एंड अचीव समथिंग. डूइंग नथिंग बियॉन्ड द नेसेसरी इज एब्सोल्यूटली ओके. किसने कहा कि बियॉन्ड द इम्पॉर्टेंट आज जो भी आप चुनते हो करने के लिए वो कुछ एक प्रोडक्टिव ही होना चाहिए, उसका पर्पस होना ही चाहिए. ऐसा किसने कहा यार. ये ना बेसिक रूल जो है हमारे दिमाग में जो छपा हुआ है वो हमें हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा टू बी एबल टू समटाइम्स जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय सच म्यूज़िक.

0: हम में से कितने लोग हैं कि अपने आप को इजाजत देते हैं कि म्यूजिक केवल ऐसे यू नो इंजॉय करने बैठे हैं, कुछ और ना करते हुए बस म्यूजिक सुनने बैठे हैं। वो टाइम गया ना, एक टाइम होता था जब वाकई में ऐसे करके रेडियो चला के लोग इत्मीनान से बैठ के सुनते थे, एंड यू नो या तो कैसेट या सीडीज पे म्यूजिक बस सुनने के लिए बैठे हैं। अब हम किसी काम के साथ म्यूजिक सुनते हैं, इजंट इट ट्रू, टेल मी ऑनेस्टली, है ना। इस तरह की जो ये खूबसूरत लम्हे जो कि हम आई एम श्योर यू आर ड्राइविंग राइट नाउ टू सम प्लेस, और घर का काम कर रहे हो आप, या अगर ऐसे ही बैठ के सुन रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज दीज मोमेंट्स आर एक्स्ट्रा स्पेशल फॉर अस, देन दे आर जस्ट बॉर्न फ्रॉम जॉय एंड वंडर, है ना। अल्टीमेटली लाइफ इज अबाउट लिविंग इट हैप्पीली, मानते हैं कि नहीं, ना कि प्रोडक्टिविटी या सक्सेस के सब्जेक्टिव गोल पोस्ट पे झंडे गाड़ना। Wouldn't you agree? If that's what gives you the joy, then please go ahead. काम करो, प्रोडक्टिव काम करो, और लगे रहने में आपको मजा आता है तो जरूर करें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। But grant yourself the grace to just not exist, but live, ladies and gentlemen, in this beautiful world. Being alive is a miracle, और इस miracle को
1: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
5: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
5: ये क्या होता है?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: इस रक्षाबंधन चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7747 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
8: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनीशिया 104.9 FM.

ऑलराइट, वीर ज़ारा से सुन रहे थे आप ये गाना. और दिस इज़ वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल कवालीज, जो भी जब हम बॉलीवुड कवालियों की बात करते हैं तो फिर इस कवाली की बात तो ज़रूर होती है. अगली जो मैं आपके लिए प्ले करूँगी वो भी डेफिनेटली बॉलीवुड की वन ऑफ द फेवरेट कवालीज है, कवाली म्यूज़िक है, जो कि मूवी हिना से लिया गया है. और बहुत ही कमाल की सिचुएशन, एक जिसे आप कह लीजिए फिल्म का रुख बदल रहा था, कहानी का रुख बदल रहा था जब ये कवाली बैकग्राउंड में चल रही थी. लेकिन इससे पहले कि मैं आपके लिए ये प्ले करूं, आई हैव टू टेल यू, अगर आप अपना कोई वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई और स्पेशल सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं तो फिर बिफोर दिस के आप स्ट्रेस लेना शुरू करें कि जी वेन्यू क्या होगा, डिकोर कहाँ, क्या कैसा करेंगे हम, केटरिंग कहाँ से होगी, और बहुत सारी छोटी डिटेल्स होती हैं किसी भी इवेंट को प्लान करने के लिए. तो मैं आपको बताती हूं, वैनेसा इवेंट्स इज वेयर यू नीड टू कॉल. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस. Venue selection and beautiful decor by signature events to photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. So, aap apne event pe focus kijiye, apne mehmano pe focus kijiye, or let Vanessa Events take care of everything else. To Hari Basera sahab ko call kijiye from Vanessa Events to help you plan your next important event. That number is 469-442-8770. एक बार फिर नंबर नोट कर लीजिए, 469-442-8770. दिस इज विनेसा इवेंट्स, वे योर सेलिब्रेशन मैटर्स, दे आर योर सेलिब्रेशन पार्टनर्स. तो बैक टू हिना एंड दैट लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ कवाली, जो कि मूवी में तीनों सितारों की जो थे इसमें, ऋषि कपूर, ज़ेबा बख्तियार और साथ ही साथ देखिए तीसरी हीरोइन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा मैं आपको बताती हूँ. देयर लाइफ्स वर चेंजिंग. दिस इज कब आओगे.

ऑलराइट, हिना फिल्म से लिया गया था ये गाना जो आप सुन रहे थे, और जो तीसरी एक्ट्रेस थी उनका नाम है अश्विनी बावे. थैंक यू सो मच मुकेश साहब आपकी कॉल का एंड फॉर रिमाइंडिंग मी द नेम ऑफ द थर्ड एक्ट्रेस. बहुत देर से सोच रही थी कि क्या नाम था उनका. तो आपको बताएं जी कि हिना फिल्म जो कि राज कपूर साहब ने इस फिल्म को जो है वो डायरेक्ट करना या उनकी प्रोडक्शन आप कह लीजिए थी, और रणधीर कपूर ने फिर बाद में इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. तो राज कपूर साहब 20 साल से इस कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके चल रहे थे. मेरा नाम जोकर जब ये फिल्म उन्होंने बनाई थी तब उनकी के ए अब्बास से मीटिंग हुई थी और हिना मूवी के ऊपर कहानी पे डिस्कशंस शुरू हुई थी. राज कपूर साहब के डिमाइस के बाद उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस यू नो डायरेक्टोरियल ड्यूटीज संभाल ली इस फिल्म की, और फिर उन्होंने हिना जो कि राज कपूर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसे किया कंप्लीट. सो हिना मूवी का एक छोटा सा किस्सा ये भी चल रहा है आपके लिए कवाली स्पेशल राइट हेयर ऑन सुनहरी किरण. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स हैं जी यूएस में. चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आपका स्टार्टअप हो, चाहे आपका एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो, एजी फिनटैक्स ऑफर करता है इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि आपकी नीड्स के इर्द गिर्द टेलर की जाती हैं. फ्रॉम बुककीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी एजी फिनटैक्स आपको प्रोवाइड करते हैं. दे विल हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एज वेल एज फ्यूचर रेडी. सो जरूर एजी फिनटैक्स को बनाइए अपना पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर. ये सारी बात सुनकर आपके जहन में कोई भी सवाल आया है तो दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. गिव देम अ कॉल 4699429888, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज agfintax.com. एंड दिस नेक्स्ट कवाली इज टेकन फ्रॉम द मूवी धड़कन, आवाज दी लेजेंडरी नुसरत साहब की.

0: फिल्म धड़कन से सुन रहे थे आप ये गाना। वैसे आपको बताऊं कि धड़कन मूवी जो है वो अबाउट 4 से 5 साल प्रोडक्शन डिले हुआ था इसमें, फिर भी इतने डिले के बाद यूजुअली मूवीज अपना चार्म खो देती हैं, बट धड़कन मूवी ने चार्म खोया नहीं बल्कि मुझे लगता है बिल्ट कर लिया। इट वन सुनील शेट्टी हिज फर्स्ट एंड ओनली फिल्म फेयर अवार्ड फॉर, वो भी बेस्ट विलन के लिए। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि ही वॉज द विलन इन द मूवी, मतलब गिव दैट गाय अ लिटिल बिट ऑफ सिंपथी एंड एम्पथी, बट दैट्स हाउ द मूवी गोज और यही अवार्ड उन्हें मिला था। वैसे आपको एक और बात बताऊं कि जिस रोल के लिए सुनील शेट्टी ने अवार्ड जीता वो पहले संजय दत्त को जा रहा था, बट देन एवरीथिंग चेंज्ड। सो विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: हेलो, मेरे रिलेटिव आ रहे हैं, everyone's asking लंच में क्या है?
12: Figure not, we have the perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
17: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
18: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
8: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
19: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो पे आप सुन रहे हैं. वैसे तो मैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण लेके 2:30 बजे से 5 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, लेकिन आज एक घंटा और जो मुझे आपके साथ ये मिला, दैट इज वेयर वी आर पेइंग सम ब्यूटिफुल बॉलीवुड कवालीज. बॉलीवुड की फिल्मों में स्पेशली जो मुझे लगता है कि 90s और 2000s का दौर था, उसमें कवाली एक बड़ा स्पेशल रोल उन फिल्मों में प्ले करती थी. उससे भी पहले 70s 80s आप ले लीजिए, 80s की फिल्में 70s की फिल्में, कवाली एक नंबर ज़रूर हुआ करता था. और अक्सर मैंने देखा है कि फिल्मों में वही नंबर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था. वैसा ही एक खूबसूरत गाना मैं अब आपके लिए प्ले करने लगी हूँ और आपके लिए लाई हूं एक गिव अवे जिसके मैं दो विनर्स सेलेक्ट करने वाली हूं. तो आपको मुझे सबसे पहले मैं आपको यह बताती हूं कि गिव अवे आया कहां से है. सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से. सैन इडली रेस्टोरेंट वो जगह है जी, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% यू नो प्योर वेजिटेरियन. ऑथेंटिक फ्लेवर्स हैं, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन फ्लेवर्स, और साथ ही साथ शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी अगर आपने पीनी है तो सैन इडली रेस्टोरेंट इज द प्लेस फॉर यू टू गो. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. दे आर लोकेटेड एट हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे. अच्छा, ये तो हो गई सैन इडली, जरूर जाइए विजिट कीजिए. और सैन इडली आपके लिए ये बेहतरीन मौका लाए हैं टू विन डोसा ऑफ एनी डोसा ऑफ योर चॉइस बट प्लस वन फिल्टर कॉफी. तो आप डोसा भी जीतेंगे अपनी पसंद का और एक फिल्टर कॉफी जो शहर की बेहतरीन फिल्टर कॉफी है वो जीतेंगे एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड. और इसको जीतने के लिए आपको क्या करना है जी, ये जो गाना अब मैं आपके लिए प्ले करूंगी, आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है. ये गाना यानी कि ये कव्वाली जो मैं अब आपके लिए प्ले करूंगी, मुझे बताना है कि कौन सी मूवी से लिया गया है और इसके लीड एक्टर्स कौन थे. मतलब लीड एक्टर भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि देयर इज नो वे कि आपको मूवी का बताओ और लीड एक्टर का बताओ, ये नहीं हो सकता. तो 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. गिव मी अ कॉल एंड बी अ विनर ऑफ दिस डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एंड आई विल पिक टू विनर्स. 9722355555 दिस इज तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर. हम भी वैसे मैं 90 से पीछे की कवाली प्ले नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिस वन वाज लास्ट टाइम जब मैंने कवाली का सेशन किया था तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इसको प्ले करने की. सो हियर यू गो. फिल्म का नाम और हीरो हीरोइन का नाम.

लता मंगेशकर साहिबा और शमशाद बेगम साहिबा की आवाजों में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत कवाली टेकन फ्रॉम द मूवी मुगले आजम. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आप तमाम लोगों ने. दिलीप कुमार और मधुबाला मेन लीड रोल्स में मौजूद थे. पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे इस मूवी में मौजूद थे बहुत पिविटल रोल्स में. और मूवी थी ऑफकोर्स मधुबाला, डायरेक्टेड बाई के आसिफ. 1960 वॉज द ईयर दिस मूवी वॉज रिलीज्ड एंड सिंस देन अभी तक कभी पुरानी नहीं हुई ये फिल्म, आज भी वैसी ही नई है. कभी रीमास्टर होके आ जाती है, कभी नए रंगों के साथ आ जाती है. सो दैट मीन्स कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एवरग्रीन फिल्म एज वेल एज सॉन्ग्स. अच्छा जी, आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का शुक्रिया. श्वेता, रक्षित, आफरीन, मनीष, विधि, दिव्या. और अभी भी फोन लाइन्स बाज हो रही हैं, पर हमारा कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है. जल्दी से विनर अनाउंस कर दूं. दो लकी विनर्स मुझे पिक करने थे. सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से यू हैव वन डोसा, एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी. और हमारे लकी विनर्स हैं, पहली हमारी विनर हैं आफरीन तहनियत और दूसरी विनर हैं विधि मेहता. सो आफरीन एंड विधि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू सैन इडली रेस्टोरेंट एट हाईवे 121 एंड कस्टर्स जंक्शन एंड अवेल योर गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. एज आई ऑलवेज से, आई ऑलवेज पुट इन द नंबर इन विच यू हैव कॉल्ड मी इन अ मैथ फॉर्मूला और उससे आपकी लक ही आपके विन का सिलेक्शन करती है. और आज की हमारी लकी विनर्स ये दो हैं. आप तमाम अपना फोन कॉल करते रहिए, मैं 5 बजे तक यहां मौजूद हूं. आई स्टिल हैव अ फ्यू मोर गिव अवेज फॉर यू. फन एशिया इस तरह की बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेके आता है. वी आर प्लेइंग सम ब्यूटिफुल कवालीज एंड हियर इज अनदर वन, अ वेरी मॉडर्न कवाली फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना.

और रक्षाबंधन आ रहा है जी, और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर आपके लिए फैन एशिया रेडियो और चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट एंड्योरेंट लेकर आए हैं बहुत सारे एक्साइटिंग डेली गिव अवेज और साथ ही साथ ग्रैंड प्राइज भी है. दीज गिव अवेज इंक्लूड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, साथ ही साथ रिजॉर्ट स्टे, और जो ग्रैंड प्राइज है वो है एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. सो कंप्लीट डिटेल्स इस कॉन्टेस्ट की आपको मिलेंगी फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे. अगर आपने अब तक हमें फॉलो करना शुरू नहीं किया तो इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट फॉलोइंग चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट. दिस इज वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड. अब आपको करना क्या है इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, आपको बनानी है एक मिनट की वॉइस नोट, और उस वॉइस नोट में आपने बताना है द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग. इट कैन बी अ ब्रदर और अ सिस्टर, इट रियली डजंट मैटर. सिबलिंग के साथ एक मेमोरी आपने एक मिनट की नोट वॉइस नोट में बतानी है, और उस वॉइस नोट को व्हाट्सएप करना है. किस नंबर पे? इस नंबर पे 214-837-7147 पे इस वॉइस नोट को व्हाट्सएप कीजिए जी, और एंटर कर लीजिए ऑटोमेटिकली टू बी इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ विनिंग एक्साइटिंग डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज. तो यू मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. अच्छा, ये तो हुआ आपके लिए ये, और इस आखिरी कवाली के साथ हम इस सेगमेंट को कर रहे हैं रैप. 2:30 से लेकर ऑनवर्ड्स लेकर आऊंगी आपके लिए. ट्यूसडे है आज, और आप जानते हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में ट्यूसडेज इज डेडिकेटेड टू बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डालेंगे एक ऐसे स्टार पे जिन्होंने हमें दिए कुछ बेहतरीन बॉलीवुड के गाने. बट बिफोर दैट, लेट्स एंड दिस कवाली सेगमेंट विद दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नंबर टेकन फ्रॉम द मूवी दिल्ली 6.

0: मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। You will probably spend more time choosing than shopping.
2: Find the Mangal Sutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangal Sutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
3: Hey, tumne kabhi insurance liya?
4: Liya.
3: Kabhi policy samajh bhi aaya?
4: Nahi aaya.
3: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
8: लैपटॉप में।
7: इन्वेस्टमेंट?
8: गूगल ड्राइव।
7: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
8: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
7: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
10: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूँ।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: No, not another restaurant again.
11: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
2: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route. Rerouting.
13: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
14: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
13: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
13: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
15: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, Phoenicia Radio.

A very warm welcome to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with us this afternoon. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Main hu Kiran aapke saath aur lekar aayi hu. Aaj hai Tuesday. Aap jante hain, har roz aata hai ek naya flavor, different flavor, aur aaj ka flavor hai Bollywood Spotlight. जी हाँ, Spotlight डालेंगे एक ऐसे Bollywood के स्टार पे जिन्होंने हमें कुछ बेहतरीन गाने दिए, चाहे वो एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, म्यूजिक कंपोजर्स हों, सिंगर्स हों, लिरिसिस्ट हों. हर शख्स को यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, Spotlight उन पे डाली जाती है, रोशनी डाली जाती है, जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा गाना या Bollywood को कुछ ऐसे गाने दिए हैं जो मैं और आप इंजॉय करते हैं. दे आर सो एंटरटेनिंग. और आज की Spotlight हमने एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर कम सिंगर कम एक्टर कम प्लेबैक सिंगर कम सॉन्ग राइटर, मतलब हर फन मौला है ये. एक टाइम तो आया था जब इनके नाम का गारंटी हो गई थी कि अगर इन्होंने म्यूजिक दिया है या गाने इस मूवी के बनाए हैं या कुछ कंपोज किए हैं तो वो तो सुपरहिट होने जरूरी हैं. द नेजल वॉइस मशहूर हो चुके थे, ऑफकोर्स आपने पहचान लिया है. वी आर आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डाली है हमने दी डायनामिक दी अमेजिंग हिमेश रेशमिया पर.

हिमेश रेशमिया पे आज हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डाली है. ही इज वन ऑफ दोज म्यूजिक कंपोजर्स जिन्होंने सलमान खान के साथ बहुत काम किया और साथ ही साथ एज अ म्यूजिक कंपोजर ही उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और उसके बाद वो सिंगर भी बने, सॉन्ग राइटर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने, एक्टर भी बने और प्लेबैक सिंगर तो ऑफकोर्स वो बने ही. तो ये जो गाना आप सुन रहे थे ये लिया गया था मूवी प्यार किया तो डरना क्या से 1998. अपने म्यूजिक डायरेक्टर के करियर का आगाज हिमेश रेशमिया ने इसी फिल्म से किया था और इस फिल्म में प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में उन्होंने दो गाने कंपोज किए थे. सारे गाने नहीं थे, दो गानों में एक तो था ओल्डी चुनरिया जो बन गया सुपर डुपर हिट और एक और था तुम पर हम हैं अटके. अगर आपको याद हो दिल भी तुम पर हम हैं अटके दिल भी मारे झटके क्योंकि तुम हो हटके हो वाला गाना था. सो ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. अच्छा उसके बाद मूवी आई बंधन जिसके लिए उन्होंने चार गाने दिए अराउंड 1998 में ही और फिर आई 1999 में हेलो ब्रदर. अब आप नोटिस कीजिए कि 98 और 99 में जो दो तीन मूवीज के गाने उन्होंने दिए वो तीनों की तीनों सलमान खान की मूवीज थी. हेलो ब्रदर के लिए उन्होंने दो गाने दिए एंड दैट वाज चांदी की डाल एंड तेरी चुनरिया. सो अब प्ले कर रही हूँ आपके लिए दिस वन इज हिमेश रेशमिया ब्यूटिफुल नंबर कंपोज्ड बाय हिम. दिस इज चांदी की डाल पर सोने का मोर.

And if you have a child from third grade through fifth grade at your home, then Next Gen Speakers Academy can help them build the communication and leadership skills jo unke future ke liye bahut zyada kaam aayengi. Like aap keh lijiye, they will use them for a lifetime. Created by experienced coaches Sunhi Simon Santiago and Audra Langston, who have mentored debate champions, valedictorians, as well as Ivy League graduates, they've created an online program which is designed to help your young minds grow into confident leaders. ये आपको बात सुन के कोई भी आपके जहन में सवाल आया है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज गिव देम अ कॉल. दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. दैट नंबर इज 214-724-2867. 214-724-2867 उनका नंबर है जी. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज nextgenspeakersacademy.com. So connect with them. Give your child the confidence to lead tomorrow, starting today with Next Gen Speakers Academy. Himesh Reshamiya par humne dali hai aaj spotlight. He was born on 23rd July 1973. Music was already a part of his family environment kyunki unke father Vipin Reshamiya was already a music composer. Himesh ki jo professional journey hai ye shuru hui remarkably young actually, and he eventually moved into television production and music before making his own Bollywood breakthrough. To kaam to bahut arse se kar rahe the, par Bollywood breakthrough in do teen filmon se kiya jo maine aapko bataya, jaise ki Pyar Kiya To Darna Kya 1998, और बन गए सलमान खान की ऑलमोस्ट आवाज़. और वो जो सलमान खान का कनेक्शन था, वो हिमेश रेशमिया की ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बना रहा आने वाले कई कई सालों में. फिर सुना था बीच में कि उन दोनों का कुछ नासाजी हो गई है रिलेशनशिप में, क्योंकि सलमान के साथ कोई अगर डेढ़ होशियारी करने की कोशिश करे तो फिर सलमान उसको छोड़ते नहीं है. तो कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर बाद में सुना कि उनका रिलेशनशिप मेंड हो गया है. सो वी आर talking about Himesh Reshamiya, and this next number is taken from the movie Kahin Pyar Na Ho Jaiye. Ye shuru ki unki movies thi jinke liye Himesh Reshamiya de rahe the music. This is Opriya.

कहीं प्यार ना हो जाए से सुन रहे थे आप ये गाना. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं टेक्सस में एंड यू लुकिंग फॉर स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज वेयर यू नीड टू कॉल एंड कनेक्ट विद. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस कम्युनिटी बिजनेसेस सिंस 2002. कंपेरेटिव रेट्स हैं जी, रिलायबल सर्विस है और कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. आपकी नीड्स को सुन के उनके हिसाब से प्लान्स क्रिएट करते हैं आपके लिए. सो गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न. दैट नंबर इज 844-428-2808 is the number, or you can visit their website, which is taraenergy.com. This is TARA, taraenergy.com. स्पॉटलाइट, बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है जी हिमेश रेशमिया पे. 1998 के बाद हिमेश रेशमिया का जो करियर है वो स्टेडली बिल्ड होता गया. धीरे धीरे वो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहे, लेकिन वो एक आप कह लीजिए एक हिट मेकिंग मशीन के ब्रांड के तौर पे जाने और पहचाने जाने लगे. उनकी स्पेशलिटी थी सिंपल, कैची और इंस्टेंटली मेमोरेबल मेलोडीज. एंड आई थिंक दैट इज ऑलवेज, जो भी हिमेश रेशमिया का गाना शुरू में हम सुनते थे वो एकदम से आपको यू नो हिट करता था और आपके जहन में वो ट्यून रह जाती थी. ऐसे सॉन्ग्स जो एक बार सुनने के बाद दिमाग में बस जाते थे और उनको हम यू नो अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्शियसली गुनगुनाने लगते थे. और फिर वो फेज जहां हिमेश ने एक के बाद एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स को म्यूजिक दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स में जैसे आप देख लीजिए हम दुल्हन हम ले जाएंगे, सलमान खान और करिश्मा कपूर की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के सॉन्ग्स ने हिमेश रेशमिया को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ऑडियंस के बीच में और स्ट्रॉन्ग पोजिशन दी. इसी के साथ हमराज फिल्म जो कि 2002 में आई, जिसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया के करियर का मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. रोमांटिक मेलोडीज के साथ कुछ बहुत ही कमर्शियल अपीलिंग सॉन्ग्स उन्होंने दिए इस गाने में. इन सारी मूवीज के गाने में आपके लिए जरूर प्ले करूंगी. फिर आई तेरे नाम, सलमान खान स्टारर तेरे नाम के म्यूजिक ने तो भाई एक मतलब आप कह लीजिए फिनोमिनन बन गए हिमेश रेशमिया. एल्बम के इमोशनल सॉन्ग्स के साथ कुछ कैची नंबर्स, कुछ डांसिंग नंबर्स, कुछ पार्टी नंबर्स, एवरीथिंग. वो एल्बम, कुछ एल्बम्स होती हैं जो वो कहते हैं ना आपके कंप्लीट पैकेज होता है. तेरे नाम वॉज एब्सोल्युटली दैट कंप्लीट पैकेज. तेरे नाम के सॉन्ग्स ने यंग ऑडियंस के इमोशंस को डायरेक्टली टच किया और हिमेश का नाम बॉलीवुड म्यूजिक के बिगेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स में शुमार होने लगा. सो लेट्स गो ऑन. अब ये दो तीन फिल्मों के मैंने नाम लिए हैं तो आपके लिए उनके ही गाने प्ले करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दुल्हन हम ले जाएंगे. दिस इज मुझसे शादी करोगी.

पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं जी, और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फिजिकल लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल, LUNOXY लिनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लिनॉक्सी मेडिकल पे आपको मिलेगी प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, एज वेल एज हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज. सब कुछ अंडर वन रूफ. अब आपको सीटी स्कैन कराने या एक्सरे कराने या कोई और टेस्टिंग कराने, बाहर कहीं नहीं जाना, सब कुछ आपको लिनॉक्सी मेडिकल पे मिलेगा. और अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, 7 डेज आपके लिए खुले हैं, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक. और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज वॉक इन. दिस इज लिनॉक्सी मेडिकल लोकेटेड इन फ्रिस्को. हिमेश रेशमिया का ये फिल्म विच वॉज द मूवी हमराज, इस फिल्म के गानों ने एक बार फिर मचा दिया तहलका. उसी का एक गाना, वी विल कंटिन्यू एंड हेड ऑन टू अ ब्रेक.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स
4: again. One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभाल लेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
14: कौन सा?
13: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
14: अरे सारे तो सेम है।
13: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
14: ओ हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
15: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
3: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड and family fun for every age.
16: Live performance by Raga Boys.
3: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
16: Media partner, Fun Asia Network.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 एफएम।

You tuned in to 104.9 FM Fan Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. Mein Bollywood Spotlight sun rahe hain aap, aur spotlight dali hai aaj the dynamic singer, producer, music director, aap keh lijiye songwriter, actor, har wo kaam jo Bollywood mein hota hai, har pan maula ban gaye the uske ek waqt mein, Himesh Reshammiya. Jis gaane ko haath lagate the, jis movie ko haath lagate the, wo ban jati thi super duper hit. Awaaz ki ek khaas nasal quality thi unki, jisko logon ne bahut pasand kiya. Lekin awaaz tak ka safar unhone bahut baad mein kiya. Starting to apni career ka jo aagaaz tha, wo music composing se kiya. Bahut shandar gaane diye apne career mein, jo ke main aapko back to back bahut saare suna chuki hoon. Jaise ye Tere Naam ka gaana aap sun rahe the. Tere Naam ke to khair saare hi gaane shandar the. लेकिन हर मूवी का एक एक गाना कोशिश कर रही हूँ टच करें. उससे पहले मैंने आपके लिए हमराज मूवी का गाना प्ले किया था, दुल्हन हम ले जाएंगे का, और ऐतराज मूवी का गाना आगे चल के आपके लिए प्ले करूंगी. और इसके साथ साथ फिर आया आशिक बनाया आपने का दौर. आशिक बनाया आपने 2005 में रिलीज हुई जी. टाइटल सॉन्ग उसका जो हिमेश रेशमिया ने पहली बार खुद गाया, दैट बिकेम समथिंग एल्स. एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया उस आवाज ने उस गाने को. और वहां से पड़ी हिमेश रेशमिया की आवाज की, जो बहुत लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि क्या नेजल क्वालिटी, क्या नेजल टोन है, ये समझ नहीं आती, ये यूं करते रहते. बट पब्लिक को जो पसंद आए, जो पब्लिक पसंद करे वही बिकता है, और वही बिक रहा था इस सॉन्ग की. ये जो आशिक बनाया आपने है, इसकी मेलेडी ना सिर्फ ऑफकोर्स हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल तो थी ही, लेकिन हिमेश रेशमिया की आवाज ने उसको कुछ अलग ही लेवल दिया, अलग ही पसंद लोगों ने उसको किया. और यहीं से हिमेश के करियर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, बिकॉज अब लोग सिर्फ हिमेश रेशमिया द कंपोजर नहीं, बल्कि हिमेश रेशमिया द सिंगर को भी जानने लगे. एंड दे वर अबाउट टू ऑफकोर्स दे discovered the singer in Himesh. और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कुछ बहुत सारे शानदार गाने दिए, जैसे कि अक्सर, फिर हेरा फेरी, बॉडी गार्ड, खिलाड़ी 786, स्पेशल 26, और साथ ही साथ प्रेम रतन रंधन बायो. वो मैं सारे आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता प्ले करूंगी. अभी हम 4:30 बजे तक हिमेश रेशमिया स्पेशल में हैं, सो वी आर गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ म्यूजिक फॉर यू. डोंट वरी, बहुत सारे गाने आपके लिए लाइन अप हैं इन तमाम मूवीज से. तब आशिक बनाया आपने की बात हो रही है, तो फिर चलिए आशिक बनाया आपने.

जहां हम राज और तेरे नाम जैसी फिल्मों ने हिमेश रेशमिया को दी नॉमिनेशन फॉर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर, वहां आशिक बनाया आपने ने जिताया उसे उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड। और आयरनी चेक कीजिए आप, या वो कह लीजिए ऊपर वाले का खेल, कि बेस्ट म्यूजिक कंपोजर नहीं बल्कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड जीता गा के पहली बार हिमेश रेशमिया ने फॉर दिस सॉन्ग। नॉमिनेशन पाई म्यूजिक डायरेक्टर की, लेकिन अवार्ड जो मिला उन्हें वो इस गाने के लिए प्लेबैक सिंगिंग का मिला। दैट इज हाउ हिज लाइफ एंड हिज करियर चेंज। और वो कहते हैं ना कि ग्राफ उनके करियर का बिल्कुल चेंज हो गया, दिशा उनके म्यूजिक की चेंज हो गई। और फिर हिमेश रेशमिया का वो फेमस डायलॉग आया जिसके बारे में सबने बहुत बात की, कि अब मैं सिर्फ दूसरों के लिए गाने नहीं बनाऊंगा बल्कि खुद अपने बनाए हुए गाने गाऊंगा। कुछ को पसंद आया, कुछ को नहीं आया, वो किस्सा मैं आपसे थोड़ी देर में छेड़ूंगी। उससे पहले आपको बताऊं कि माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को हेल्प करते हैं बिल्ड स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। और किसके थ्रू? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। चाहे आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ या रिटायरमेंट, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना चाहते हैं, माई टाइम इक्विटी ऑफर करती है पर्सनलाइज सॉल्यूशंस जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के इर्द गिर्द केटर किए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं। सो यू हैव एनी क्वेश्चंस, गिव माई टाइम इक्विटी अ कॉल 469-702-1272 इज दैट नंबर, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज mytimeequity.com। लेकिन उनकी आवाज़ के अंदर कुछ गाने मैं आपके लिए ज़रूर प्ले करूँगी, पर हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते, बट दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही वॉज द म्यूजिक कंपोजर।

इससे पहले कि रमेश शमिया गाना गाना शुरू करते, वो हमें याद रखना चाहिए कि वो एक यू नो प्लेबैक वॉइस से पहले वो एक प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर. और जब हिमेश ने गाना शुरू किया तो एक नेजल टोन, एक स्लाइटली कंप्रेस्ड डिलीवरी, अ डिस्टिंक्टिव प्रोनंसिएशन और ट्रिमेंडस इमोशनल इंटेंसिटी के साथ उन्होंने अपने गाना गाने शुरू किए और सडनली लोगों ने बात करनी शुरू की. वो दौर था जब म्यूजिक कंपोजर्स यूजली गाने नहीं गाया करते थे, दूसरे सिंगर्स ही गाया करते थे, तो लोग बात करने लगी कि ये कौन गा रहा है, और जवाब मिला जी हिमेश रेशमिया गा रहे हैं. और फिर लोगों ने पूछा कि ये म्यूजिक कंपोजर या डायरेक्टर अपना गाना खुद ही गाने लगे हैं, तो कुछ लोगों को ये अंदाज उनका बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों को अंदाज उनका कतई अच्छा नहीं लगा. मतलब इट वाज अ लव एंड अ हेट रिलेशनशिप. और कुछ लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, जोक्स बनाए. मुझे याद है कि वो मीम्स का दौर नहीं था, आजकल तो खैर सोशल मीडिया पर इतनी मीमें बनती कि मीमें बन बन कर पागल हो जाती, लेकिन दैट वॉज नॉट द मीम्स दौर. दैट वॉज सिंपल सा, मतलब इंटरव्यूज में लोग उनका बात कर लेते थे, या इस तरह से अखबार में कोई इंटरव्यू आ गया, या लोग वैसे उनका इधर उधर मजाक उड़ा लिया करते थे. बट एक चीज जो बिल्कुल जिसके ऊपर दो राय नहीं थी, नो बडी कैन कन्फ्यूज हिज वॉइस विद एनी वन एल्स. And for a singer, that is actually an extraordinary advantage. क्योंकि जैसे ही आपके कानों में कोई गाना ऐसा चलता है जो हिमेश रेशमिया ने गाया होता है, तो लामहाला आपको पता लग जाता है कि ये तो है जी हिमेश की आवाज़.

0: और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट हो गया है एंड यू नो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एज स्ट्रेसफुल एज दिस, तो बिल्कुल आपको पेपर वर्क, लीगैलिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन की टेंशन या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, योर मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग, एंड लेट अटर्नी ओमर ख्वाजा डू द रेस्ट फॉर यू, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में वी ऑल नीड एन अटर्नी हु कैन फाइट फ्रॉम आवर साइड एंड हु अंडरस्टैंड्स द अंडरलाइंग थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम नॉट ओनली विल दे हेल्प यू फाइट योर केस बट हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप जीत नहीं जाते अपना केस. तो इट इज एब्सोल्युटली अ विन विन सिचुएशन फॉर यू जो कि आप अवेल कर सकते हैं. अटर्नी ओमर ख्वाजा या उनकी टीम को कॉल कीजिए एट दिस नंबर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, 469-300-5046 उनका नंबर है, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. दैट वेबसाइट इज attorneyomar.com, OMAR, द स्पेलिंग इज OMAR, attorneyomar.com. तो जरूर विजिट कीजिए. आज हमने स्पॉटलाइट डाली है हिमेश रेशमिया पे, कुछ खूबसूरत गाने उनकी आवाज और उनकी कॉम्पोजिशन के आपको सुना रही हूँ, और गानों का ये सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा. आई हैव सो मेनी ब्यूटिफुल नंबर्स लाइंड अप फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% discount.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omer Khwaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomer.com. Omer Khwaja, your legal lifeline.
9: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
10: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
11: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu
3: And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
16: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: और इसी के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे. गिव अवे आया है जी मिराज लाउंज की तरफ से. सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मिराज लाउंज इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड प्रीमियम हुकर्स, डिलिशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक और साथ ही साथ एक्साइटिंग डीजे नाइट्स होती हैं उनकी. और यही नहीं, लेडीज नाइट और कॉलेज नाइट भी करते हैं वो. सो इफ यू आर अ कॉलेज गोअर देन दिस इज द प्लेस फॉर यू टू हैंग आउट. दिस इज मिराज लाउंज. इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि हैप्पी आवर उनका चलता है मंडे थ्रू थर्सडे 11 AM to 6 PM. मतलब हैप्पी आवर नहीं, हैप्पी डे ही चलता है पूरा. फीचरिंग हुकर्स स्टार्टिंग 24.99 एंड शॉट्स फॉर 4.99. तो आइए मिराज लाउंज में एक्सपीरियंस द एक्सक्विजिट मिराज लाउंज on McKinney Ranch Parkway. और अब आपके लिए गिव अवे है जी $20 का. ये ऑफ मिल सकता है आपको ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 or more. So you go there, you spend $50 and you will get $20 off, which is a great giveaway by Mirage Lounge. और आपको क्या करना है, बात हो रही है आज हिमेश रेशमिया की. हिमेश रेशमिया के गाए हुए कुछ गाने जो मैंने आपके लिए प्ले भी किए और हमने बात भी करी कि आप मतलब आप लव का रिलेशनशिप हो या हेट का रिलेशनशिप हो हिमेश रेशमिया के साथ, बीच का कोई रास्ता शुरू शुरू में तो नहीं था, आप शायद होता हो, बट पीपल यूज टू लव हिम और हेट हिम. सो एनी रिलेशनशिप दैट यू हैव, आपको मुझे कॉल करके बताना है या कि आपका हिमेश रेशमिया का गाया हुआ कौन सा बहुत ही फेवरेट गाना है, या हो सकता है आपका अनफेवरेट गाना हो वो, लेकिन अपना पसंद का या नापसंद का गाना आपने बताना है जो उनकी आवाज में हो. नॉट एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हिमेश रेशमिया द सिंगर. और वो गाने के एक लाइन आपको मुझे सुनानी भी होगी. सो उसी जरा टोनल क्वालिटी में सुनाएंगे तो मजा आएगा. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. कॉल कीजिए, बताइए हिमेश रेशमिया का पसंदीदा गाना या ना पसंदीदा गाना आपका कौन सा है उनकी आवाज में, गुनगुना के बताइए और जीत लीजिए ये $20 ऑफ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. लेट्स टेक आवर कॉलर. फनेशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: वालेकुम, मेरा नाम दुरे काजी और मैं ही फंसी हूँ गाना सुनाने के लिए भी.
0: आपने कॉल किया है, मर्जी तो आपकी है, बताइए कौन सा गाना आपको पसंद या ना पसंद है.
1: मुझे उनका उनके गाने बेसिकली सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, समाओ हिट हो जाते हैं. उनकी आवाज थोड़ी नेजल ट्वैंग वाली है ना.
0: जी जी जी,
1: तो इट्स अ डिफरेंट वॉइस. मुझे उनकी वो बड़ा अच्छा लगता है गाना. झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा तो नाचो कहते हैं.
0: वो आना या वो बुलाना भी अपने आप में बंदा का दिल करता है, एक बार जाके देख ही लूं ये कौन गा रहा है.
1: एक्चुअली इज रियली इंटरेस्टिंग. लाइक मुझे तो उनकी आवाज अच्छी लगती है, बट एक्टर मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं और किसी की अपनी राय वो अच्छे या बुरे हैं, मगर आई थिंक वो सिंगर बहुत ज्यादा अच्छे हैं.
0: ब्रिलियंट, थैंक यू दुरे काजी फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर राइट आफ्टर दिस. फनेशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज अनुपम.
0: जी अनुपम, बताइए.
2: तो एक हिरासरी का गाना है, ए मेरी मेरी जोहरा जबी, जुमेरात साथ निभा जा साथ, साथ निभा जा साथ, something like that. This is a very funny song and
0: yes.
2: उसका पिक्चर भी काफी फनी है.
0: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. आप एक बार अपना नाम दोबारा बता दीजिए.
2: अनुपम.
0: अनुपम, थैंक यू अनुपम. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर राइट आफ्टर दिस. थैंक यू फॉर योर कॉल. Alright जी, देखिए कैसे मजे मजे के गाने. अब ये जोहरा जबी जो है ये मुझे याद नहीं था, लेकिन आपने याद दिलाया है तो डेफिनेटली से आगे चलकर आपके लिए जरूर प्ले करेंगे. फनेशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज सिया.
0: दोबारा बोलिए, एक मिनट, अपना नाम दोबारा बोलिए.
3: टिया
0: या पिया? पी आई ए पिया.
3: सिया.
0: ओके सिया जी, सिया बताइए.
3: तो हिमेश रेशमिया का जो सॉन्ग है ना, तेरी मेरी प्रेम कहानी फ्रॉम बॉडीगार्ड, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल वन एंड ही हैज कंपोज्ड इट आई बिलीव.
0: जी, लेकिन फिलहाल सवाल ये था कि उनकी आवाज का गाना आपने मुझे बताना है, नॉट एज अ कंपोजर बट एज अ सिंगर.
3: द वन वेरी अनोइंग इज ए मेरी मेरी.
0: ये भी एक कमाल है क्योंकि आपसे पहले जो कॉलर थे उनका ये मोस्ट फेवरेट था, आपका मोस्ट अनोइंग. बट दैट्स हाउ इट इज, एवरीबॉडी हैज देयर ओन चॉइसेस, देयर ओन
1: लाइक्स. बट ही हैज डन ब्यूटीफुल जॉब्स इन द बिगिनिंग.
0: यस,
1: कंपोज्ड वेरी वेरी नाइस.
0: Thank you, Sia. Thank you. सुनते रहिए. I'm going to announce the winner in a bit. Fun Asia Radio. You are live on air. बताइए. नाम बताइए. नाम बताइए अपना.
4: Hi, ma'am. This is Vidit.
0: दोबारा बताइए.
4: Vidit.
0: Vidit. जी Vidit. बताइए.
4: Yeah. Ma'am, हिमेश रेशमिया के तो बहुत गाने अच्छे, but one of the most favorite is from the movie Banaras, and it goes like कितना प्यार करते हैं तुम्हें ओ सनम. That's one of the most soft and soothing song jo Himesh Reshamya gaya, and it is totally out of the league jitne bhi unhone gaane gaye.
0: Acha, ye gana unhone khud apni awaz mein gaya hai?
4: Haan ji, haan ji. Ye bahut less popular song tha, but it's a very nice song.
0: Acha, okay, perfect. Thank you for telling us that. I'm definitely going to look up that song and try to play it for you. Acha, thank you Vidit. Sunte rahiye. I'll announce the winner in a bit.
4: Yeah. Thank you.
0: You're welcome. All right, जी, एक गाना बीच में लगा लेते हैं, एक लास्ट कॉलर लेंगे हम इस कॉन्टेस्ट का, एंड देन आई विल अनाउंस द विनर. Fun Asia Radio, you are live on air. Fun Asia, you are live on air. Please tell me your name.
5: Meeta.
0: Meeta?
5: No, N.
0: Meeta?
5: Meeta.
0: जी Meeta, बताइए.
5: उसका उनका फेमस सॉन्ग है आशिक बनाया आपने.
0: Do you want to sing a line for us?
5: Oh my gosh, no, my voice is bad.
0: Okay, no problem at all. Thank you so much, Meeta. Sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this.
5: Thank you.
0: You're welcome. Fun Asia. All right, ji. Ye ho gaya ye. Aur aap sabki phone calls aa rahi hain. Fun Asia Radio, you're live on air. What is your name?
6: Hi, my name is Manasa.
0: Malvika?
6: Manasa.
0: Manata. Ji, bataiye Manata.
6: My favorite song from Himesh is this thing. Man ka radio bajne laga. Man ka radio bajne le zara.
0: Theek hai ji, ye unki apni awaaz ka gaana hai?
6: Sorry?
0: Yeah, did he sing this himself?
6: Yeah, he sang it himself. I listen it every day. But I don't know from which album it is from. But
0: yeah,
6: it's my favorite.
0: I will definitely look it up for you. Thank you so much for your call and keep listening. I'll announce the winner in a bit. RIG contest ka time ho chuka hai khatm. Thank you for your participation. I'm going to announce two winners right after this song. This is his next most popular number after Aashiq Banaya. This is Chhalak Dikhla Ja.

अरे जी, कई बार ऐसा होता है कि फोन लाइंस बज करना छोड़ती ही नहीं, यानी कि चलती ही जाती हैं। और कुछ ऐसा ही सिलसिला यहाँ पे भी था, ऑन एयर एंड ऑफ एयर। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और अपनी पसंद के गाने बताए या नापसंद के गाने बताए। और हमारे जो आज के लकी विनर हैं वो हैं जी, द फर्स्ट वन इज़ सिया। मैंने दो विनर सेलेक्ट करने थे और सेलेक्ट क्या करती हूँ मैं, तो आपके नंबर को मैथ के फॉर्मूले में डालती हूँ जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है, और आपकी लकी डिसाइड करती है कि आप जीते हैं या नहीं। सो हमारी फर्स्ट विनर है सिया। सिया, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे प्लीज़ कॉल कीजिए ताकि मैं आपका नंबर ले सकूँ आपसे। और हमारे जो दूसरे लकी विनर हैं वो हैं राकेश, राकेश महापत्रा, कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आप दोनों ने ये $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। 2 दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 डेज टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 फ्रॉम मिराज लाउंज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे। हिमेश रेशमिया के कंपोज गानों का सिलसिला जारी है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिमेश को एज अ कंपोजर, और उसमें कुछ कुछ गाने उनके अपने गाए हुए भी शामिल हैं, बट नॉट दैट वी हैव टू गिव हिम दैट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स, स्पेशली 2000s के एरा में जो हमने देखे।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hire moti main na chahu.
7: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं ही दो.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: It's Hoko.
10: अरे बस भी करो यार.
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
18: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: जिंदगी एक रंगमंच है
12: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
0: डैलस तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
19: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
0: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज
19: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
0: Media partner Fun Asia Network.
20: Jud jao apni dharti se. Desiyon ka sachcha radio channel. Fun Asia 104.9 FM.

आप सुन रहे हैं 104.9 FM फानेजर रेडियो आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. मैं हूं किरण आपके साथ. बहुत बहुत शुक्रिया आज की दोपहर हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए. 5 बजे तक मेरा और आपका साथ एक साथ चलेगा जी. और बहुत सारा म्यूजिक हिमेश रेशमिया का कुछ कंपोज्ड और कुछ संग बाय हिम आपके लिए प्ले किया. कुछ आप लोगों की रिकमेंडेशंस भी प्ले कर रहे हैं. अब अगला गाना प्ले करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे इवेंट के बारे में जो कि डालस में आपके लिए आ रहा है. तैयार हो जाइए फॉर अ स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन. द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस लेकर आ रहे हैं आपके लिए कायद मेला 2026. This is a celebration of heritage, culture, as well as community. आइए और enjoy कीजिए हमारे साथ live music, delicious food, shopping. अगर आपको पसंद है तो shopping का बेइंतहा खूबसूरत इंतजाम है आपके लिए. Cultural festivities होंगी. All in all आप ये कह लीजिए family fun for all ages. और साथ ही साथ live performance by Raga Boys. बिल्कुल मत भूलिए पाकिस्तान का सूफी rock band from Lahore belonging to the Patiala घराना of classical music. और इस band के जो 3 major singers हैं वो हैं जी नायाब अली खान, वली हामिद अली खान और इनाम अली खान. बीइंग द सन्स ऑफ पाकिस्तान्स क्लासिकल लेजेंड उस्ताद हामिद अली खान साहब, दे आर द 9th जनरेशन ऑफ पटियाला घराना. तो आप बिल्कुल उनका ये फ्री कॉन्सर्ट मिस मत कीजिए. रागा बॉयज विल बी देयर सैटरडे अगस्त 22nd 3 बजे दोपहर से रात 12:45 तक, यानी कि 11:45 PM तक ये इवेंट चलेगा एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सस. और डोर्स ओपन हो जाएंगे 2 बजे से. तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए. और अभी बेहतरीन, और मतलब सारी कुछ बेहतरीन तो बता दिए, एक और बेहतरीन बात आपको बतानी है कि आपको कोई टिकट नहीं खरीदना, कोई पार्किंग के पैसे नहीं देने. एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री. दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू टू कम विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस एंड योर चिल्ड्रन एंड एवरीबॉडी. और आके सेलिब्रेट कीजिए कायद मेला 2026. मीडिया पार्टनर इज फानेजिया नेटवर्क. हम वहां मौजूद होंगे एंड वी विल एब्सोल्युटली हैव अ ब्लास्ट. वंस again, Raga Boys are coming. You really don't want to miss it. Cultural festivities, delicious food, shopping or live music. Aur kya chahiye? Pakistan ki jashn-e-azadi manaiye with Pakistan Society of North Texas.

0: RIG 24/7 आई थिंक ऑफ यू. वैसे कुछ लोग होते हैं जो आपके जहन पे 24/7 नहीं बल्कि 24/8 सवार रहते हैं, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल बंदा है तो यू आर वेरी लकी. अच्छा, मैं अभी आपको बता रही थी एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट का जो कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस हमारे लिए लेकर आ रहे हैं. दिस इज़ कायद मेला 2026, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाजिया खान, जो हमें बताएंगी कि PSNT हमारे लिए इस मेले में क्या लेकर आ रहा है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्यों हमें इसको जरूर अटेंड करना चाहिए. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम शाजिया, हाउ आर यू डूइंग?
1: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग वेरी वेल. आप कैसी हैं किरण?
0: थैंक यू सो मच, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन एयर विद अस शाजिया. प्लीज बताइए, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस इस साल हमारे लिए जश्न आजादी की सेलिब्रेशन के लिए क्या लेकर आ रहा है?
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण, सबसे पहले तो आपका और फनीजा की पूरी टीम का कि हमें उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा ही करते हैं, और कम्युनिटी में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें जान पहचान और सारी मालूमात फनीजा से मिलती है. आपके सारे लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम. अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. एक्चुअली दोनों ही 14th अगस्त और 15th अगस्त सबने सेलिब्रेट की. तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस ये मेला हर साल मुनक्किद करते हैं. ये बहुत ही एक ऐसा इवेंट है जिसको पूरी कम्युनिटी मिलकर बहुत इंजॉय करती है, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, शॉपिंग होती है, बूथ्स होते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप आएं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करें, और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो हम मिस करते हैं अपना म्यूजिक, अपना कल्चर, और कोई ना कोई इसमें बहुत ही फेमस सिंगर्स परफॉर्म करते हैं हर साल की तरह. इस साल रागा बॉयज आ रहे हैं जो लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं इस इवेंट में. और सबसे ज्यादा जो बात हम सब इस यहाँ रह के मिस करते हैं किरण, वो ये होती है कि एक अपना माहौल, एक

0: अपने आजादी का जो एक माहौल बनता है वो हम कोशिश करते हैं कि हम कम्युनिटी में लेके आए। तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साउथ फोर्ट रेंच में हो रहा है ये इवेंट और डेट हम सबको पता है 22 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है सैटरडे को। साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है, कोई टिकट नहीं है इस इवेंट का। तो आइए और इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए।
1: बिल्कुल सही। तो शाजिया, हम वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दिस। एक बार फिर हम एम्फसाइज करते चलेंगे, इट इज़ अ फ्री इवेंट, किसी को कोई टिकट नहीं खरीदना, कोई पार्किंग पे पैसे नहीं देने, और तमाम पीएसएनटी की टीम वहाँ मौजूद होगी, हम मौजूद होंगे, फन एशिया की टीम मौजूद होगी और हमारे बेहतरीन सिंगर दी रागा बॉयज होंगे। शाजिया, कुछ और आप टचअप करना चाहती हैं बिफोर आई लेट यू गो?
0: नहीं किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशिया का शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूंगी कि आइए और इंडिपेंडेंस डे हम सब मिलके एक साथ मनाएंगे।
1: एब्सोल्युटली, थैंक यू,
0: रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट करने का। वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।

और इस रक्षाबंधन फानेजिया रेडियो और चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ट्यूरेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गिव अवे सेशन, आप कह लीजिए एक्साइटिंग डेली प्राइजेस, जिनमें होगा डाइनिंग एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज और साथ ही साथ ग्रैंड प्राइज भी लेके आएंगे आपके लिए, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट। तो सबसे पहले तो आप हमारे फानेजिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए या उनको फॉलो करना शुरू कीजिए, बिकॉज ऑल कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आर प्रेजेंट ऑन आर पेजेस। तो क्या करना है आपको इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, आपको एक मिनट की वॉइस मेमो रिकॉर्ड करनी है टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर। अपने सिबलिंग के साथ अपनी अनफॉरगेटेबल मेमोरी को रिकॉर्ड कीजिए एक मिनट में और व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पे। 214-837-7147 इज द नंबर टू व्हाट्सएप दैट वन मिनट वॉइस नोट एंड एंटर इनटू दीज डेली एक्साइटिंग प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज। चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इज वेयर यू मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। यू हैव टू बी 21 इयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एंड व्हाइल यू आर देयर प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
1: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
1: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Funasia 104.9 FM.

0: थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और वक्त आ चला है आपको कनेक्ट करने का हमारे ऊरा डेट रिलीफ सेगमेंट के साथ. हमारे साथ आज मौजूद हैं जी मिस्टर अमन, जो हमें बताएंगे कि ऊरा डेट रिलीफ हमें कैसे हेल्प कर सकता है इन मेकिंग द राइट फाइनेंशियल चॉइसेस एज वेल एज डिसीजंस. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशिया. गुड आफ्टरनून अमन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: गुड आफ्टरनून फनीशिया, सुनने वाले सभी लिसनर्स को ऊरा और अमन की तरफ से नमस्कार. सो महीना देखिए भागम भाग हो रही है और 18 तारीख हो गई है और ये महीना भी बाय बाय कहने को तैयार है. लेकिन हमारे जो दोस्त हैं जो सुनने वाले हैं उनको ये एक बार फिर से याद करा दूं कि इस आने वाले 10-15 दिनों में भी आपको चिट्ठियां आएंगी क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरने के लिए. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले जरा रुक जाइए, कॉल कीजिए ऊरा को, क्योंकि ऊरा आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ करवा सकता है. तो आप सिंपल कॉल करिए ताकि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से उतरते नहीं, क्योंकि वो 40% आपका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो अगर आप भी परेशान हैं, क्रेडिट कार्ड कोई भी हो सकते हैं, बिजनेस के, स्टोर के या फिर आपके पर्सनल क्रेडिट कार्ड, उन सारे कार्ड की एक पेमेंट बन जाएगी, यानी कि आपके लिए बजट आसान हो जाएगा. एक ही पेमेंट देनी है बार बार, $20, $25, $30 की नहीं करनी. दूसरा, आपका कर्जा माफ हो जाएगा जो आपने खर्चा है ऑफकोर्स, और इंटरेस्ट भी माफ हो जाएगा. तो इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा और आपका कर्जा जल्दी उतरेगा. तो उसका बेनिफिट यह है कि स्कोर जल्दी बूस्ट करेगा, नए लोन्स आराम से मिलेंगे, हाउसिंग लोन आराम से मिलेगा, तो उस तरह के लोन्स आपको आराम से मिलने शुरू हो जाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स, अगर आपके पर्सनल लोन्स हैं या फिर आपकी गाड़ी रिपोजेस हो गई है या गाड़ी टोटल हो गई है, इस तरह के लोन्स को भी अगर आप माफ करवाना चाहते हैं, नेगोशिएट कराना चाहते हैं, तो आप पे हिचक उनकी पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल मी 9167763555, 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.oora.org. लेकिन अगर नंबर नहीं भी लिख पाए हों तो कॉल फन एशिया रेडियो, अच्छे से गाने की फरमाइश कीजिए और साथ में अपने दोस्त अमन का नंबर ले लीजिए. लेकिन मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल करेंगे तो काफी पैसा बचा लेंगे. थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच अमन जी, वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.
1: थैंक यू.

और इसी के साथ आप तैयार हो जाइए एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल इवनिंग के लिए. और क्या है इस म्यूजिकल इवनिंग में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए? सोनू निगम, जी हाँ, ही इज कमिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन कब होगा? सैटरडे सितंबर 26. तो अराउंड एक महीना 10 दिन अभी हैं, आपके पास बहुत टाइम है अपनी प्लानिंग करने के लिए, टिकट्स खरीदने के लिए. 8:30 PM पे होगा ये इवेंट एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. और आपके तमाम फेवरेट गाने, ऑफ कोर्स सोनू निगम आते हैं, लाइव होते हैं, तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ गाना नहीं गाते बल्कि एक अलग किस्म की एनर्जी होती है स्टेज के ऊपर. सो टिकट्स अवेलेबल हैं टिकट मास्टर पे. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इफ यू हैव एनी, यू नो, वांट टू फाइंड आउट अबाउट एनी थिंग, देन गिव दिस नंबर अ कॉल, 855-360-SHOWS. That is the number, 855-360-SHOWS. Or, gee, this concert is called Revolution. Sonu Nigam Live. Exclusive media partner is Fun Asia Network. Ek baar phir aapko batati chalun, September 26th at 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Toh bilkul miss mat kijiye. Hum sab ke favorite singer, that is Sonu Nigam. Aur humne aaj spotlight dali Himesh Reshamiya pe. Toh main ab jo gana Sonu Nigam ki baat हो रही है तो गाना तो सोनू की ही आवाज में चलेगा. सो कॉम्बिनेशन बना दिया है, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक और सोनू निगम की आवाज. दिस इज ये दिल.

और इसी के साथ वक्त आ चला है आपको वेदर अपडेट देने का जी. आज है ट्यूसडे अगस्त 18th और स्टूडियो में हो रहा है 4:49 PM. सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 103 degrees. हाउएवर इट फील्स लाइक 105 राइट नाउ. दिन रहा सनी, hot with highs around 104, jabki heat index values up to 107, jabki pollen count aaj ka tha 7, which is of course medium high ki taraf hai. To agar aap pollen se pareshan rehte hain to please apni remedies le lijiye. UV index is 10 to 11, which is very high. Keep your sunscreens handy and keep yourselves hydrated agar aap bahar nikal rahe hain, because aajkal main bahut sare logon se mil rahi hu who are complaining about dehydration aur uski wajah se तबीयत खराब और चक्कर और वॉमिटिंग. सो प्लीज कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड. और सनराइज आज का हुआ 6:51 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:08. और इसी के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं. आज हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डाली दी डायनामिक दी अमेजिंग हिमेश रेशमिया पे. वो कह देती है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हिमेश रेशमिया, जिन्हें अपने करियर में सिर्फ एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला. ये इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहती हूँ, और वो भी म्यूजिक कॉम्पोजिशन के लिए नहीं बल्कि सिंगर के लिए. आशिक बनाया आपने के लिए उन्होंने जीता अपना वाहिद प्लेबैक सिंगर अवार्ड फ्रॉम फिल्म फेयर. उसके अलावा ही गॉट लॉट्स ऑफ नॉमिनेशंस फॉर म्यूजिक कंपोजर, बट ही नेवर वन एनी मूवीज दैट ही गॉट नॉमिनेटेड फॉर. वर हमराज, तेरे नाम, आशिक बनाया आपने, झलक दिखला जा, अक्सर आपका सुरूर, और साथ ही साथ मूवी किक.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
8: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
9: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
8: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
9: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
8: इंडिया तक।
9: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता
12: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, just 3 doors down with limited reservation available.
14: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route. Rerouting.
15: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
16: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
15: क्यों?
16: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials. Authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
13: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
16: Your new destination has arrived.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
2: Heart to Heart, the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
3: हेलो नमस्ते एंड वेलकम. आवाज़ कुछ बदली बदली है पर लगता है थोड़ी जानी पहचानी भी है. क्या बोलती है डैलस की जनता, क्या ये आवाज़ पहचान पा रहे हैं आप? आज आपके साथ मार्विन नहीं है, आपकी होस्ट आयुषी है और ड्राइव टाइम पे हम करने वाले हैं कुछ प्यारी और मीठी बातें फन एशिया 104.9 FM पर.

Your dream home may be closer than you think with Dream Home Mortgage. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. Licensed in all 50 states, their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs. Whether you're buying your first home, upgrading, or refinancing, Dream Home Mortgage is there to help you. So start your home ownership journey with confidence today. Aap call kar sakte hain 972-245-5626 pe. I repeat, it's 972-245-5626. Or you can visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. तो आज ड्राइव टाइम पे आप सुन रहे हैं आयुषी को. जी हाँ, आप मुझे पहले भी सुन चुके हैं फनीशा पे, लेकिन आज मार्विन नहीं है तो उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगी. अच्छे गाने प्ले करने की कोशिश करूंगी, आपकी फरमाइशें लूंगी. स्टूडियो का नंबर आपको पता है, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, अपनी फरमाइशें दीजिए और इस ड्राइव टाइम के टाइम को बनाइए धमाकेदार. फिलहाल बॉक्स ऑफिस पे दो फिल्में आई हैं जो कि धमाका कर रही हैं. एक आवारापन 2 है जिसमें इमरान हाशमी और दिशा पटानी है, और दूसरी आई है सनी देओल और प्रीति जिंटा की नॉस्टैल्जिक जोड़ी जो कि बंटवारा 1947 में आई है. अब दोनों में से कौन सी फिल्म आपने देखी है बताइए. नहीं देखी है तो जाके देखिए. फिलहाल इस गाने का मजा लीजिए.

So here was this song from Avara Pantu. और जब मैं इस फिल्म की भी बात करी थी कि ये बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म आई, तो मुझे वो बॉक्स ऑफिस नॉस्टैल्जिया सा हो गया. जब एक टाइम था जब मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती थी और मंडे तक वेट किया जाता था कि मूवीज ने कैसा परफॉर्म किया है. विद ओटीटी आई वोंट से लाइक बॉक्स ऑफिस इज किल्ड, बट बॉक्स ऑफिस का ना वो जो क्रेज था पहले वो थोड़ा खत्म हो गया है. और जैसे मैंने बोला ना, मंडे को फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ वॉज द क्वेश्चन, और हम जैसे लोग इसका एक पार्ट बन जाते थे. फ्राइडे को मूवी आ रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है यार, कैसे सुबह उठे टिकट ले जाकर के. और छोटे शहरों में लाइन लगती थी जब तक वो टाइम नहीं आया था जब ऑनलाइन टिकट्स मिलने लगी थी. ऑनलाइन टिकट के तक तो ठीक था, पर वो ब्लैक वाला टाइम और खिड़की पे लाइन में लगे हुए हैं, डंडे पड़ रहे हैं. छोटे शहरों में पक्का जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने टिकट खरीदने के लिए वो फ्राइडे का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बहुत मार खाई होगी. कैसे कैसे टिकड़म लगा के, जुगाड़ लगा के हम लोग टिकट खरीदा करते थे. तो ऐसी ये बात ध्यान में आ गई. बट यस, बॉक्स ऑफिस पे मूवी कैसा परफॉर्म कर रही है इस पे आज क्यों ना चर्चा कर रहे हैं.

0: them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
2: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
3: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
6: अरे यार, घर मिल गया.
7: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
7: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
2: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
8: ये तारा वो तारा हर तारा.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
11: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
12: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
13: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग.
14: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशा 104.9 FM पे. और बस बातों का सिलसिला चल रहा है. मेरे आते बातें ना हो, नॉस्टैल्जिया ना क्रिएट हो, ऐसा कैसे हो सकता है. हम बात कर रहे थे बॉलीवुड में फिल्मों के रिलीज होने की. आज की नहीं, आज तो फिल्में OTT पे ऐसे फटाफट से आ जाती हैं, मतलब 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते हॉल में चली और फिर चल के हमारे घर के अंदर आ गई हमारे टीवी पर. लेकिन वो समय था जब महीनों तक फिल्म घर नहीं पहुंच पाती थी और हमें फिल्मों के पास चल के जाना पड़ता था थिएटर में. और उसमें से भी कोई ऐसी फिल्म आ रही हो जिसमें स्टार कास्ट बिल्कुल ग्रैंड हो, तो उसकी टिकट लेने के लिए जुगाड़ लगाए जाते थे। फोन किया जाता था कि यार पापा कहीं से जुगाड़ लगवा दीजिए, हमको ये फिल्म देखने जाना है। नहीं तो सवेरे से लाइन में लगना पड़ता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए। वो फ्राइडे मेमोरीज, वो फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हम लोगों ने जिया है। अभी तो बड़ा आसानी से ऑनलाइन जाइए, टिकट मिल जाएगा, हॉल खाली पड़े होते हैं, इतने सारे यहाँ पर हैं। लेकिन वो समय जब आप लाइन में लगते थे, कईयों ने डंडे खाए, कईयों ने गर्लफ्रेंड के लिए टिकट ली ब्लैक में कि भाई जाके देखेंगे हम, तो ऐसे वाले टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई आपकी मेमोरी और ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करिए, स्टूडियो के नंबर पर कॉल करिए। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को।

At Shri Krishna Jewelers, jewelry is more than an accessory. It's a reflection of tradition, elegance and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamonds and from intricate kundan to stunning polki collection, every piece is crafted to celebrate life's special moments. Now welcoming you at their new location, 13145 Suite 220, Main Street, Frisco, Texas. Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. Welcome back. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. और भैया मेरे पास तो ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं, डंडे खाने से लेके टिकट ब्लैक करने तक 10 का 200 सब कुछ कर चुके हैं लोग. सवेरे निकलते थे 10 बजे और दो दो शोज एक साथ दे के आ जाते थे. गोविंदा की फिल्मों के फैन भी आ गए हैं. मतलब ये बात ही ऐसी है कि सारे फैन निकल के बाहर आ जाएंगे, जो बॉलीवुड के फैन हैं, जिन्होंने वो समय जिया है जब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी यार. मेहनत करनी पड़ती थी, सुबह उठना पड़ता था. मतलब टीवी देखने के लिए भी, मूवी देखने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती थी और मेहनत करके सवेरे उठ के लाइनों में लगना पड़ता था. कई लोग तो रात रात भर लाइन में लगा करते थे और कई लोग टिकट ले लेते थे. जैसे एक जनाब अभी हमें फ़ोन किया, उन्होंने राज साहब, उन्होंने बताया कि वो टिकट गए लेने धर्मवीर फिल्म की गुजरात में और टिकट ली 10 रुपये में. और अगले दिन जब उनको पता लगा कि ये टिकट 200 की ब्लैक हो रही है तो जनाब बोले मूवी 2-3 दिन बाद देख लेंगे, पहले इसको ब्लैक कर देते हैं. उन्होंने सारी टिकट बेच दी 200 की. मतलब एक टिकट 200 की, 10 का 200 चलता था ना, वैसा कुछ करके आए वो. तो भाई ऐसी कहानियाँ सुन रहे हैं हम जब सिनेमा देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, लाइनों में लगना पड़ता था. मुझे पता है हम जिस शहर से आते हैं वहाँ पर बड़ा ही फेमस एक थिएटर होता था, अशोक सिनेमा नाम होता था. बिहार की बात कर रही हूँ, पटना की और भी बहुत सारे थिएटर्स थे, बट वो बड़ी मतलब कहा था पारिवारिक जगह है, वहाँ सब परिवार वाले जाते थे. तो लड़कों को ना लाइन में लगा के रखते थे, पहले वो सारी ऊपर की टिकटें बेच लेते थे, उसके बाद खिड़की खुलती थी लड़कों के लिए. जो नीचे की स्पेशल सीट्स होती थी ना, वो स्पेशल नहीं होता था, वो नीचे होता था जहाँ गर्दन ऊपर करके देखनी होती थी, तो वो बाद में खुलती थी. और अगर लड़कों ने हल्ला किया तो जो डंडे पड़ते थे कि पूछिए मत.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
1: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
5: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
5: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोवेस्ट प्राइस match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
8: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
9: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
10: लैपटॉप में.
9: इन्वेस्टमेंट?
10: गूगल ड्राइव.
9: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
10: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
9: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
1: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
1: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
2: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026. A tribute to our heritage and a celebration for all. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural activities and family fun for every age.
3: Live performance by Raga Boys.
2: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
3: Media partner, Fun Asia Network.
4: कितने आदमी थे?
5: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.
6: घड़ी में बज रहे हैं 5:45. जी हाँ, 5:45 PM और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे. ड्राइव टाइम में आज मेरी आवाज, मेरी बकबक, मेरी गपशप चल रही है कुछ मजेदार गानों के साथ. और भाई, जिस तरह से कॉल्स के भरमार आ रहे हैं, मजा आ गया. मतलब हर कोई चला गया 80s, 90s और 2000s वाले समय में, जहाँ पे लाइनों में लगता था. जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया उनको बता दूं, हम जो है ना ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि कैसे बॉक्स ऑफिस पे फिल्में फ्लॉप, सुपर फ्लॉप, हिट, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी और कैसे उनकी टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी. आजकल तो भैया हम लोग थोड़े से ना, जब बात करते हैं फिल्मों की कि भाई चलो कोई मूवी आ रही है देखने चलते हैं, छोड़ो यार आ जाएगी दो तीन हफ्ते में ना आ जाएगी टीवी पे, क्या अब जाएं 3 घंटे बैठे, मतलब उतनी एनर्जी नहीं रह गई थी, रह बच गई है ज़िंदगी में कि अब जाएं और सारे कामों के साथ, ऑफिस के साथ जा करके हॉल का चेहरा देखें. मतलब मेरा तो आज भी मन करता है पर कहाँ हो पाता है. पहले अलग एनर्जी थी, मतलब स्कूल कॉलेज बंक करके भी चले जाते थे मूवी देखने. अगर आपकी भी कुछ यादें ऐसी हैं तो ताज़ा करिए मेरे साथ, कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर.

0: This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. Whether you're an individual, startup, or for established business, AG Fintechs offers innovative financial solutions tailored to your needs, from bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. They help keep your finance organized, compliant, and future-ready. Trusted, efficient, and committed to your success, AG Fintechs is your partner in building a strong financial future. So you can call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. And the show is getting more interesting with your calls and with your memories. And मतलब मेरे caller तो मेरे से एक कदम आगे हैं. तो cinema hall का बात कर रहे हैं ये लोग. हमको VCR और CD player पे लेके चला गया. I am like so loving it, and specially मेरा प्यार और मेरी खुशी दुगनी हो जाती है जब ना कोई हमको पटना वाला phone करता है. And I have some very nice and sweet callers from Patna जो कि call करके हमको और nostalgic कर रहे हैं, वहाँ के पुराने cinema hall के नाम वाम बता रहे हैं, Elephiston, Mona और पता नहीं क्या क्या. तो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब टिकट ब्लैक हुआ करता था. सारी कहानी बताऊँगी ना तो 2 घंटे से शो हो जाएगा, 10 घंटे का. लेकिन थैंक यू फॉर कॉलिंग, और ऐसे ही कॉल करते रहिए, अपनी मेमोरी शेयर करते रहिए. VCR पे चर्चा करेंगे. अगर आप भी करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर बता रही हूँ भाई, 9722355555. कॉल करिए और बताइए अपनी कहानियाँ.
1: प्यार में बनने में बिलीव नहीं करती, जो जब तक है तब तक है.

0: कॉकटेल का ये गाना चारू की फरमाइश पे था। ये वही चारू हैं जिन्होंने मुझे वीसीआर की याद दिलवा दी कि एक समय था कि संडे को जिनके घर में वीसीआर होता था, या तो वीसीआर को ही रेंट कर लेते थे या कैसेट रेंट करके लेके आते थे और मूवीज देखा करते थे। देखिए, हम जहाँ पे रहते हैं बहुत नॉस्टैल्जिक आदमी है, नॉस्टैल्जिया हो जाता है, मतलब बात करने लगते हैं तो खो जाते हैं। और अभी हम जैसे ही सोच रहे थे कि क्यों मेरे अंदर इतना बॉलीवुड का कीड़ा है, इतना प्यार है हमको बॉलीवुड फिल्मों से, आज भी हमको कोई बिठा के हॉलीवुड दिखाता है तो हम आधे पे बंद करके सोने चले जाते हैं या देखते देखते सो जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड की कोई सी भी फिल्म उठा लो यार, हम उस फिल्म को अंत तक देखेंगे। आई वॉन्ट टू सी द क्लाइमैक्स। हम उसमें से हैं। सो एनीवेज, ये इसलिए है कीड़ा मेरे अंदर बिकॉज यू नो My father had a business back in India and he owned a video cassette shop. Yes, and that was back in 90s and that shop was opened when I was born. Literally when I was born, that year that shop was opened and we had the access to all the latest movies of that time. Ghar mein VCR tha. Jab man kare, muft mein cassette leo aur ghar pe dekho. Yahi karan tha. और ऐसे अजूबे किए हैं मैंने उस टाइम पे कि मत पूछिए। मतलब कम से कम हमारे घर से हज़ारों घरों में वो नेटवर्क चलता था। और अगर आप लोगों को पता हो, आप उस दौर से हैं, देन यू विल नो कि मूवीज़ चला करती थी, जो जब कैसेट रिलीज़ हो जाती थी तो सबके घर में मूवी टेलीकास्ट होती थी और वो कंट्रोल रूम से हुआ करती थी, जो कि सपोजिटली मेरे घर में था क्योंकि बिजनेस अपना था यार। और मतलब हम ठहरे उस समय होंगे कुछ 10-12 साल के और हम राजा थे तो बैठे हुए थे और बैठ के मतलब कंट्रोल रूम से मूवी देखा करते थे। कोई नहीं है, खाना वाना स्कूल से आए लेके बैठ के वहीं से फिल्म देख रहे हैं और जब मन करे तब मूवी को फॉरवर्ड कर रहे हैं और रिवाइंड कर रहे हैं और अपने मन से हर गाने को रिपीट पे देख रहे हैं। और अचानक से कॉल आता है मेरे पिताजी के पास, कंप्लेंट्स की भरमार की, हो क्या रहा है आपके यहाँ, किस तरह का कांड कर रहे हैं आप, मूवी चल क्यों नहीं रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, किसको पता कि उनकी बेटी के कारनामे थे। ये है मेरी बॉलीवुड से प्यार की कहानी।
1: तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. Chahe Olympic style archery ho ya 10 meters indoor precision shooting. Focus, discipline, consistency. Frisco Precision Sports Academy, one and only in North Dallas. From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance-driven training, ages 8 and above.
2: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-1099.
3: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार.
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
6: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब Frisco में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
6: बेटा, 95% आए?
5: हाँ मम्मी.
6: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
8: मेरा?
6: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
8: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Bhook lagi, zoron ki bhook lagi.
11: Bhook lagi hai ya bas kuch exceptional khana hai?
2: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
3: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
12: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
13: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
5: Welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को Fun Asia 104.9 FM पे Drive Time. और Drive Time पे आज मैं हूँ, मार्विन नहीं है. उनकी कमी पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, कहानियाँ सुना रही हूँ, सुन रही हूँ, आपके कॉल्स ले रही हूँ. बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार इस कदर बरसाने के लिए. तो चलिए, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने सुना दी हैं और आपकी भी सुन ली हैं. कहाँ चर्चा चली थी बॉक्स ऑफिस पे और सिनेमा हॉल से हम पहुँच गए वीसीआर पे. लेकिन एक चीज़ है जो चलती रहेगी, गाने गाने और गाने बजते रहेंगे फनेशिया से, फनेशिया के स्टूडियो से. तो सुनते रहिए फनेशिया 104.9 FM.

अच्छा चलिए एक बात बताइए कि आपके डॉक्टर आपके साथ कितना समय बिताते हैं जब आप उनसे दिखाने जाते हैं? तो 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. बिकॉज पैशन हेल्थ, यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ योर फॉर आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जी हाँ ये है. और 30 मिनट इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटमिन B12 डेफिशियंसी टेस्टिंग एंड मोर. ऑल आर अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. सो स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टूडे. यू कैन कॉल ऑन 214-666-6259. बुक योर अपॉइंटमेंट टूडे. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आर पैशन. और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे. हम बातें करते रहेंगे, लेकिन चलिए जल्दी से उस कवि को, उस पोएट को, उस इंसान को जन्मदिन की बधाई दे देते हैं जिसके कारण ना सिनेमा थोड़ा और अच्छा लगता है. उनके गाने, उनकी लिखी हुई कविताओं को सुन के बहुत ही ज़्यादा और प्यार हो जाता है उस फिल्म से, उस गाने से. हम बात कर रहे हैं संपूर्ण सिंह कालरा जी की, गुलजार साहब, अपने गुलजार साहब, जिनका जन्म आज अगस्त 18 को हुआ था 1934 में. एंड ही इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्स, लिरिसिस्ट एंड राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स. तो आज उनकी बात करते हैं थोड़ी देर, उनके गाने सुनते हैं. अगर कोई गुलजार साहब के गाने आप सुनना चाहते हो तो ज़रूर कॉल करें मुझे स्टूडियो के नंबर पे, जो कि है 9722355555. फिलहाल ये गाना आप लोगों के लिए.

0: दिल से गा ये गाना सुखविंदर सिंह की आवाज़, ए आर रहमान का म्यूज़िक, और बोल हैं गुलजार साहब के। जी हाँ, गुलजार साहब के कुछ गाने हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए। टुडे इज़ हिज बर्थडे, सो विशिंग हिम वेरी हैप्पी बर्थडे। और उनके गाने सुनेंगे, कुछ आपकी फरमाइशें लेंगे, कुछ हम अपनी मर्जी से प्ले करेंगे। जल्दी से कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर 9722355555, और बताइए कौन सा गुलजार साहब का गाना सुनना चाहेंगे। कोई और गाना भी बता सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे, और आपका हुक्म सरहाकों पे भाई जनाब। और वैसे हम बात कर रहे थे गुलजार साहब की, तो भाई इनके गाने आर डी बर्मन साहब के ज़माने से लेकर के किशोर कुमार की आवाज़ में, ए आर रहमान की आवाज़ में, सब सारे कंपोजर्स के साथ इन्होंने काम किया है, इनके गाने लिखे हैं। इनके गाने इतने प्यारे हैं ना कि दिल को छू जाते हैं, चाहे कोई भी माहौल हो, कोई भी आप किसी भी तरह के इमोशन में हो, आप इनके गानों को एंजॉय कर सकते हैं। और कहते हैं ना, गुलजार साहब को सिर्फ सुना नहीं जाता है, उनको महसूस किया जाता है जनाब, उनको महसूस किया जाता है। जी हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ आज उनका जन्मदिन मनाते हैं, थोड़ी देर उनके गाने चलाते हैं। कॉल करिए मुझे और बताइए। फिलहाल वक्त हो रहा है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और फनेशिया पर गानों का सिलसिला चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, जो कि आज ड्राइव टाइम पे आपके साथ है। मार्विन नहीं है, मैं आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कॉल करिए, फरमाइशें दीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए फन एशिया 104.9 FM।
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ,
0: तो कैरेट लेन चलो। दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
0: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो

0: आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
6: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
5: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स or older to game.
12: More music, more magic, more musty. 104.9 FM.
13: Welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को Fun Asia 104.9 FM पे, और आपके प्यार और आपकी तारीफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके कॉल्स आ रहे हैं, आपकी फरमाइशें आ रही हैं, एंड ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम अभी अपने शो के इस सेगमेंट में गुलजार साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, थोड़े उनके गाने सुन रहे हैं। संपूर्ण सिंह कालरा साहब, जिनका जन्म 18 अगस्त 1934 को अनडिवाइडेड पंजाब में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है, और वो जब बहुत ही यंग थे तब वो बॉम्बे चले आए और सिनेमा जगत में आने के पहले अपनी पोएट्रीज, अपने गाने हम तक पहुँचाने के पहले उन्होंने एज अ कार मैकेनिक काम किया गैराज में, और फिर वहाँ से वो संपर्क में आए बिमल रॉय के, एंड दैट्स व्हेन हिज जर्नी स्टार्टेड। तो चलिए उनके कुछ खूबसूरत गाने सुन रहे हैं और मेरे पास कुछ फरमाइशें आ चुकी हैं, जल्दी से उन गानों की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अगर आपकी कोई और फरमाइश है तो कॉल ज़रूर करिए स्टूडियो के नंबर पर।

एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना जिसके बोल गुलजार साहब ने लिखे हैं, म्यूजिक शंकर एहसान और लॉय ने दिया है, और ये गाना आज हम इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि गुलजार साहब का जन्मदिन है और वो हम अपने स्टूडियो से मनाने की कोशिश कर रहे हैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे करके आपको ये प्यारे प्यारे गाने सुना के। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें, क्या अभी तक आपने हिमालयन बाजार को डिस्कवर किया है? नहीं तो कर लीजिए। जी हाँ, हिमालयन बाजार है ग्रैंड पेरी में, सर्विंग द एंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स एंड एवरीडे एसेंशियल्स। एंजॉय हॉट समोसास, पानी पूरी, मसाला चाय एंड कॉफी व्हाइल यू शॉप। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर 50 विद इन 5 miles, ये तो सबसे कमाल की बात है, एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स विद एवरी परचेज। Just off Highway 360 South at 5103 Magna Carta Boulevard, Grand Perry, Himalayan Bazaar, where every aisle feels like home. तो बस जल्दी से जाइए और सामान खरीदिए यहाँ से। फिलहाल मेरे साथ गाने सुनिए, फरमाइशें दीजिए, हम स्टूडियो में आपकी फरमाइशें ले रहे हैं। और अगला गाना नमिता की फरमाइश पे, और इसके भी बोल गुलजार साहब ने ही लिखे हैं।

एक और बहुत खूबसूरत सा गाना जिसके बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर इज प्राउड टू अनाउंस आवर न्यू स्टेट ऑफ आर्ट फ्रिस्को लोकेशन। फ्रॉम ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरीज टू पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी, sports medicine, red light therapy and functional nutrition, they deliver personalized one-on-one care designed to help you perform at your best. Trusted by professional athletes, entertainers and community leaders, they believe every patient deserves VIP treatment. Visit texasstarrehab.com to schedule your consultation today. Conveniently serving Frisco and Irving, Texas Star Rehab and Performance Center, move better, feel better and live better. चलिए कुछ खूबसूरत गाने आपको सुना रहे हैं और सुनाते रहेंगे अगले 20 मिनट तक। मैं आपके साथ हूँ और इसके बाद हम करेंगे गिव अवे की तैयारी, ठीक है? तो अपना अभी नहीं फ़ोन करिएगा, जब सवाल पूछूंगी तब फ़ोन करिएगा। फिलहाल इस गाने का मज़ा लीजिए।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co. at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panasia.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Abhe jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
10: Panvel ho ya Dallas, safar tabhi mast. Jab gaane ho zabardast, only on Fun Asia Radio.
11: Tracks that put you on the right track.
12: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट को जिसका नाम है आयुषी और आज मार्विन की जगह हम यहाँ पर थे और आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे. उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये 2 घंटे का सफर पसंद आया हो जिसमें से 15 मिनट अभी बचे हैं जनाब और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बचा है गिव अवे. स्टूडियो का नंबर पहले बता रही हूँ, कॉल मत करिएगा, पहले नंबर ले लीजिए और उसके बाद सवाल सुन लीजिए. नंबर है 9722355555 और गिव अवे है फन पिज्जा किचन से. जी हाँ, फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप एंड दीज आर इन जस्ट पिज्जाज, दे आर फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. फ्रॉम फ्रेश फिएस्टा वेजी टू द फायरी पोलो लोको, द सी फूड पैक्ड सेनोर Cameron. Every bite is bold, exciting and made to impress. हमको तो सुन के ही भूख लग गया भाई. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. और अब आपके पास मौका है एक गिफ्ट कार्ड जीतने का, $10 का फन पिज्जा किचन का. एक सवाल, सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, स्टूडियो पे कॉल करिए और जीत जाइए $10 का, $10 का गिफ्ट कार्ड. गुलजार साहब का गाना है, फिल्म का नाम नहीं बताऊंगी, सुना रही हूँ गाना, बताइए कौन सी फिल्म का गाना है. कॉल करिए मुझे स्टूडियो के नंबर पे. अरे क्या हो गया इस गाने को, बच गया.

ओ रोमियो का था ये गाना और हमें मिल गया है अपना विनर मिस्टर अमित जैन के लिए जोरदार तालियां। तो भाई बस आप जा सकते हैं फनेशिया फन पिज्जा के किचन में और वहां से आप अपना गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं और पिज्जा भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक और गिव अवे है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए, जो बहुत सारे कॉल्स आए मुझे अगला सवाल फिर पूछूंगी, लेकिन आपको बता तो दूं मतलब मेरी जबान लटका रही, भूख लग रही है यार, इतने खाने की बातें हो रही है यहाँ पे। लेकिन आपको ये बता दूँ इस आइकॉनिक फूड ब्रांड के बारे में, आई एम सॉरी फॉर द लड़खड़ाइंग जबान ऑफ माइन, यस। सो यू हैव फाउंड अ ट्रूली आइकॉनिक फूड ब्रांड व्हेन यू जस्ट हियर दिस नेम, ओके, इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, फ्लड ऑफ मेमोरीज। और अगर आप होको का नाम सुन रहे हैं, देन इट्स बीन सर्विंग इन इंडिया अक्रॉस जनरेशन एंड नाउ इट्स हियर इन नॉर्थ टेक्सस। मतलब ये सुन के ही हम एकदम नॉस्टैल्जिक हो गए हैं। वेदर यू हैव बीन क्रेविंग फॉर लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज और द फेमस होको कोल्ड कोको दैट पीपल एब्सोल्युटली स्वेयर बाय, यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप टू इंडिया एनी मोर। आपको यही मिल जाएगा हमारे डैलस में। जी हाँ, विजिट होको एट 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000, फ्रिस्को, टेक्सास 75034 एंड एक्सपीरियंस द ऑथेंटिक फ्लेवर्स दैट हैव मेड इट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव फूड ब्रांड्स। तो यहीं आपके डोर स्टेप पे आ चुका है ऑलमोस्ट। सो फॉर फुल मेन्यू यू कैन जस्ट विजिट hoco.us, दैट्स hoco.us। कम हंग्री एंड लीव विद अ टेस्ट ऑफ इंडिया। और अभी आपको मौका है एक वहाँ का मस्त वाला टेस्टी वाला आलू टिक्की चाट जीतने का। सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। देखिए बस मेरे सवालों के साथ ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती मैं, बस आपको ना फुर्तीला होना पड़ेगा, मतलब ऐसे समझिए भूख लगी और किचन की तरफ दौड़ रहे हैं खाना लेने, वैसे ही एकदम फ़ोन फटाक से लगाना है। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। गाना बजा रही हूँ, मूवी का नाम बताना है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत बहुत।

हमारा विनर हमें मिल गया है जोरदार तालियां विक्रम मोहता जी के लिए। तो भाई आप होकर जाकर के आलू टिक्की उठा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास, जल्दी से आपको बता दें नॉर्थ टेक्सस, आपको तैयार हो जाइए एक स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन के लिए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ सेक्टर्स प्रेजेंट क्वेद मेला इन 2026, अ सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज कल्चर एंड कम्युनिटी। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल फेस्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर ऑल एजेस। लाइव परफॉर्मेंसेज बाय रागा बॉयज। जॉइन अस सैटरडे August 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोक रैंच इन पार्कर टेक्सस। डोर्स ओपन एट 2 PM And that's the best part. Entry and parking are absolutely free. Bring your family, bring your friend and come celebrate at Quaid Mela 2026. Media partner of Pan Asia 104.9 FM.

तो बस अब वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने के लिए. बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बातें करके, और हम अच्छा कर रहे हैं ये सिर्फ आपके कॉल से पता लगता है. और इतने कॉल्स आए, इतनी बातें कि हमने इतनी सारी यू नो डिस्कशंस हुई, कहानियाँ किससे सुने, बहुत मज़ा आया. आज के लिए विदा दीजिए अपनी होस्ट आयुषी को. लेकिन जाने के पहले आपको बता देती हूँ यार, सोनू निगम आ रहे हैं, तो तैयार हो जाइए एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सितंबर 26 8:30 PM एट ट्रेड यूनियन टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. योर फेवरेट सॉन्ग, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. SHOWS. Yes, Revolution Sonu Nigam Live. Exclusive media partner, Phanesha Network. Yaar, Sonu Nigam. Maza aa jayega yaar. Maza aa jayega. Isi baat pe na unka gaana bajate hue jaati hoon. Aapko aaj ke liye tata bye bye kar rahi hoon. कल फिर इसी टाइम पे मार्विन मिलेंगे आपको, मैं नहीं मिलूंगी. बट अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो बस ट्यून इन करके रखिए, किसी दिन कहीं से मेरी आवाज़ प्रकट हो जाएगी आपके सामने. फिलहाल आज के लिए आपकी होस्ट आयुषी आपसे विदा ले रही है. थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग टू फनेशिया 104.9 FM. बाय बाय.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के